फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सुबह की भीनी भीनी हवा के साथ सूरज की किरण सुगंध के साथ आप सभी श्रोताओं का इस सभा में हार्दिक स्वागत है।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा और कहीं कोई युवा पूरे आत्म

0: विश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल अबिजान में कोटी डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत के श्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। श्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में मातृ वंदना। गीतकार डॉक्टर हरि सिंह और संगीतकार डॉक्टर ललित मोहन।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में मातृ वंदना। गीतकार थे डॉक्टर हरि सिंह गौर, संगीतकार थे डॉक्टर ललित मोहन। अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये पारंपरिक रचना, संगीतकार मुरली मनोहर स्वरूप।

अभी आप सुन रहे थे ये पारंपरिक रचना, आवाज थी लता मंगेशकर की, संगीत दिया था मुरली मनोहर स्वरूप ने। अब आपको सुनवा रहे हैं संत मीराबाई रचित पारंपरिक रचना, आवाज सुमन कल्याणपुर की, संगीत कृपाशंकर का।

अभी आप सुन रहे थे संत मीराबाई रचित पारंपरिक रचना आवाज थी सुमन कल्याणपुर की, संगीत था कृपा शंकर का। अब आपको सुनवा रहे हैं पीयूष नागर की आवाज में बलवीर निर्दोष की रचना, संगीतकार असित देसाई।

पीयूष नागर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों बाद सुबह 6:30 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर है रंजना जोगलेकर का। भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर होंगे सुबह 6:40 से। संस्कृत में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 6:55 पर। चिंतन और विचारों पर आधारित कार्यक्रम सुबह सुबह का प्रसारण होगा सुबह 7 से। सुबह 7:05 से सुनिएगा कृषि संकेत। विषय प्राकृतिक खेती की जानकारी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SK तिवारी। सुबह 7:10 से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 7:20 से सुनिएगा साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संयोजन व प्रस्तुति सुब्रता यादव की। संकलन व निर्माण अदिति जैन का। सुबह 7:50 से सुनिएगा संगीत सरिता। सुबह 8 से समाचार प्रभात का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:15 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। सुबह 8:30 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य। प्रायोजक वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीली कोठी सागर। सुबह 8:35 से सुनिएगा बाल सभा। सुबह 9 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। सुबह 9:10 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह 10 से सुनिएगा जिले की चिट्ठी रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 10:05 से सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने प्रस्तुति जय शेखर की। सुबह 11 से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर 2 सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। दोपहर 2:10 पर प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: बाल केंद्र से। शाम 5:30 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ और शाम 5:40 से सुनिएगा संगीत सरिता।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: श्रोताओं शाम 6:30 से सुनिएगा सदाबहार गीत, शाम 6:45 से सुनिएगा लोक रंग कार्यक्रम। हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 7 बजे से। शाम 7:20 से सुनिएगा ग्राम सभा। रात्रि 8 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में, रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात्रि 8:15 से कार्यक्रम सुनिएगा डगर विकास की, विषय दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, आकाशवाणी छतरपुर का योगदान। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 से। रात्रि 9 बजे से सुनिएगा मन चाहे गीत और रात्रि 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 से अंग्रेजी में समाचार, ये दोनों रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। श्रोताओं ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर है रंजना जोगलेकर का।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होंठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगुली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर था रंजना जोगलेकर का। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म से। सी रामचंद्र का संगीत है, गायक कलाकार हैं ललिता देवलकर और मोहम्मद रफ़ी।

अभी आप सुन रहे थे नदिया के पार फिल्म से सी रामचंद्र का संगीत। अब आपको सुनवा रहे हैं नेकी और बदी फिल्म से केदार शर्मा के बोल, संगीत रोशन का, गायक कलाकार अमीर बाई कर्नाटकी और फिरोज दस्तूर।

0: की, और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह!
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक,
6: तो मिलेगी ना,
5: पर कैसे?
7: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आकाशवाणी सागर से। इस वक्त आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं जोगन फिल्म से गीता दत्त की आवाज़, संगीतकार बुलोसी रानी, गीतकार केदार शर्मा।

अब आपको सुनवा रहे हैं परिवार फिल्म से। सलिल चौधरी का संगीत है, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार।

प्रभात की इस पावन वेला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज का चिंतन हमें उन लोगों की ओर ध्यान खींचता है जिनकी पहचान केवल एक समुदाय नहीं बल्कि प्रकृति के साथ गहरे आत्मीय संबंध की पहचान है। आज विश्व जनजाति दिवस है। श्रोताओं, जब हम विकास की बात करते हैं तो अक्सर ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और आधुनिक तकनीक को उसकी कसौटी मान लेते हैं। लेकिन एक प्रश्न स्वयं से पूछें, क्या विकास केवल साधनों का विस्तार है या फिर जीवन मूल्यों का भी विस्तार है? हमारे देश की जनजातियों से सीख मिलती है कि जीवन का वास्तविक वैभव प्रकृति के साथ सामंजस्य में है। उनके लिए जंगल केवल लकड़ी का भंडार नहीं बल्कि जीवन का आधार है। नदी केवल जल नहीं बल्कि संस्कृति की धारा है। पर्वत केवल चट्टान नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से चिंतित है, तब जनजातीय समाज का जीवन दर्शन पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। वे हमें बताते हैं कि प्रकृति पर अधिकार नहीं, उसके प्रति आभार का भाव होना चाहिए। इनकी संस्कृति का एक और सुंदर पक्ष है सामूहिकता। वहां मैं से अधिक हम का महत्व है। सुख हो या दुख, उत्सव हो या संघर्ष, पूरा समुदाय साथ खड़ा रहता है। शायद यही कारण है कि उनके जीवन में अपनापन आज भी जीवित है। आज के आधुनिक समाज में सुविधाएं बढ़ी लेकिन साथ ही अकेलापन भी बढ़ा है। साधन बड़े

रही हैं पर संतोष घटा है। ऐसे समय में इनका जीवन हमें याद दिलाता है कि समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि संबंधों, संवेदनाओं और संतोष से भी आती है। विश्व जनजातीय दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्म मंथन का अवसर है। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम उन समुदायों के ज्ञान, उनकी संस्कृति, उनकी लोक कलाओं और उनके प्रकृति प्रेम का सम्मान करें, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी विविधता में होती है। तो श्रोताओं, आज हम क्यों ना दृढ़ संकल्पित हों, हम प्रकृति की रक्षा करें, जल और जंगल का सम्मान करें, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव रखें। आज सुबह सुबह बस इतना ही, दीजिए इजाज़त,

द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। आकाशवाणी सागर से प्रस्तुत है कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में सुनिए प्राकृतिक खेती की जानकारी, विशेषज्ञ डॉक्टर SK तिवारी।
1: किसान भाइयों, अब हम थोड़ी सी अपनी खेती जो रासायनिक खेती हो रही है उससे हटके चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में जो हमारी रासायनिक खेती हो रही है, उस रासायनिक खेती का परिणाम ये हो रहा है कि तमाम सारी जो है वो बीमारियां मनुष्यों में जो कभी नहीं होती थी, और खास करके गांवों में हम देखते थे कि पहले लोग गांव में अपना स्वस्थ जीवन जीने के लिए शहरों से गांव की तरफ पलायन करते थे और वहां स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन अब चूंकि रसायनों का असंयमित और असंतुलित रूप से प्रयोग का परिणाम ये हो रहा है कि हमारा जो कुछ भी उत्पाद मिल रहा है खेती से इस समय, वो सब हमारे स्वास्थ्य को फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको जरूरत है कि हम जहर मुक्त खेती करें, और उस प्राकृतिक खेती जिसका नाम दिया गया है इसकी बात अभी सब जगह हो रही है। और हम जहां कहीं भी किसानों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर किसान के पास 2 एकड़ भी जमीन है तो आधा एकड़ हिस्से में अपनी प्राकृतिक खेती जरूर करें। प्राकृतिक खेती जैसा कि नाम है, इसमें किसी प्रकार का कोई जादू नहीं है, न कोई करिश्मा है, न कोई वैज्ञानिक। ये वो पद्धतियां हैं जो हमारे वर्षों पहले लोग किया करते थे। हमारे पहले की पीढ़ी जो है वो प्राकृतिक खेती ही करती थी, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक खेती करती थी, जहर मुक्त अन्न पैदा करती थी, जहर मुक्त सब्जियां पैदा करते थे और खाते थे, उसको खा करके 100 साल तक जीवन जीते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन आज ये स्थितियां हैं कि रसायनों के असंतुलित और असंयमित प्रयोग से हमारी खेती में जो कुछ भी उत्पाद मिल रहा है वो हमारे मानव स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है, जिसके लिए जरूरी है कि प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती जैसा कि नाम है, प्राकृतिक संसाधन जो हमारे खेत में, हमारी जमीनों में, हमारे गांव के परिवेश में जो उपलब्ध है, उनका हमको भरपूर उपयोग अपनी खेती में करना है। प्राकृतिक खेती में किसानों को अपने खेत पर बीज उपचार करने से लेकर के कीड़े मारने तक दवा सारी अपनी उसको स्वयं के अपने संसाधनों पर तैयार करना है। बीज उपचार करने के लिए किसान बीजामृत बना ले, और बीजामृत बनाने के लिए कोई कुछ बाहर से किसी चीज को लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देसी गाय का प्लास्टिक के ड्रम में गोमूत्र इकट्ठा कर ले। गोमूत्र इकट्ठा करने के बाद देसी गाय का गोबर इकट्ठा कर ले और थोड़ा सा उसमें चूना, 50 ग्राम चूना मिला दे, प्लास्टिक का ड्रम ले ले, उसमें जो है वो 20 किलो गोबर और 20 लीटर गोमूत्र ये मिला ले, और 50 ग्राम चूना मिला करके उसको ड्रम के अंदर रख दे छायादार जगह में, 2-3-4 दिन के लिए इसको छोड़ दे। सिर्फ सुबह शाम उसको डंडे से क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में सिर्फ 2 बार डंडे से, लकड़ी के डंडे से चला दे। आपका

0: एक हफ्ते के अंदर जो बीज उपचार करने वाला मटेरियल बन के तैयार होगा, वो आपके बीज अगर आप इससे उपचारित करते हैं तो आपके बीज को फफूंद से, बैक्टीरिया से, वायरस से, यहाँ तक कि नेमाटोड जो सबसे सूक्ष्म जीवाणु है, सूक्ष्म नुकसान देने वाला कीड़ा है, नुकसान करने वाला, उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसान भाई बीज उपचार करने से लेकर के, बीज उपचार कर ले उसके बाद आप किसान जो हम खड़ी फसल में जरूरत होती है खाद डालने की, उसके लिए जीवामृत बना ले, बीजामृत बना ले, घन जीवामृत बना ले, और इनमें सब में वही चीजें लगनी है। जैसे किसान जीवामृत बना रहा है उसमें देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, और जो बेसन या कुछ दाल की जो फसलें होती हैं इनका दाल का आटा, और पुराने पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी, जो पुराने पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे किसान एक मुट्ठी मिट्टी लेता है, उसमें मिलियंस अरबों सूक्ष्म जीवाणु होते हैं लाभ देने वाले। आपने सबने भी देखा होगा कि कहीं गांव में आसपास कहीं अगर पुराना पीपल या बड़ का पेड़ दिखता है, उसके नीचे आप चले जाओ, देखो उसकी जमीन इतनी आपको समृद्ध मिलेगी, इतनी ताकतवर जमीन मिलेगी, इतनी न्यूट्रिटिव मिलेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि लगातार पीपल और बरगद के पेड़ से पत्ते गिरते रहते हैं और वहीं डिकम्पोज होकर के अच्छी बढ़िया ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते रहते हैं। समस्या ये है कि हमारे खेतों में जो खेती कर रहे हैं, जिन खेतों में हम, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की बहुत कम मात्रा है। ऑर्गेनिक कार्बन एक तत्व है जिसकी मात्रा अगर एनालिसिस की जाए तो जो भारी काली जमीनें हैं उनमें भी बहुत कम देखने में मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम खेत में ऑर्गेनिक मटेरियल का उपयोग करें, और ये जो हमने कहा कि देसी गाय का गोबर और गोमूत्र और ये बेसन और ये दाल की जो आटा है, ये सब क्या हमारी हमारे खेत में मिट्टी में तमाम सारे मिलियंस लाभदायक जीवाणु है, ये उनके लिए फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ है। जब हम इसको खेत में डालते हैं तो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु सबको खाद्य पदार्थ मिलता है, वो अच्छे मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं और अपना बेहतर काम करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर और डिजिटल सुरक्षा उपायों पर बल दिया। सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के संकल्प के साथ भोपाल में संपन्न हुआ ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में प्रदेश की 4 नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे और आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में कल उन्होंने साइबर और वित्तीय अपराधों से निपटने में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की जरूरत है। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया।
1: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 कल ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ संपन्न हुआ। समापन के अवसर पर भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही सभी देशों के कलाकारों को मौका देने, चोरी या गलत रास्ते से विदेशों में पहुंची सांस्कृतिक संपदाओं को वापस लाने का निर्णय लिया।

0: गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि घोषणा पत्र सदस्य देशों और साझेदार देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और दूरदर्शी ढांचा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में ब्रिक्स का यह आयोजन देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के स्वर्णिम अध्याय को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सशक्त अवसर रहा है।
1: मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। कल्चर का अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए और वो सभी वेद वाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो भाव वसुदेव कुटुम्बकम का है। वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई, हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे और आपका साथ मिलता रहे।
0: वहीं समापन के बाद ब्रिक्स देशों के 42 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सांची स्तूप और म्यूजियम का भ्रमण भी किया। रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय तथा आधुनिक बनाने के लिए नागदा संत हिरदाराम नगर रेलखंड के कुल 226 किलोमीटर मार्ग में मानक कवच प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया। मानक कवच प्रणाली उन्नत स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन संरक्षण प्रणाली है, जिसका उद्देश्य ट्रेन परिचालन के दौरान संभावित जोखिमों को कम करना तथा असामान्य परिस्थितियों में लोको पायलट को तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए रेल सुरक्षा को और सुदृढ़ करना है। कवच प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने के लिए आवश्यक टावर लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। वहीं रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। यह रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और बगरा तवा सुहागपुर तथा दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 4 नई सीधी हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता हवाई मार्ग शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भोपाल से रीवा की पहली उड़ान को फ्लैग ऑफ करेंगे। इन नई सेवाओं के शुरू होने से प्रदेश की आंतरिक एवं अंतर्राज्यीय हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इन सेवाओं का संचालन अलायंस एयर द्वारा किया जाएगा। इन सभी घरेलू हवाई मार्गों को मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 8 नए हवाई मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 मार्गों पर हवाई सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जबकि 4 नए मार्गों पर सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व प्रदेश में आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला, प्रदर्शनी और साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 13 अगस्त को बड़े पैमाने पर तिरंगा बाइक रैली तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे भी अभियान से जोड़ा गया है।
3: हर घर तिरंगा 5 वर्ष पूरे कर चुका है और 5 वर्ष पूरे होने के बाद में हर वर्ष हर घर तिरंगा का व्याप जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार हमने 2 नए विषयों को इसके साथ में जोड़ा है, क्योंकि इस बार देश वंदे मातरम के 150 वर्ष सम्मान के साथ में मना रहा है, इसलिए हमने आग्रह किया है कि इस बार हम वंदे मातरम के गायन करते हुए उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करें।
0: खंडवा में शहरी क्षेत्रों में तिरंगा बाइक, ई बाइक और साइकिल रैली, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा रैली और प्रभात फेरी की तैयारी की जा रही है। वहीं स्कूलों में तिरंगा रंगोली, प्रश्नोत्तरी, नुक्कड़ नाटक और अन्य देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है, जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की बेरुखी के बीच पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले

24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मंडला जिले में बीती रात से ही अच्छी बारिश हो रही है और सावन में पहली बार बारिश की झड़ी देखने को मिली है। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े का चयन सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। ये प्रतियोगिता 9 से 14 अगस्त तक नाइजीरिया में आयोजित की जा रही है। खुशी वुमेन्स एपी स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे वर्तमान में भारतीय टीम के साथ नाइजीरिया में हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले के प्रवास के दौरान कल केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेवती रेंज में वृक्षारोपण किया। आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान आज सुसनेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। सिंगरौली जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिद्धिकला में कलेक्टर गौरव बैनल ने औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक व व्यवस्थागत गतिविधियों का जायजा लिया। नीमच जिले में विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपार आईडी के निर्माण व सत्यापन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। और खंडवा जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के दौरान नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने नमो वन में बेंबू पार्क एवं मियावाकी पद्धति से एक नगर एक जंगल विकसित करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर और डिजिटल सुरक्षा उपायों पर बल दिया। सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के संकल्प के साथ भोपाल में संपन्न हुआ ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में प्रदेश की 4 नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे और आज से 17 अगस्त तक जन भागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक सपनों को, दें हम आकार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण अदिति जैन का, संयोजन व प्रस्तुति सुव्रता यादव की।
2: गागर में सागर।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अदिति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र की साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर।
2: सागर मंथन।
3: बीते सप्ताह शहर में हुई गतिविधियों की जानकारी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में अब गांव के दूरस्थ मजरे टोलों तक सड़क बनेगी। इस संबंध में हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सौरभ जैन।
4: जी नमस्कार, मैं सौरभ जैन, महाप्रबंधक मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण PIU सागर से। जी मैं जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फोर्थ फेज है, जिसमें ऐसी बसाहट है जिनकी जनसंख्या 500 से ज्यादा है, उनको कनेक्टिविटी देने का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें हमारे द्वारा टोटल 75 बोर्डों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें से 33 बोर्डों के टेंडर अभी लगे हुए हैं। ये हमारी जो प्लानिंग है कि जून 2027 तक इनको कंप्लीट करना है, और मतलब मेन इसका जो मकसद है, ऐसी दूर राजस्व गांवों की कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो छोटे छोटे मजवे टोले बचे हुए हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, तो उनको जोड़ने के लिए मुख्यतः ये योजना बनाई गई है। तो जिसका पहला फेज ये है कि 500 से ज्यादा की जो बसाहटें हैं उनको कनेक्टिविटी देना है, जिससे वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो वहां पे एजुकेशन इंप्रूव होगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा।

0: पाएगा। थैंक यू।
1: शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में बीते मंगलवार राष्ट्रीय रसायन शास्त्र दिवस मनाया गया। इस दिवस समारोह पर पीसी रे के वैज्ञानिक योगदान को याद किया गया। हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ए पी मिश्रा।
2: वस्तुतः ये प्रोग्राम आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिनको कि हम भारत में आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक मानते हैं, और उन्होंने उस दौर में 1861 में उनका जन्म हुआ था और एक लंबे समय तक इंडियन केमिकल सोसाइटी और पहला इंडस्ट्रियल जो भारत का रिवॉल्यूशन था फार्मास्यूटिकल सोसाइटी उन्होंने भारत में खोली थी, और एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। लगभग पिछले 2000 साल में रसायन शास्त्र का जो विकास है पूरे भारत और इस परंपरा में, उसके बारे में हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री किताब लिखी। तो उनका जन्मदिन होता है, हम प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्वविद्यालय में, तो संकल्पित तौर पर ये कार्यक्रम हम सब जगह करते हैं। संयोग से इस बार चूंकि विश्वविद्यालय में 2 तारीख को ये कार्यक्रम हमने बड़े स्तर पर प्राचार्य आनंद तिवारी जी के आह्वान पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आयोजित किया, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी आए। जितने महापुरुष होते हैं उनके जीवन से हम कुछ न कुछ जो प्रेरणा लेते हैं कि वो कहाँ से जीरो से शुरू करके वो हीरो के स्टेज तक पहुँच जाते हैं, इसके बारे में हमने जब छात्राओं को वहाँ बताया, शेयर किया, तो बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आए। 2 लड़कियाँ आगे आई, उन्होंने अपना संक्षिप्त उद्बोधन भी दिया उसके बारे में जो चीजें हैं। हमारा उद्देश्य यही था कि जो नई परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान भारतीय विज्ञान उसका दर्शन है, लोग उसको महसूस करें और आगे देश को आगे बढ़ाने में, जो कि जैसा कि आचार्य रे का उद्देश्य था कि भारत में शिक्षा भी हो और उसका उपयोग भी हो। साइंस मस्ट कम टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी एंड दैट वी टारगेट देयर वी इम्प्लीमेंटेड देयर, और बहुत ही ज्यादा विद्यार्थियों में इस पर उत्साह दिखा और आगे भी उन्होंने इनका जीवन चरित्र पढ़ करके हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री और भी चीजें हैं आगे काम करने के लिए पथ प्रदर्शन के लिए संकल्प लिया।
1: राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सागर में जिला स्तरीय बहुविभागीय प्रशिक्षण का आयोजन बीते सप्ताह किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप गर्मी से जुड़ी बीमारियों और तीव्र श्वसन संक्रमण की रोकथाम, समय पर पहचान, उपचार, निगरानी और जन जागरूकता गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन को मजबूत करना रहा। प्रशिक्षण में स्वास्थ्य विभाग के अलावा यातायात पुलिस, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, शिक्षा, श्रम, उद्योग, वन, महिला एवं बाल विकास विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहे।
3: शिखर की ओर।
1: श्रोताओं, 7 अगस्त 2026 को पूरे देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में दिवस मनाया जाता है, जिसने देश में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और भारतीय हथकरघा उद्योग को नई पहचान देने का काम किया। इसी विषय के संबंध में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम सागर से रूपेश श्रीवास्तव, और जानकारी दे रहे हैं हथकरघा और हस्तशिल्प के महत्व, इस क्षेत्र से जुड़े बुनकरों और कारीगरों के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं, उनके लाभ और इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संबंध में उपयोगी जानकारी।
4: हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम से रूपेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। 7 अगस्त के लिए जो नेशनल हैंडलूम दिवस मनाया जाता है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि जिले के या अपने देश के प्रदेश के बाहर बुनकर हैं, उनके सम्मान के लिए मनाया जाता है। और अभी 7 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी रवीन भवन में भोपाल में जो है ना, पूरे प्रदेश के जो बुनकर हैं उनको लिए एक सम्मानित राशि और ताम्र पत्र इसको देखते हुए सम्मानित किया गया। भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य यही है कि जो स्वदेशी को लोग अपनाए, और इसे अपनाने के लिए जो है ना स्टेट गवर्नमेंट और आपका भारत शासन भी जो है ना बुनकरों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और इन्हें बढ़ावा देने के लिए जो है ना हमेशा सरकार के द्वारा यही समय समय पर जागृति मंच के थ्रू लोगों को कैसे हथकरघे की बनी हुई चीजें वस्तु उपयोग करें, इससे जो बुनकर हैं उनकी आय भी बढ़े, तो इसलिए ये विशेष रूप से ये 7 जो अगस्त

इंटरेस्ट रखा गया है कि इसको नेशनल हैंडलूम के रूप में लोगों को पता चले कि हथकरघा के जो बुनकर हैं उनको अपन कैसे बढ़ाएं और उनके बनाए हुए वस्त्रों का उपयोग हर घर में

0: नहीं हुई। जो बेडशीट है, मेडिकल गॉज, बैंडेज है, गाउन है, ये सिर्फ हथकरघा के जो बुनकर है जो वो बनाएंगे, वही चीज आप मेडिकल हॉस्पिटल में सप्लाई करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि बुनकरों को रोजगार, डायरेक्ट रोजगार भी मिल रहा है, और इसके साथ साथ साथ ही गवर्नमेंट प्रोडक्शन के अलावा हम लोग मृगनैनी के माध्यम से भी जो है उनके उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जो है विक्रय केंद्र खुले हुए हैं, मृगनैनी खुले हुए हैं, जहाँ पर कस्टमर आते हैं और मृगनैनी में जो भी सामान मिलता है वो पूरा 100% जो है ना हथकरघा के ही बनी हुई वस्त्र ही रखे जाते हैं जिनका विक्रय होता है। शासन का ब्रांड है ये। मेन उद्देश्य मृगनैनी का उद्देश्य यही है कि लोगों को, यदि आप हैंडलूम का व्यवसाय करना चाहते हैं और हम जो हैंडलूम लगाते हैं तो वो जो यार्न होता है वो काफी महंगा होता है एक्चुअली, तो वो शासन की स्कीम है हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम की कि यार्न हम लोग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाए, अपना उत्पाद बना करके लेके आए, तो एक प्रकार का और वह उत्पाद जो है ना उनको कहीं बेचने भी नहीं जाना, सीधा मृगनैनी में या हमारा ऑफिस बना हुआ है हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम का, यहाँ आकर के वो सीधा अपना उत्पाद लेके आते हैं, फिर उनको वेजेस वगैरह उनको सीधा हो जाता है। तो ये अच्छी स्कीम है, लोग बाग यदि में जुड़े, और हमारा भी हमेशा यही प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैंडलूम लगाएं, हैंडलूम नया एक अपना व्यवसाय स्थापित करें। और इस व्यवसाय में क्या है कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर फील्ड में कंपटीशन है, लेकिन ये हैंडलूम के व्यवसाय में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये सीधा एक तो गवर्नमेंट आपको सीधा मार्केट उपलब्ध करा रहा है, दूसरा हैंडलूम के व्यवसाय करते हैं तो आप लोकल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट के जल्दी मतलब आसानी से सेल हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का कंपटीशन भी नहीं है आपका, इसमें आप फील्ड में आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा, कम मिलेगा अभी तो। डिपार्टमेंट का उद्देश्य यही है, मतलब इसका नाम ही हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम, इसमें दो सेक्टर जुड़े हुए हैं, एक हथकरघा जुड़ा हुआ है और दूसरा हस्तशिल्प में हमारा जैसे जूट के प्रोडक्ट हो गए, आपके टीकमगढ़ का जैसे बेल मेटल हो गया, पीतल का जो सामान बनाते हैं, हाथ से बनी हुई जो कलाकृतियां हैं, तो वो भी हम लोग मृगनैनी के माध्यम से उनको मार्केट उपलब्ध कराते हैं, तो उसमें भी शिल्पियों के लिए प्रोत्साहित करते हैं हम लोग। फिर उसमें स्टेट के लिए हम लोग स्टेट अवार्ड के लिए इसमें चयन होता है, यदि चयन हो जाता है तो उसमें वो 1,00,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र और राज्यपाल उसको प्रोत्साहित करता है इसको। तो ये हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में भी अच्छा, मतलब यदि कोई शिल्पी है यदि वो अपनी कला को उठाना चाहे, यदि उसकी कला देखने लायक अच्छी प्रदर्शित हो रही है, उस कला को हम लोग और उसमें कैसे निखार लाया जाए, ये इसमें भी हम लोग गाइड करते हैं हस्तशिल्प विकास निगम की, इसमें और कैसे इसको और अच्छा सुंदर बनाया जाए, और यदि आपको किसी प्रकार का यदि आपको सहायता चाहिए डिजाइनर की तो वो भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। हम लोग हर तरह के जो आपके हैंडीक्राफ्ट में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ये भी लोगों की कलाकृतियों को उभारने के लिए हम लोग प्रशिक्षित करते हैं, इसमें जो शिल्पी रहता है बुनकर रहता है उसको किसी भी प्रकार का इसमें पैसा नहीं देना होता ट्रेनिंग का, बल्कि उनको एक स्टाइपेंड छात्रवृत्ति भी शासन उपलब्ध कराता है। अब हमारा उद्देश्य तो ये है कि स्वदेशी स्थानीय हथकरघा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और बुनकर समुदाय की आय कैसे बढ़े, ई कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसको हम लोग जोड़ते हैं, उसमें प्रयास करते हैं, जो युवा पीढ़ी है भारतीय जो संस्कृति परंपराओं से जोड़ना, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना, और अंत में हमारा संदेश यही है कि हथकरघा केवल कपड़ा ही नहीं बल्कि हमारे बुनकरों के जो श्रम है भारतीय कला को जीवित रखे हुए हैं, एक इतिहास है, और हथकरघा दिवस पर जो लोकल हैंडलूम उत्पाद को अपनाकर देश के और जिले के कारीगरों को सशक्त बनाए, यही हमारा कहना है। थैंक यू।
1: सागर के मोती।
2: कहते हैं कि इंसान की पहचान केवल उसके पेशे से नहीं बल्कि उसके संवेदनशील और मानवीय व्यवहार से भी होती है। ऐसे ही व्यक्तित्व है अंशित बलैया, जिनकी उम्र 35 वर्ष है और सागर के निवासी हैं। पेशे से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और पिछले कई वर्षों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ विधि के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रोताओं, लेकिन उनकी पहचान केवल एक सफल अधिवक्ता तक नहीं सीमित है। अंशित समाज के उन बेजुबान जीवों के प्रति भी गहरी संवेदना इतना रखते हैं जो अपनी पीड़ा किसी से नहीं कह सकते। अंचित बलैया लंबे समय से स्ट्रीट डॉग्स और अन्य पशुओं की देखभाल और उनकी मदद और सेवा के कार्य में सक्रिय हैं। उनका ये मानवीय

0: प्रयास समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो हमें करुणा, सह अस्तित्व और जीवों के प्रति संवेदनशील होने का संदेश जरूर ही देता है। सुनिए अंशित बलैया से उनके इस सफर, उनके अनुभवों और पशु सेवा के प्रति उनके विचार।
1: मेरा नाम अंशित बलैया है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, सागर में ही प्रैक्टिस करता हूँ और 2012 से स्ट्रीट एनिमल्स के लिए सेवा कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा जो स्कूलिंग है वो सागर से ही है, कॉलेज भी मेरा सागर ही है। प्लस मैं 10th क्लास में मुझे ये रियलाइज हो गया था कि लॉ इज फील्ड फॉर मी। देन उसके बाद फिर इंटर्नशिप की, पहले मेरा इंटरेस्ट जो था वो जुडिशरी की तरफ था, बट लेटर ऑन जब मैंने प्रैक्टिस किया, इंटर्नशिप किया, देन आई रियलाइज के जुडिशरी जो है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। देन मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करके एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एस्टेब्लिश किया। 2015 से मैं एज अ प्रैक्टिसनर एडवोकेट हूँ, सागर में मैं 2018 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले तो जो भी हम जानना चाहते, जैसे मुझे पता था कि मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे आफ्टर इंटर्नशिप समझ में आया, तो आई कैन गेट मोर फ्रॉम माई प्रैक्टिस। तो ये पहले हमें क्लियर होना चाहिए बच्चों के मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरी कैपेसिटीज कितनी है, देन ओनली फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। रादर देन दिस के जैसे जो डिफिकल्ट फील्ड हो वही अच्छी हो, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने भी जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो कई लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया, या लाइक जो देखते हैं कि एडवोकेट्स काफी सारे होते हैं, देखते हैं कि मतलब एडवोकेट्स की अर्निंग उतनी नहीं हो पाती जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बट मेरे साथ बिल्कुल अपोजिट हुआ। मेरा ज्वाइन सागर में जैसे हुआ, विद इन ईयर मुझे बैंक है, मैं उसमें एम्पैनल्ड हुआ, देयरफॉर उसके बाद मैं दूसरे बैंक्स में एम्पैनल्ड हुआ। इवन लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में भी मेरे पास प्रॉपर इतना काम था कि मुझे कोई इशू नहीं था। मोर देन 500 फाइल्स मेरे पास अभी प्रेजेंट में है, और सिर्फ मुझे अभी सागर में रहते रहते सिर्फ 6-7 साल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड खराब है, बस काम करना और आपकी इच्छा, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि अभी बात लॉयर की चल रही है, एडवोकेट लॉयर बेसिकली चल रही है बात, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट लॉयर और सॉलिसिटर, ऑल थ्री जो तीनों हैं, ये तीनों लीगल फील्ड का टर्म है। जैसे कि लॉयर एज अ पर्सन होता है जिसको लॉ पता होता है, जो लॉ पढ़ा हुआ होता है, जिसने LLB किया हुआ होता है। एडवोकेट जो पर्सन है वो कोर्ट में अपियर होता है, केस प्रेजेंट करता है, एंड क्लाइंट के बिहाफ पे जो है जज के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स पुट अप करता है। एंड सॉलिसिटर जो होता है, बेसिकली सॉलिसिटर इज अ पर्सन जो लॉयर भी है, और बेसिकली वो जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार करता है फॉर क्लाइंट, नॉट केस पर्पस, बट वो तैयार करेगा लाइक नोटिस या सर्च रिपोर्ट्स हो गई, या कुछ भी प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए लाइक एग्रीमेंट होता है, इन सब चीजों को जो तैयार करता है वो सॉलिसिटर कहलाता है। इसमें बेसिकली जो अभी दो कोर्सेज होते हैं, पहले सिर्फ आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स होता था, बट अभी आफ्टर 12th इंटीग्रेटेड कोर्स होता है फॉर 5 ईयर्स, तो उसमें BBA LLB, BA LLB एंड BCom LLB, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग कोर्सेज ऑफर करती है, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप जो भी स्टूडेंट है वो प्रोसीड कर सकता है। जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरे फैमिली से कोई भी लॉयर नहीं है, प्लस बैकग्राउंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, तो ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं रहा कि मैं इस फील्ड से कोई कनेक्टेड रहा हूं। बस ये था कि जब मैं कॉलेज ज्वाइन हुआ तो मेरे साथ फ्रेंड्स थे मेरे जिनके साथ बात होती थी, इंटर्नशिप्स वगैरह की, तो वहां पर बेसिकली एक्सपोजर जितना हम ले सकते हैं इस फील्ड में उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। लाइक ऑडिटरी स्किल्स इस प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है, जो एक्सपोजर आप लोगों से मिलोगे, उनसे बात करोगे, तभी आपके डेवलप स्किल्स हो पाते हैं। तो मैंने जो भी सीखा अपने एक्सपीरियंस और जो मैं इंटर्नशिप, जो मैं बेसिकली ट्रेनिंग लेने गया कि लॉयर्स के अंदर में भोपाल में, इंदौर में, जहां भी मैं गया वहां से मैंने ये सब ग्रैब किया, और देन फिर मुझे डिसाइड किया कि मैं एज अ प्रैक्टिस ज्वाइन करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को लॉ पता होना चाहिए। जो हमारा लॉ है उसका बेसिक एक इंग्रेडिएंट्स है कि लॉ ये मानता है कि हर एक पर्सन, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको लॉ मालूम है, तभी कोई भी हम क्राइम करते हैं तो उसको सीधा हमारे ऊपर पनिशमेंट दे दिया जाता है उसका, या FIR हो जाती है या उसका एक्शन हो जाता है, क्योंकि लॉ ये मानता है कि आपको पता है कि लॉ क्या बोलता है। तो मेरे हिसाब से हर एक पर्सन को लॉ पता होना चाहिए, हमारे उनके खुद के राइट्स पता होने चाहिए। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उससे सामान लेते हैं और आपको प्रॉपर बिल नहीं देता है, वो MRP से ऊपर चीजें देता है आपको, तो ये भी लॉ का एक पार्ट है। व्यक्तिगत विकास के लिए देश के कानून को जानना बहुत ही आवश्यक है। मेरा जो सफर स्टार्ट हुआ लॉ फील्ड में, उसके साथ ही मेरा जो था एनिमल राइट्स की तरफ भी रुझान बढ़ा, और उसके साथ ही फिर मैंने एनिमल राइट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। कई सारे NGOs जो MP में एक्टिव है, जो बेसिकली उनके साथ मैं ज्वाइन हुआ, मैंने उनकी हेल्प की एज अ जो भी लीगल फील्ड में मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं

इनिशियली बहुत बड़ा एनिमल लवर नहीं था। अगर मुझे कहीं डॉग दिखते भी थे तो मैं शायद वो गली चेंज कर देता था, उस गली से मैं गुजरता भी नहीं था, ये भी मेरी स्थिति थी। बट फिर मैं एक एक्सीडेंटली मेरे घर पर एक पैट आया, दैट वाज वो, उसको भी मैंने रेस्क्यू किया था एक पैट शॉप से, लाया 2 दिन के लिए था। बट जब मैंने उससे कनेक्ट किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो बस बोल नहीं पा रहे हैं, बाकी वो सब कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बस हमें समझने की बात है। जब मुझे वो रियलाइज हुआ तो मुझे समझ में आया कि इनको पेन भी होता है, इनको समझ में आता है, इनको हर एक चीज, मतलब जो इमोशंस हम फील करते हैं एज अ ह्यूमन, जो भी एनिमल है वो सब फील करते हैं। ऐसा हमें लगता है कि जैसे हमारा बच्चा है वो खेलना चाहता है, तो एक कोई भी एक पेट होता है उसकी एज लगभग 3 साल के, एक डॉग की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी डॉग, उसकी जो माइंड सेट होता है उसका होता है 3 साल के बच्चे बराबर होता है, 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है उतना माइंड सेटअप होता है। तो जैसे वो मस्ती करते हैं तो हम उनसे, उनको समझ नहीं पाते बट वो मस्ती करना चाहते हैं। मैं 2012 के बाद से, जब से मैं ये इस फील्ड में आया हूँ, जब से मैंने इनका इमोशन समझा है, बहुत सारे स्ट्रीट डॉग को कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी को कुछ भी एक्सीडेंट, कुछ बीमार हो गया, मैंने मोर देन 250 और 300 डॉग्स से ज्यादा को मैंने ट्रीटमेंट किया है, और आज तक किसी भी डॉग ने मुझे बाइट नहीं किया। बेसिकली कई बार ऐसा होता था कि सिचुएशन बनती थी कि अब मुझे, मेरे पास कोई वैसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं उसको कवर कर पाऊं या कुछ भी, तो इमरजेंसी में जब हमें लेके जाना पड़ा, तभी भी आज तक किसी डॉग ने मुझे बाइट नहीं किया। बेसिकली मैं इस बात को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी भी जानवर से बात करें या उसको बेयर हैंडेड, मतलब बेसिकली बिना किसी प्रिकॉशन के आप उसको टच करें, बट मेरा ये है कि अगर हमें उनसे डरना नहीं है, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ जी सकते हैं। अगर हम उनको खिला नहीं सकते तो हर्ट भी ना करें, जैसे कि हम ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, सेम वो भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं हमारे जैसे। तो उस लाइफ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी योगदान दे पाता हूँ तो बस उसी कारण मेरा जो मोटिवेशन है वो यही है कि मैं फील्ड पे जाके ये सब कर पाता हूँ। मुझे कई बार ऐसा अवार्ड्स के लिए बुलाया गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ सिर्फ अपनी भावनाओं से जुड़कर कर रहा हूँ। तो यदि मैं किसी भी अवार्ड फंक्शन में जाता हूं तो वो थोड़ा सा मेरी भावनाओं से अगेंस्ट जाएगा, लेकिन लॉकडाउन में मैं और मेरे ग्रुप, हम सभी ने मिलके काफी एनिमल्स को फीड किया, इसके बाद हमारे ग्रुप को काफी रिकॉग्निशन भी मिला, काफी सारे इवेंट्स में हमको बुलाया गया फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। बट मेरा और मेरे जो साथ में ग्रुप मेंबर्स थे सबका ये सोचना था, जो भी पशु सेवा हम कर रहे हैं वो हम अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के लिए कर रहे हैं, और भावनाएं एक बहुत ही निजी सब्जेक्ट हो जाता है, और ऐसे निजी सब्जेक्ट में यदि हम इसको पब्लिक करेंगे तो वो मुझे नहीं लगता कि सही है। इसलिए हम सभी ने मिलके, सभी अवार्ड फंक्शन या जो भी इवेंट्स थे उसमें सादर, हमने उनको बताया कि बस उस अवार्ड की जगह पर आप हमारे मोटिव, जो हमारा मोटिव है, गो विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली कि नेचर भी बचा रहे और डेवलपमेंट भी हो और लोग सामंजस्य बना के चले प्रकृति के साथ में, इस चीज को आप हमारे मोटिव को आगे बढ़ाएं, वही हमारे लिए प्राइज होगा, और सबसे बड़ा प्राइज वही है हमारे लिए। बस श्रोताओं से ये बोलना चाहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप पूरी लगन से और मेहनत से, ईमानदारी से काम करेंगे, आपको सक्सेस हमेशा मिलेगी। मेहनत कभी भी किसी की व्यर्थ नहीं जाती है, और पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको नहीं खिला पाते तो उनको परेशान भी ना करें। बस मैं सभी से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो श्रोताओं ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ग्रामीण जीवन की सादगी, लोक संस्कृति की मिठास और भक्ति की भावना जब एक साथ आके मिलत है, तब एक ऐसी प्रेरणादायक पहचान बनत है जो लोगों के दिलों को छू जात है। ऐसे ही व्यक्तित्व है सुगर लाल ठाकुर। सुगर लाल ठाकुर एक किसान हुए के साथ साथ लोक भजन और लोकगीत लेखन में भी विशेष रुचि रखत हैं। उन्हें गावे को शौक भी है और अपनी रचनाओं के माध्यम से लोक संस्कृति और भक्ति की परंपरा को जीवंत बनाए रखने को उनको प्रयास रहत है। आज की बातचीत में सुगर लाल ठाकुर अपने विचार साझा कर रहे हैं, साथ ही में अपनी मधुर आवाज में एक सुंदर सो लोकगीत भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सुनत है का कह वो है सुगर लाल ठाकुर को।
1: दीदी नमस्ते। सुगर लाल ठाकुर ऊंटकटा। हमने पढ़ाई की है 12वीं तक, किसानी करत हैं और दुकान चलाते हैं। मम्मी पापा एस्पायर हो गए, एक लड़का है, हमारे बहू है और बीवी है। लड़का घर पे ही किसानी करत है, पढ़ाव है सेकंड ईयर तक। बहू भी पढ़ी लिखी है, सेकंड ईयर भी करे हैं। पढ़व लिखो जरूरी है, साक्षर रहो। मम्मी पापा वृद्ध हो गए थे, सो फिर हमारा ने पढ़ाई बंद करने पड़ी।

0: घर चलाने पड़ो हमारे, सो फिर हमने पढ़ाई भी छोड़ दी और छोटी छोटी योजना में काम कराते रहे, जैसे DPIP में सचिव भी रहे और गावे बजावे को बहुत शौक है। तो मोहन दाव के संग लगे रहते, गात बजाते रहते। मोहन भज्जा भाईचारा है हमारे शुरू के मित्र, हाँ उनकी मंडली है और वे हमारे साथ में पढ़ने वाले यहाँ शुरू के मित्र हैं। बहुत गावे बजावे को शौक है तो हमारे लाने छठमी से। सो फिर गांव में से कोई कार्यक्रम हो रहा है ना, तो गांव में बजाते रहते, गात खेलत रहते, हारमोनियम सीखत रहते। हल्के से हते 6 साल के, सो माँ साहब जानते कि ये गात बजाते हैं, सो बालकों को सिखावे बुलाते रहते। बुदौलिया सर हते तो स्कूल में शनिवार को बुलाते वे गावे बजावे के बालकों से सिखाओ। गावो एक ऐसी मोहिनी चीज है के हर कहूं माने इज्जत मिलती है। मंदिर गाए साई खेड़ा जो रायसेन जिले में है, तो वहां हमने मंदिर में गाया बजाया, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। कुसमगढ़ मंदिर भी गए, सियावर स्वामी की कुटी में और केवलारी कुटी में भी गए, हम गुना गए थे और भी गए, फिर देहातों में गए, जैसे जैसी नगर है, सियर मऊ है, गदगुआ चमेली बना भी लेते हैं गाना, जे सीता मैया के संबंध में हो रही है और उन्हीं की ये भगत है। फूल तोड़ वे बाग में गई थी जब हैं के राम लक्ष्मण आ गए, राम जी की नजर गया परी सीता जी पे, वही के बारे में जा भगत है, जा भगत हमारी ने लिखी है और आपको हम गा के सुना रहा है। मई फुलवा तोड़े सिया जान की हो माँ, मई फुलवा तोड़े सिया जान की हो माँ, अरन बरन के फुलवा रे भैया हो रही गुलझार, चंपा चमेली महक बेला की बहार, बेला की बहार, माई फुलवा तुरसिया जान की हो माँ, बोले काली कोहलिया रे अमुआ की डार, सुआ परेवा बोले मोरा बोलाते पहार, माई फुलवा तुलसिया जान की हो माँ, राम लखन दुई बारे रे तोड़न जा रहे फूल, सिया पे पर गई नजरिया सोदे बोदे गए भूल, माई फुलवा तुलसिया जान की हो माँ। सब जन ने पंच लोग अच्छे से मिलकर रहे जी, अपने जो शौके हैं अपनी पूरी करो, गावे बजावे की है, पढ़ाई लिखाई के संबंध में अच्छी पढ़ाई करें, साक्षर बने, हमारी सभी बहनों को हाथ जोड़ कर राम राम।
1: इस सप्ताह चर्चा में
2: श्रोताओं, खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं है बल्कि ये अनुशासन, समर्पण, मेहनत और देश का गौरव बढ़ाने का माध्यम भी है। यही भावना देखने को मिल रही है इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहां विभिन्न देशों के खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और अपने अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं उपलब्धियों के बीच भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बेहद सराहनीय रहा है, विशेष रूप से जूडो प्रतियोगिता। हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। हमारे लिए ये और भी गर्व की बात है कि सागर की बेटी यामिनी मौर्य ने जूडो प्रतियोगिता के महिला 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक सिल्वर मेडल जीतकर न केवल सागर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया है। उनकी ये सफलता युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और ये बताती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर हम आपको सुनवाएंगे यामिनी मौर्य का विशेष संदेश, साथ ही उन्हें हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही उन सभी खिलाड़ियों को भी हमारी ओर से शुभकामनाएं जो कॉमनवेल्थ खेलों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और पदकों के माध्यम से अपने अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। सुनते हैं यामिनी मौर्य का संदेश।
3: मुझे इस टाइम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं

0: सिल्वर मेडल लेके आई हूँ अपने इंडिया के लिए, अपने सागर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मुझे पता भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी बात होगी हमारे नेशन के लिए, क्योंकि ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ और पहला मेडल है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कॉमनवेल्थ जाके अपने इंडिया के लिए मेडल जीतने की। और मैं अपने सागर वालों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब मैंने जूडो शुरू किया था तो शायद मैं अकेली लड़की थी अपने ग्रुप में, सागर से अपने पुरानी सदर से जूडो किया जिन्होंने, और मुझे देख के शायद अभी काफ़ी बच्चों ने शुरू किया है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों को किसी ना किसी स्पोर्ट्स में डालें ताकि वो हर चीज़ में ग्रो कर सके मेंटली और फिजिकली, और स्पेशली लड़कियां, उनको सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए। और जूडो एक बहुत अच्छा गेम है लड़कियों के लिए और उनके सेल्फ डिफेंस के लिए, और अगर वो काफ़ी अच्छा करते जाएंगे तो मेरे जैसे मेडल भी जीत सकती हैं। थैंक यू।
1: अभी आप सुन रहे थे रेडियो पत्रिका गागर में सागर, और इस रेडियो पत्रिका का संकलन और निर्माण किया अदिति जैन ने।
2: गागर में सागर।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण था अदिति जैन का, संयोजन व प्रस्तुति थी सुव्रता यादव की। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं समीर के बोल, संगीत सलीम सुलेमान का, आवाज आसमा की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समीर के बोल, आवाज थी आसमा की, और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना।
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
3: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना।
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना।
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आकाशवाणी सागर से इस वक्त आप सुन रहे हैं संगीत सरिता। अब आपको सुनवा रहे हैं रोहित शर्मा के बोल, आवाज और संगीत कृष्णा का।

0: कृष्णा के गाए इस गीत के साथ ही संगीत सरिता का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
6: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
7: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस की प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछें, समाधान भी खोजें, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल, क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कांवड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 एआई से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर-31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
7: A talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning, by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
8: भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा। तो हम जब इस टॉपिक पर बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीजन कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है। तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज की आवश्यकता है उस चीज का ध्यान रखा जाता था। लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं। अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीजों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे, एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टिन्यूटी भी बिलोंग थी और एक

0: सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था, लेकिन जैसे जैसे फैमिली जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें वो कहता है नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु की समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हर चीज़ का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। राम दुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन्स एक्ट उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 41 स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज। एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमजोर वर्ग हैं उन सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन कमजोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी है जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सके। हमारे पास अन्य कानून भी हैं जैसे कि हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट है जहां कि ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। देखिए पहले हम कहते थे बेटी को जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी। और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए। इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है, पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएं बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में।
1: You have been listening to a talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning. We slip into a short break.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning.
2: Major areas जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, income security, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये ensure कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक income है तो उनको हम protect कर सकते हैं। फिर उनके health care एक बहुत ही major area of concern है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं functional capacity उनकी impair हो जाती है। उनकी safety और security के लिए helplines बनाई जानी चाहिए, जो कि हमारे state में बना भी रखी हैं। Housing loans मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहे, उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं, वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन्स के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, ज़रूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए, तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, बच्चे मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतंग एक गेम डिजाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें ज़रूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाएं, हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स में ही, बच्चे समझे, वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मल स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सकें, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सकें, उनको एजुकेट कर सकें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज़ रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जा कर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है, सारे के सारे हमारे पास पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा। वो ये नहीं समझते, परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी। आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम

0: सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है. बस ज़रूरी है अवेयरनेस की. हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस, जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी.
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग बाय प्रोफेसर वागेश्वरी देसवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. दिस टॉक वॉज पार्ट ऑफ अ वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर. प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य. प्रायोजक वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल 38 पीली कोठी सागर.
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर.
4: वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य.
5: आज इस प्रोग्राम का ये पहला अंक लेकर हम हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल की प्रिंसिपल महोदया मैडम अलका श्रीवास्तव. आज आपसे हम पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, फिर आपने स्कूल ही को क्यों चुना?
6: देखिए, ये स्कूल की स्थापना 1986 में मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर कुसुम श्रीवास्तव के द्वारा की गई. उनका बहुत अच्छा दखल रहा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. केवी में वो प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई. उन्होंने बहुत सारी स्टूडेंट लाइफ्स को छुआ और रिटायर होते होते तक उनको ये लगने लगा कि मैं इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ. उस समय उनको ये भी लग रहा था कि सागर नगर में अच्छे स्कूलों की बहुत कमी है, अभाव था. और उनका खुद का एक्सपोजर ये उन्हें कहता था कि सागर नगर को एक अच्छे स्कूल की जरूरत है जिसमें सब तरह की सब प्रकार की सुविधाएं हो. तो ऐसा स्कूल नहीं था कोई जहाँ पे जैसे कंप्यूटर्स और खेल कूद के मैदान नहीं थे, हॉर्स राइडिंग नहीं थी. शुरुआत उन्होंने छोटे उससे करी लेकिन उनका एक खुद का एक्सपोजर, जैसे मैंने कहा केवी का होने की वजह से उनको ये लग रहा था कि संपूर्ण विकास के लिए एक अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जरूरत है.
5: आपने बताया कि आपकी मदर इन लॉ ने अपना, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि वैसी रही और उन्होंने इसको सोचा, आपने उनकी बहू होने के नाते
6: जी
5: इसको चार चांद लगाए और बहुत साल से सागर देख रहा है कि आप इसको नित नए आयाम दे रहे हैं. तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इसे अपना सपना कब बनाया?
6: देखिए, जब उन्होंने स्टार्ट किया 86 में
5: जी
6: तो मात्र 18 बच्चों के साथ उन्होंने शुरुआत करी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते एक ही दो साल के अंदर वो एक जो छोटा सा पौधा था वो बहुत पनपने लगा. और जब तक बच्चे सेकेंड और थर्ड क्लास में पहुंचे तो उनके पास तीन तीन सेक्शंस हो चुके थे ऑलरेडी. हर क्लास में 100-100 बच्चे हो चुके थे, 100-100 ऊपर हो गए थे. और उनको ये लगा कि इसको आगे बढ़ाने के लिए उनको किसी युवा शक्ति की भी जरूरत है. तो उन्होंने मुझसे बात करी. मुझे वैसे भी क्रिएटिविटी की तरफ मेरा है झुकाव और मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए. 94 में मैंने पदार्पण किया जब बच्चे 5th से 6th में आए. तब से मेरे पास जो उन्होंने वो रोक दिया और वो आगे बढ़ते गए. और मुझे इसमें लगता है ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है. और जिस दिन से मैंने कदम रखा उस दिन से मैंने इसको पाला पोसा और एक बच्चे की तरह, एक छोटे बालक की तरह मैंने इसको
5: परवान चढ़ा.
6: पाला है, पोसा है, अब वो परवान चढ़ने का
5: बिल्कुल चढ़ रहा है. मेरा अगला सवाल मैडम यही है
6: जी
5: कि जिनको आपने पाला पोसा इस लाइक बनाया, आज आपके बहुत सारे बच्चे बहुत इस स्कूल के बहुत अच्छे मुकाम पर है, ये सबको पता है. तो जब आप उन बच्चों को देखती है, मिलती है या कहीं जाती है और उस शहर उस देश में वो मिल जाते हैं,
6: हाँ बिल्कुल,
5: तो आपको एक अलग अनुभूति होती है. कैसा है ये अनुभव?
6: आजकल बहुत स्कूल्स खुल रहे हैं, बहुत कॉलेजेस खुल रहे हैं और लोग उसको बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं.
5: हाँ जी.
6: और ये आप यकीन माने, मेरे लिए पैसा हमेशा एक बाय प्रोडक्ट था. जैसे कि आप जब गन्ने का रस निकालें तो उसके बाद जो उसका वो बचता है ना, वो बाय प्रोडक्ट
5: जी
6: काम आता है. मेरे लिए जो पैसा था वो हमेशा बाय प्रोडक्ट था.
5: हाँ जी.
6: मेरे लिए जो असली शहद, असली मधु, जो रस था, वो ये मेरे बच्चों का जो मुकाम पे पहुंचे हुए हैं और जिस तरह का वो

0: एक प्रोडक्ट बन के निकले हैं वो मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी मेरी उपलब्धि है। आपने कहा कि बहुत सारे जगहों में है, बिल्कुल सत्य है ये। जगह में कोई न्यूयॉर्क में है या कोई ऑस्ट्रेलिया में है, जगह तो ऑफ कोर्स बहुत मायने रखती है, लेकिन उनकी जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारे बहुत सारे बच्चे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS IPS में हैं, जजेस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, सब अपने एक से बढ़कर एक अपने मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। वो सब हम लोगों से जुड़े हुए हैं। वो जो अनुभूति है
1: जी, जी, जी।
0: वो हमारी असली पूंजी। ये हम सब कुछ पैसा और ये शोहरत सब कुछ छोड़ के जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिलों में जो हम लोगों की जगह है और वो जो इज्जत देते हैं उसका कोई दूसरा पर्याय नहीं है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतना समय हमें दिया
0: जी।
2: वात्सल्य, बच्चों का सुनहरा भविष्य।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य, प्रायोजक वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल 38 पीली कोठी सागर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा।

हम फिर हाजिर हैं अपने नन्हे श्रोताओं के मन का कार्यक्रम लेकर, क्योंकि आज रविवार है बच्चों, और आज होता है आप सभी के लिए विशेष कार्यक्रम। जी हाँ, बाल सभा, जिसमें आप सभी के लिए आपके मतलब की सारी जानकारी, किस्से, कहानी, कविताएं, संदेश, ये सब तो हम ले ही आते हैं, साथ ही एक छोटे से साथी को भी लेकर आते हैं। हाँ, कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो जाते हैं भाई आपके साथी, जो ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और कोई कविता या कहानी भी सुनाते हैं। तो बच्चों, आज ये सब होगा, लेकिन पहले ये बताइए कि कभी किसी को ये कहते हुए सुना है आपने कि भाषा हमारे संस्कारों का दर्पण होती है, या ये वाक्य कहीं लिखा हुआ देखा हो? तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, कि हमारी भाषा, हमारे हाव भाव यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी शिक्षा किस परिवेश में हुई है, हम किस पृष्ठभूमि से आते हैं, हमें किस तरह के संस्कार दिए गए हैं, हमारी बातचीत, हमारे शब्दों से ये सब अपने आप ही जाहिर हो जाता है बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ कर बोलो, है ना। घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारी दादी नानी हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, ये सब हमसे बहुत जुड़ाव रखते हैं बच्चों, और हम खूब सारी बातें सीखते हैं उनसे। समय समय पर वे हमें अच्छा बुरा सब बताते रहते हैं, अपने अनुभव हमसे साझा करते रहते हैं, तो उनकी बातों पर हमें अमल करना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ बोल दिए, अभद्र भाषा का प्रयोग हमने कर लिया, अभद्र शब्द हमारे मुंह से निकल गए, तो उस वक्त हो सकता है कोई हमें कुछ ना कहे, लेकिन पीछे से हमारे व्यक्तित्व पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है बच्चों। हमारी शिक्षा पर, हमारी संस्कृति पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए बहुत विनम्र होकर, बहुत सोच समझ कर हमें बोलना चाहिए, भाषा भी अच्छी उपयोग करनी चाहिए। और जानते हैं, हमारा प्रभाव अच्छा बनाने के लिए या अपना असर अच्छा छोड़ने के लिए शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। बड़ों से बात करते समय हमें उन्हें कैसे सम्मान देना है, किन शब्दों का उपयोग हमें करना है, ये हमें आना चाहिए या हमें सीखना होगा, है ना। ऐसा करने से सामने वाला आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा बच्चों। और दूसरा है सकारात्मक बातचीत। होता क्या है बच्चों, जब किसी से हम बात करते हैं तो हमारी सोच, हमारी परवरिश झलकती है। उम्मीद से भरे दो शब्द किसी को खुश कर सकते हैं, किसी के जीवन में आशा की किरण पैदा कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई साथी या उसका परिवार कठिन समय से गुजर रहा हो, क्योंकि उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में आते हैं, है ना। ऐसे में हम यदि कह देते हैं कि चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, कठिन समय है ये भी गुजर जाएगा, तो बच्चों इतने से शब्दों से ही सामने वाले की तकलीफ, उसकी उदासी

0: कुछ हद तक कम तो हो ही जाती है, थोड़ा सुकून सा भी महसूस होता है। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा सा इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये बड़ा असर दिखाएंगी। जैसे चार लोगों में हमें सम्मान मिलता है ऐसा करने से, लोग हमारी बात सुनना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि संबंध भी मजबूत होते हैं, और ये सब चीज़ें मिलकर हमारे आत्मविश्वास पर गहरा असर छोड़ती हैं बच्चों। यानी हम अपने आप पर, अपनी कार्यकुशलता पर ज़्यादा विश्वास कर पाते हैं। चलिए, जब हम अपनी बात सुनने सुनाने की बात कर रहे हैं तो भाई बाबा जी को हम कैसे भूल सकते हैं बच्चों, है ना। वे तो वैसे भी हमें प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो हमारे बड़े काम की भी होती हैं। और बाबा जी जब कहानी सुनाते हैं तो लहजा भी बड़ा विनम्र एकदम, है ना। चलिए तो देर नहीं करते हैं, मिलते हैं बाबा जी से और सुनते हैं ये कहानी जिसका शीर्षक है जादुई चिड़िया।
1: बच्चों फिर आ गए बाबा लेके एक और प्यारी सी कहानी। बच्चों आज की कहानी है चतुर बीरबल की, और कहानी का नाम है जादुई छड़िया। बहुत पुरानी बात है बच्चों, एक बार एक धनवान व्यापारी के घर डकैती पड़ी। व्यापारी को अपने नौकरों पर शक था, परंतु तब भी वो असली चोर को नहीं पकड़ पा रहा था। इसलिए उसने बीरबल के पास जाकर उससे सहायता मांगी। बीरबल, मेरे घर चोरी हो गई है, चोर को पकड़ने में हमारी मदद करो। उसकी समस्या सुनने के बाद बीरबल ने उससे अपने नौकरों को बुलाने को कहा। जब वहां सभी नौकर इकट्ठे हो गए तो बीरबल ने उन सबसे कहा, ये तो तुम सभी जानते हो कि तुम्हारे मालिक के घर में डकैती पड़ी है, और ये काम तुम लोगों में से ही किसी एक ने किया है। जिस भी व्यक्ति ने ये काम किया है, यदि वो सामने आकर अपना अपराध स्वीकार कर ले तो उसे हम माफ कर देंगे, अन्यथा वो पकड़े जाने पर दंड के लिए तैयार रहे। ये सुनकर कोई भी नौकर आगे नहीं आया, सभी इस बात पर अड़े रहे कि वे निर्दोष हैं। तब बीरबल ने सभी नौकरों के हाथों में एक एक छड़ी देते हुए कहा, तुम सभी को जो छड़ियां दी जा रही हैं, ये सभी जादुई छड़ियां हैं। इन सभी छड़ियों की लंबाई बराबर है। अब तुम सब में से जो भी चोर होगा, जिसने भी चोरी की होगी, उसकी छड़ी कल तक आकार में 2 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर घर चले गए। रात को वे सभी आराम से सो गए, परंतु उनमें से जो चोर था उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ये डर सता रहा था कि कल सुबह तक उसकी छड़ी की लंबाई अवश्य ही 2 इंच बढ़ जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने उठकर अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया, ताकि 2 इंच बढ़ जाने पर उसकी लंबाई औरों की छड़ियों के बराबर ही रहे। अगले दिन सुबह बीरबल उस व्यापारी के घर पहुंचे। फिर उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी छड़ियां लाने को कहा। अचानक बीरबल ने उनमें से एक नौकर को पकड़कर खींचा और व्यापारी से बोले, ये रहा आपका चोर। नौकर तुरंत बीरबल के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा, माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने ही चोरी की थी। ये देखकर व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, हुजूर क्या वास्तव में छड़ी की लंबाई 2 इंच बढ़ गई थी? नहीं, वास्तव में ये कोई जादू छड़ियां नहीं थी, बल्कि ये साधारण छड़ियां थी। दरअसल इन सभी ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया था, इसलिए असली चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया। मैंने इन लोगों में से केवल उसे ढूंढा जिसकी छड़ी सबसे छोटी थी, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमानी के आगे बड़े से बड़ा अपराधी भी नहीं टिक सकता। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी, हमें जरूर लिखिएगा और अगले सप्ताह बाबा फिर आएंगे एक और प्यारी सी कहानी लेके। तब तक बाबा ये चल

0: बच्चों, बहुत ही प्यारी सी ये कहानी अभी बाबा जी ने हमें सुनाई। सुनकर बिल्कुल अच्छा लगा होगा आपको, है ना, और सीखने को भी मिला, क्योंकि बाबा जी बातों बातों में अच्छी सीख भी दे जाते हैं। इसीलिए तो सारे बच्चे बाबा जी के पिटारे से कहानी सुनने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे एक ऐसे क्रम में जहाँ अपने देश की विरासत, अपने देश की संस्कृति के बारे में बात करते हैं हम। और अभी तो स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल नज़दीक है बच्चों, तो आज तो करने के लिए ढेर सारी बातें हैं हमारे पास, है ना। आइए शुरू करते हैं झांकी हिंदुस्तान की।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं
2: झांकी हिंदुस्तान की।
0: तो बच्चों, स्वतंत्रता दिवस नाम से ही जाहिर है कि हमारे देश की आज़ादी की बात हो रही है, और हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि इस दिन को हासिल करने के लिए हमारे देश के वीरों ने, हमारे देश की वीरांगनाओं ने कितने कष्टों को सहा है, है ना। जब आज ये दिन हम मना पा रहे हैं और स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं, तो बच्चों हमें इसे सहेज के रखना है, इसकी सुरक्षा करनी है। लोगों के बलिदान को, उन्होंने जो आहुति दी है आज़ाद होने के लिए, उसे ज़ाया नहीं होने देना है। आज हमें बोलने, पढ़ने, खेलने, अपने विचार रखने, हर चीज़ की स्वतंत्रता मिली हुई है, तो इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों का खून बहा है बच्चों, तब आज ये हमें मिला हुआ है। हालांकि अभी आप छोटे हैं, धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को, इसीलिए आपको जानकारी हो, समझ पाएँ, आप महसूस कर पाएँ, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कार्यालयों में कार्यक्रम होते हैं, झंडारोहण होता है, राष्ट्रगान होता है, सारे देशवासी एक दूसरे को बधाई देते हैं, और भी कई तरह की गतिविधियां होती हैं, और नेशनल हॉलीडे भी होता है, है ना। और यदि स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो 15 दिन एक महीने पहले से ही रिहर्सल कराई जाने लगती है, बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक बात बताएं बच्चों हम आपको, वैसे तो 15 अगस्त का दिन हम सभी के लिए गर्व महसूस कराता है, लेकिन जब हम कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं तो एक अलग ही बात होती है, है ना। हम अपनी स्वयं की बात कर रहे हैं बच्चों, जब हम भी आपकी उम्र के थे तो खूब प्रैक्टिस करते थे, अपने पार्टिसिपेट करते थे बहुत सारा, बड़ा अच्छा महसूस होता था और खुशी भी होती थी। तो आज हम सभी को सहभागिता करते हुए, आप सबको सहभागिता करते हुए देख के महसूस कर सकते हैं हम, तो आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं आने वाले स्वतंत्रता दिवस की। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब कुछ दिनों में परीक्षाएं भी होने वाली हैं, है ना, तो इस बात पर भी पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा आपको, एकाग्र होकर तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच थोड़ी सी लापरवाही भी हो सकती है, कभी थकान हो जाती है, कभी स्कूल से ही लेट आते हैं, कभी मन नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर अपनी प्राथमिकता तय करना ज़रूरी हो जाता है बच्चों, समय सारणी बनाना ज़रूरी हो जाता है, हर चीज़ को बराबर समय देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी जिन चीज़ों को करने में हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, हम उन्हें सबसे ज़्यादा समय देते हैं। जैसे डांस प्रैक्टिस है, देशभक्ति गीत की रिहर्सल है, कोई नाटक है जिसमें आपने भाग लिया हुआ है उसकी प्रैक्टिस है, खेलकूद हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी रुचि के होते हैं, है ना, और इनको करते हुए हम ये याद नहीं रखते कि अगले 15 दिनों में हमारी परीक्षाएं भी होने वाली हैं। तो बच्चों, पूरी मेहनत से पढ़ाई भी करनी है और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेना है। इसलिए स्कूल से वापस आने के बाद, खाने पीने के बाद थोड़ा आराम करें और फिर पूरे एकाग्र चित्त होकर पढ़ाई करें। जो भी होमवर्क मिला है उसे पूरा कर लें, या फिर जो लेसन या पाठ पढ़ाया गया है, जो प्रश्न हल करवाए गए हैं, उन्हें दोबारा से दोहराया भी जा सकता है। और पढ़ाई पूरी करने के बाद ये भी ज़रूरी हो जाता है कि नींद पर्याप्त हो रही है या नहीं, क्योंकि बराबर सोने से हम स्वस्थ रहते हैं और तरोताज़ा महसूस करते हैं, और यदि व्यायाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कम समय में बेहतर पढ़ाई कर पाना संभव हो पाता है बच्चों, व्यायाम करने से, है ना। तो बच्चों तैयारियों के बीच पढ़ाई भी आप करते रहिए, और झांकी हिंदुस्तान की में आज बस इतना ही। अब हम मिलेंगे एक प्यारे से साथी से जो आपसे बातचीत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है अपना, है ना। जी हाँ, अब शुरू होने वाला है बाल मंच।
1: लेकर आए बच्चों का शो
3: बाल मंच।
0: भाई, जैसे कि हमने कहा बच्चों आपसे कि अब बारी है बाल मंच की, और इस क्रम में हमारे नन्हे नन्हे से साथी यहाँ पर आते हैं, हमसे ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, किस्से कहानी सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, अपनी बातें हमसे साझा करते हैं, और अपने छोटे छोटे से साथियों की मीठी मीठी सी बातें सुनकर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। भाई कभी कभी तो क्या होता है कि ऐसा लगता है बस हमारी और आपकी बातें चलती रहें, बैठकर हम ढेर सारी प्यारी प्यारी सी खूब सारी बातें करें। तो आज हमारे साथ एक प्यारी सी बालिका उपस्थित है, चलिए उनसे हम मुलाकात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए अपने दोस्तों को।
4: दीदी, मेरा नाम श्यामभवी सिंह है।
0: भाई श्यामभवी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा नाम है आपका। अक्सर क्या होता है कि बच्चों को अपने नाम का अर्थ नहीं पता होता है, आपको मालूम है आपके नाम का अर्थ क्या है?
4: मेरे नाम का अर्थ पार्वती है।
0: भाई बहुत अच्छी बात है, आपको आपके नाम का अर्थ पता है, अक्सर बच्चों को नहीं पता है होता है, इसलिए हमने ये बात पूछी आपसे। और श्याम भाभी ये बताइए कि किस कक्षा में पढ़ती हैं आप?
4: दीदी मैं यूकेजी बी में पढ़ती हूँ।
0: यूकेजी बी में पढ़ती हैं आप, और परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, हमको ऐसा लग रहा है शायद, है ना?
4: हाँ दीदी, बहुत जल्दी होने वाली है।
0: तो फिर तैयारी कैसी चल रही है आपकी?
4: दीदी उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ।
0: भाई एग्जाम में रिजल्ट अच्छे आए इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, और अभी से मेहनत करोगी तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आपके बहुत अच्छे आएंगे, है ना श्याम भाभी?
4: दीदी मैं पूरी कोशिश करूँगी।
0: भाई बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी कोशिश कामयाब हो, है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आए आपका। अब हम आपसे पूछ लेते हैं कि अपने दोस्तों को आज क्या सुनाने वाली हैं आप?
4: दीदी अब मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ जो बसंत के ऊपर है।
0: भाई बसंत के ऊपर कविता लेकर आई हैं हमारी श्यामभवी, चलिए भाई जल्दी से सुना दीजिए अपने दोस्तों को।
4: आया बसंत हंसते गाते, रंग बिरंगे फूल खिलाते, झूम रही है डाली डाली, कूक रही कोयल मतवाली, गुन गुन गुन गुन भवरे गाते, तितली रानी से बते आते, सर्दी कहती अब है जाना, मौसम हुआ बड़ा सुहाना, आया है ऋतुराज बसंत, छाई जग में सुबह आनंद, आया है ऋतुराज बसंत, छाई जग में सुबह आनंद। थैंक यू।
0: भाई बहुत ही खूबसूरत बसंत के ऊपर ये कविता सुनाई आपने श्याम भाभी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे दोस्तों को, छोटे छोटे जो दोस्त आपके रेडियो पे हैं, उनको बहुत अच्छा लगा होगा। और आज आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं श्याम भाभी। और दूसरी बात ये कि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, एक बार फिर से हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बहुत अच्छा भविष्य बनाएं अपना और बहुत कामयाब हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम भवी सिंह, बहुत ही प्यारी सी बातें हुई इनसे हमारी, और इनकी बातें, इनकी कविता सुनकर यदि आपको भी लगता है कि बाल मंच में आकर अपने साथियों से रूबरू होना चाहते हैं, तो हर बुधवार को शाम 4 बजे से रिकॉर्डिंग की जाती है, तो आप आ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं और इस क्रम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अब शुरू होती है बच्चों रेडियो की पाठशाला।
1: तो बच्चों ये है
2: रेडियो की पाठशाला।
0: बच्चों कभी

आपने ये सोचा है कि ज़्यादातर बारिश में ही पौधे क्यों लगाए जाते हैं? अक्सर कहा जाता है ना कि बारिश हो रही है, ये पौधा लगा लो, वृक्षारोपण कर लो। प्रशासन द्वारा भी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें पौधा लगाना अनिवार्य होता है। तो बच्चों, हम भी कहेंगे कि बारिश जो है पौधों के लिए नम बनाए रखने का काम तो करती ही है, जीवन देने का काम भी करती है। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं जिसके कारण पानी ज़रूरी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो पौधों को जीवित रखने के लिए या पौधों को जीवित रहने के लिए या उन्हें बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जो बारिश से उन्हें मिलता है और अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं पौधे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि मिट्टी में जो खनिज मौजूद होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उन्हें घोलने का काम करता है पानी, जिनको पौधे अवशोषित कर लेते हैं और उनकी बढ़त अच्छी होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए है ही ज़रूरी। इसमें पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। और आपको पता है, पौधे अपनी पत्तियों से पानी छोड़ते हैं बच्चों, जिस वजह से वे अपने आप को ठंडा रख पाते हैं, यानी गर्मी में उन्हें राहत मिलती है। तो इस प्रक्रिया के लिए बारिश पानी की भरपाई कर देती है। साथ ही क्या है कि बारिश की वजह से मिट्टी में जमाव होता है, नम हो जाती है ना मिट्टी, तो जमी रहती है, कुल मिलाकर पौधों की जड़ों को सहारा देती है ना। और वैसे भी ये बात तो हम समझते ही हैं कि बारिश के बिना बहुत से पौधे जीवित नहीं रह सकेंगे, और पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए बारिश का होना ज़रूरी है, और बारिश में पेड़ लगाना, पौधे लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। चलिए, रेडियो की पाठशाला में आज बस इतना ही। अब सुनेंगे हम आपकी पसंद का एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और बहुत ही प्यारा सा इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है, देश के सिपाहियों को सलाम करने का मौका है, तो ये गीत तो बनता है।

वेलकम। भाई बहुत ही प्यारा सा ये गीत बच्चों अभी हमने सुना, और अब बस इतना ही कहेंगे हम कि आप खूब खुश रहें, बारिश के मौसम का खूब आनंद लें, साथ ही खूब सारे पेड़ भी लगाते रहें, अपने साथियों से भी लगवाते रहें और प्यारे प्यारे गीत सुनते रहें, साथ ही अपनी मीठी सी शरारतें जारी रखें। इन्हीं सब बातों के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी सागर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 MHz पर।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बातें
2: जंगल से।
1: आज के इस अंक में बात होगी गिद्ध से। नमस्कार गिद्ध जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए।
3: नमस्कार, मैं गिद्ध हूँ। हो सकता है मुझे देखकर आपको मोर या तितली जैसी सुंदरता ना दिखे, लेकिन प्रकृति में मेरा काम बहुत बड़ा है। मैं आकाश में ऊंचा उड़ता हूँ और बहुत दूर तक देख सकता हूँ। मेरी आंखें तेज होती हैं, इसलिए मैं जमीन पर पड़े मरे हुए जानवरों को दूर से देख लेता हूँ। मैं शिकार करके जीवों को नहीं मारता, बल्कि जो जानवर पहले ही मर चुके होते हैं उनके शवों को खाकर धरती को साफ करता हूँ। मैं प्रकृति की सफाई में मदद करता हूँ। अगर मेरा काम रुक जाए तो सड़ान, बदबू और बीमारी फैल सकती है, इसलिए मुझे बदसूरत नहीं उपयोगी और जिम्मेदार पक्षी समझिए। मेरी लंबी उड़ान और तेज नजर भी प्रकृति की व्यवस्था का हिस्सा है। मैं बहुत ऊंचाई से बड़े क्षेत्र को देख सकता हूँ, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि कहाँ सफाई की जरूरत है। दुनिया में हर काम महत्वपूर्ण होता है। सफाई का काम भी उतना ही सम्मान का है जितना पढ़ाने, इलाज करने या खेती करने का। मेरा जीवन यही सम्मान सिखाता है।
4: बातें कम कर काम दिया का। अरे काम से होगा नाम दिया का।
5: अरे अरे अरे अरे अरे

0: अड़ी है कोई।
1: हम एक बात जानना चाहते हैं कि आपको प्रकृति का सफाई कर्मी क्यों कहा जाता है गिद्ध जी?
2: मुझे प्रकृति का सफाई कर्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं मरे हुए जानवरों के शवों को जल्दी साफ कर देता हूँ। जब कोई पशु मर जाता है और उसका शरीर खुला पड़ा रहता है तो उसमें सड़न शुरू होती है। सड़न से बदबू आती है और कई तरह के हानिकारक कीटाणु बढ़ सकते हैं। इंसानों के लिए यह जगह गंदी और खतरनाक हो सकती है, लेकिन मेरे शरीर की बनावट ऐसी है कि मैं सड़े हुए मांस को खाकर भी उसे पचा सकता हूँ। मैं प्रकृति की सफाई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। जंगल और गांव में मृत पशु भी समस्या पैदा कर सकते हैं। मैं और मेरे साथी उस समस्या को तेजी से कम करते हैं। यह सेवा मुफ्त है, प्राकृतिक है और बहुत प्रभावी है। इसलिए गिद्धों का होना गांव और जंगलों के लिए वरदान जैसा है। हम घटते हैं तो मनुष्यों को वही काम कठिन तरीकों से करना पड़ता है।

0: काम कर।
1: चिंताजनक बात यह है कि आपकी संख्या में इतनी कमी क्यों आई है?
2: मेरी संख्या कम होने का एक बड़ा कारण पशुओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ हानिकारक दवाएं रही हैं। जब किसी बीमार गाय, बैल, भैंस को ऐसी दवा दी जाती है और बाद में वह मर जाता है तो उसके शरीर में दवा का असर बचा रह सकता है। जब हम गिद्ध उस मृत पशु को खाते हैं तो वह दवा हमारे शरीर के लिए जहर बन जाती है। इससे हमारे गुर्दे खराब हो सकते हैं और हम मर सकते हैं। इसके अलावा बड़े पेड़ों को कटना, सुरक्षित घोंसलों की कमी, बिजली की तारें और भोजन की कमी भी हमारे लिए खतरा है। यह बात बताती है कि मनुष्य की एक छोटी सी गलती किसी भी पूरे पक्षी परिवार को संकट में डाल सकती है। इसलिए पशु चिकित्सा, सफाई, वन्य जीव संरक्षण सबको समझदारी से जोड़कर चलाना जरूरी है। पशुओं के इलाज में सुरक्षित विकल्पों का उपयोग गिद्धों को बचा सकता है। जब डॉक्टर, किसान, पशुपालक और वनकर्मी मिलकर काम करते हैं तभी समाधान निकलता है। प्रकृति की समस्या का हल भी मिलकर ही मिलता है। साथ

0: मॉर्निंग।
1: पर्यावरण के लिए आपका और आपके साथी गिद्धों का क्या महत्व है, हम ये जानना चाहते हैं।
2: हम गिद्ध पर्यावरण के प्राकृतिक सैनिटाइजर जैसे हैं। सैनिटाइजर हाथों के कीटाणु कम करता है और हम प्रकृति में सड़ते शवों से फैलने वाली गंदगी को कम करते हैं। मृत जानवर अगर लंबे समय तक खुले पड़े रहें तो उन पर मक्खियां, चूहे, आवारा कुत्ते बढ़ सकते हैं। इससे कुछ बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है। हम गिद्ध झुंड में आकर बहुत कम समय में शव को साफ कर देते हैं। इससे सड़न कम होती है और वातावरण ज्यादा साफ रहता है। हम किसी से धन्यवाद नहीं मांगते, लेकिन हमारा होना गाँव, जंगलों और चारागाहों के लिए बहुत उपयोगी है। मेरा महत्व केवल जंगल तक सीमित नहीं है। गांव में पशुपालन होता है, चारागाह होते हैं और कभी कभी पशु मर जाते हैं। ऐसे समय में प्राकृतिक सफाई कर्मी बहुत मदद करते हैं। मैं मृत पशु को देखकर डरता नहीं, क्योंकि यह मेरे भोजन का हिस्सा है। प्रकृति ने मेरे शरीर को इसी काम के लिए बनाया है। जो चीज हमें गंदी लगती है वह किसी दूसरे जीव के लिए जरूरी भोजन हो सकती है। यही प्रकृति का अद्भुत चक्र है।

0: अब सवाल ये उठता है कि यदि प्रकृति से गिद्ध समाप्त हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा?
1: अगर गिद्ध समाप्त हो जाए तो मृत जानवरों की सफाई बहुत धीमी हो सकती है। ऐसे सब खुले पड़े रहेंगे, उनमें सड़न होगी, बदबू फैलेगी और कई प्रकार के जीवाणु बढ़ सकते हैं। तब आवारा कुत्ते, चूहे, मक्खियां उस जगह पर ज्यादा संख्या में आ सकते हैं। इससे इंसानों और पशुओं में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही मृत पशु हटाने का बोझ मनुष्यों पर अधिक पड़ेगा। गाँव और जंगलों की स्वच्छता प्रभावित होगी। हम गिद्ध कूड़ा नहीं बल्कि प्राकृतिक साफ सफाई का काम करते हैं। हमारे न होने से प्रकृति की एक जरूरी सेवा रुक जाएगी। गिद्धों की समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी बात है। हमें यह समझना चाहिए कि वन्यजीव संरक्षण केवल जंगल की बात नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन, गांवों और शहरों की सुरक्षा से भी जुड़ा है।
2: प्रकृति में जैव विविधता ही हमारी पहचान।
3: स्वच्छ जंगल, नदियाँ, वन्य जीव जंतु और हरी भरी धरती हमारी शान। हर छोटे बड़े जीव, कीड़े, पौधे और पारिस्थितिक तंत्र का अनूठा संतुलन ही जैव विविधता है। जैव विविधता को सहेजे, समृद्ध भविष्य बनाए। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द्वारा चयनित में जारी।
0: आपको साफ सफाई का महत्वपूर्ण काम करना है, लेकिन चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश तो देते जाइए।
1: मेरा संदेश है कि हमें डर या घृणा की नज़र से मत देखिए। हम किसी का नुकसान करने नहीं आते बल्कि धरती की सफाई करने आते हैं। पशुओं के इलाज में ऐसी दवाओं का प्रयोग होना चाहिए जो गिद्धों के लिए सुरक्षित हो। गाँव में लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि गिद्ध घट रहे हैं तो यह प्रकृति के लिए चिंता की बात है। बड़े पुराने पेड़ों को बचाएं क्योंकि कई पक्षी उन्हीं पर घोंसला बनाते हैं। अगर कहीं घायल गिद्ध या कोई संकटग्रस्त पक्षी दिखे तो उसे छोड़ने की बजाय वन विभाग या जानकार लोगों को बताएं। आप लोगों को बता सकते हैं कि ये पक्षी कितने उपयोगी है। याद रखिए, सुंदरता केवल रंगों में नहीं होती, असली सुंदरता उपयोगी काम और जिम्मेदारी में भी होती है। आप गिद्धों के लिए जागरूकता फैला सकते हैं। बहुत से लोग उनके बारे में जानते ही नहीं, उन्हें केवल अशुभ पक्षी समझ लेते हैं। गिद्ध धरती के सफाई कर्मी हैं। जब लोग किसी जीव का महत्व समझते हैं तो उसे बचाने की इच्छा बढ़ती है। मुझे सम्मान दीजिए क्योंकि मैं चुपचाप आपकी दुनिया को साफ रखने में मदद करता हूँ।
4: जो जीवन से हार मा...

0: जिद की भूमिका में आज हमारे साथ रहे तारा चंद गौड़।
1: और अब साहिबा को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से। बातें
2: जंगल से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

इस गीत के पहले आपने सुना था जो गीत, उसे हमने फाइटर फिल्म से लिया था। विशाल दादलानी, शेखर राव जियानी की आवाजें थी, कुमार के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। और अभी जो गीत आप सुन रहे थे, इसे गाया था उषा उत्तुप, कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम था कभी खुशी कभी गम। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। आइए इस कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

0: एबीसीडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अनुष्का मनचंदानी और साथियों की आवाजें थी। मयूर पुरी ने इस गीत को लिखा था। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
7: वंदे
6: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
8: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
6: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।

रॉक स्टार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें यार रहमान, जावेद अली, मोहित चौहान की थी, इरशाद कामिल के बोल थे ए आर रहमान की तर्ज थी। इसी गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने के सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप सदैव प्रसन्न और समृद्ध रहिए, इसी कामना के साथ इजाजत।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित।

सन 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आर डी बर्मन का था। ये फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आइए सुनते हैं गोमती के किनारे, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्बोस।

लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस। अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा।

सावन कुमार का जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। वैसे अमूमन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत से लोग मुंबई आते हैं। सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले सावन कुमार।

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना।

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

पवन कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में एक कलाकार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। ऐसे ही एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरिभाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए।

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आएं। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि ये वैम्पिश नंबर है। रेखा ने एक ना सुनी और शूटिंग के दिन अपनी हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से पूरी तरह तैयार अपने अंदाज की ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ हाजिर हो गई। ये सब देखकर मैं कुछ न कह सका, फरियाल को मनाया और श्रोताओं ये गाना फिर रेखा के हिस्से आया।

सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वो बेवफा, साजन की सहेली, लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम बेवफा। इस गीत को सावन कुमार ने लिखा और संगीत महेश किशोर का है।

सन 1992 में बेवफा से वफा, खलनाई का, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाक की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था।

0: वाणी है। अब सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। शिवपुरी जिले में स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 से 15 अगस्त तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े की थीम स्वनिधि से समृद्धि आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर रखी गई है। इसी क्रम में बीते दिनों शिवपुरी के शहरी आजीविका मिशन कार्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नए आवेदन लिए गए और लंबित तथा पहले से अस्वीकृत प्रकरणों का निराकरण किया गया। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक किसानों को जोड़ने और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ चलाए जा रहे हैं। बीते दिनों पोहरी तहसील में एसडीएम जेपी गुप्ता ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन विकासखंड पोहरी की ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों में भ्रमण कर किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा और फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं जन समस्या निवारण की अगर बात की जाए तो शिवपुरी जिले के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासकीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीते 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को जिले के विभिन्न विकास खंडों और तहसीलों में प्रशासनिक टीम सीधे जनता के बीच पहुंचकर जन संवाद शिविर आयोजित कर रही है। इन शिविरों में आम नागरिकों की शिकायतों को सुना जा रहा है और निराकरण किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत खनिया धाना शिविर में उद्यम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्थानीय उद्यमियों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना। वहीं नशा मुक्त युवा भारत अभियान की बात करें तो इस अभियान के तहत शिवपुरी के श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में बीते दिनों सांस्कृतिक व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विद्यार्थियों ने लोक संगीत, समूह नृत्य, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद, चित्रकला और रील मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस मौके पर सभी ने नशा मुक्त भारत के लिए हस्ताक्षर किए और शपथ ली। वहीं नशे को खत्म करने और इसे रोकने के लिए कृत संकल्पित शिवपुरी जिला पुलिस ने भी बीते दिनों नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पिछोर में स्कूली बच्चों और युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रशांत शर्मा ने विभिन्न स्कूलों में जाकर युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। 7 प्रमुख शिक्षण संस्थानों में करीब 5,000 से अधिक छात्र छात्राओं व शिक्षकों को नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई गई। शिवपुरी जिले में पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत स्थानीय अमले द्वारा पशुपालकों को नियमित टीकाकरण, बीमारियों से बचाव, पशु हानि से बचाव, कृत्रिम गर्भाधान के लाभ और सार्टेट सीमेन योजना की जानकारी दी जा रही है। शिवपुरी जिले में बीते दिनों केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय भोपाल द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में सेवा सुशासन के 12 वर्ष, विकसित भारत एट 2047 और वीबीजी रामजी तथा कारगिल विजय दिवस के विषयों पर चित्र प्रदर्शित किए गए। इनके माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकसित भारत के संकल्प और भारतीय सेना के शौर्य एवं बलिदान को दर्शाया गया। जागरूकता कार्यक्रम का समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। शिवपुरी जिले के कोलारस में ग्वालियर संभागायुक्त मनोज खत्री ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिले में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जिले के कोलारस और पिछोर विकास खंड को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और मूलभूत बुनियादी ढांचे के स्तर को ऊपर उठाना है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण बीते दिनों किया, जिसमें शिवपुरी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस स्टेशन का लोकार्पण किया। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किए गए स्टेशन से यात्रियों को अब नया और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े और उन्होंने क्षेत्रवासियों को इसकी बधाई दी। इस कार्यक्रम में शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, कलेक्टर अर्पित वर्मा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। शिवपुरी जिले में 14 जुलाई से 10 तक अभियान की शुरुआत हो गई है। ये अभियान 31 अगस्त तक संचालित किया जा रहा है। वहीं शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बीते दिनों शासकीय कृषि प्रक्षेत्र रनौद स्थित बीज प्रक्रिया केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां बीजों की साफ सफाई, ग्रेडिंग और भंडारण की प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को मिलने वाले बीजों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। शिवपुरी जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: शिवपुरी जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था रंजीत गुप्ता का और वाचन किया था अभिषेक कटियार ने। ये आकाशवाणी है कुछ ही पलों में।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति जयशेखर की, संयोजन सुव्रता यादव का।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने में।
1: राहतगढ़ से बोल रहे सर, प्रमोद हरबार।
0: क्या करते हैं आप राहतगढ़ में?
1: सर वो ईंटों ईंटों का धंधा करते हैं, खुराई और सागर से लेके राहतगढ़ बेचते हैं।
0: अच्छा अच्छा, यानी खुद नहीं बनाते हैं। बहुत ही सुंदर है राहतगढ़ आपका
1: जी।
0: कुछ ऐसे प्रयास होने चाहिए कि लोगों को पता चले कि सागर जिले में एक इतना अच्छा स्थान है जहाँ पर घूमने के लिए जाया जा सकता है।
1: किला है,
0: हाँ,
1: बनेरी घाट है, शिव मंदिर है, 108वे है यहाँ पर।
0: बहुत ही अच्छा लगता है और जंगल भी बहुत ही अच्छा है। तो जंगल को और हरा भरा रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग?
1: जंगल को हरा भरा रख कर पेड़ कटाई न करे अकेले और देखा राखी हुए अकेले।
0: हाँ, और साथ ही हम वृक्षारोपण जरूर करें इस मौसम में। हाँ, और केवल वृक्षारोपण करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी देखभाल करना, ये भी हमें बखूबी आना चाहिए
1: जी।
0: तो इस बार कुछ लगाने का इरादा है आपका क्या?
1: ये फूलों वूलों के गेंदा मेंदा के पेड़ लगाए घर पे।
0: नहीं, आप कोई वृक्ष लगाइए जिससे कि पंछियों को छाया मिले और लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिल सके।
1: जी जी सर।
0: नीम का पेड़ लगा सकते हैं, पीपल, बरगद, ऐसे पेड़ हैं जो कहीं भी लगाए जा सकते हैं।
1: जी जी जी।
0: जहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा हो तो आप उसमें जाके योगदान जरूर दें अपना।
1: अपने बड़े पुल के पास से जंगल लगवाए सर।
0: अच्छा अच्छा, तो लगाइए आप, अपने दोस्तों के साथ मिलके वृक्षारोपण जरूर करें।
1: जी जी।
0: तो बता दें गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: ओ, गाना वो वाला सुनवा दी सर, वो मेरे किशोर कुमार को गाना है, देखो वीर जवानों खुद पे इल्जाम ना आए। सर फिल्म को तो नहीं, एक बार आपने सुनवा दो, आकाशवाणी से सुनो तो गाना अच्छा लगो। तो
0: चलिए सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया।

0: जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: देख, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know na,
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: हेलो।
8: हेलो,
7: स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने में।
8: जी सर नमस्कार।
7: नमस्कार, अपना नाम
8: सोनू जैन बोल रहे हैं सर, बंडा से।
7: सोनू भाई क्या करते हैं बंडा में?
8: सर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है सर।
7: अच्छा अच्छा, बढ़िया चल रहा काम आपका?
8: जी सर, जी सर की कृपा से अच्छा चल रहा है।
7: जी भाई, सोनू भाई एक काम जरूर करें कि इस मौसम में वृक्षारोपण करने का प्रयास करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ।
8: जी सर, जी सर।
7: तो कभी किया है अपने वृक्षारोपण?
8: जी किया है ना, हमारा यहाँ क्या नाम से बांदरी रोड पर मकान बना था।
7: हाँ हाँ।
8: तो वहाँ पे हमने लगाए थे ना पेड़, अच्छा बड़ा हो गया सर पेड़।
7: कौन कौन से पेड़ लगाए थे आपने?
8: सर एक पेड़ लगाया था सर।
7: अच्छा अच्छा, हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत सारे पेड़ जरूर लगाएं, अपने दोस्तों को साथ ले जाएं और पेड़ जरूर लगाएं, और साथ ही जैसे आप बोल रहे हैं कि जो आपने पेड़ लगाया था वो बड़ा हो चुका है, तो आपको खुशी मिल रही होगी देख के।
8: जी सर खुशी होती है ना सर।
7: कौन सा पेड़ लगाया था आपने?
8: वो सर यहाँ बंडा में पूरी पूरे मार्केट में वही वही पेड़ लगे हैं, उसका नाम नहीं है पेड़ का मालूम।
7: अच्छा अच्छा
8: जी सर।
7: छायादार होगा?
8: हाँ छायादार है सर।
7: चलिए बहुत ही अच्छी बात है, वृक्षारोपण जरूर करें। और बता दें गाना कौन सा सुन रहे हैं हम आपको?
8: गाना सुनना है सर राजपूत फिल्म का, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। हम दुकान खोलने आते हैं सुबह तो FM चालू कर लेते हैं और जब जाते हैं जब बंद करते हैं सर।
7: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुनिए अपनी फरमाइश पर राजपूत फिल्म का ये गीत।

0: झाग ही झाग सफाई पे दाग।
1: जी हाँ, तन्वन डिटर्जेंट पाउडर और साबुन, इससे मिलती है कपड़ों को गजब की धुलाई।
0: ये सीधे मैल पर करे वार, कपड़े चमके चमकदार।
1: तन्वन डिटर्जेंट पाउडर और साबुन, झाग ही झाग सफाई बेदाग।
2: हेलो,
3: नमस्ते सर।
2: नमस्कार, फोन करेंगी सुने में स्वागत करते हैं आपका।
3: जी सर।
2: अपना नाम बताएं।

0: सोमपाल सिंह।
1: सोमपाल कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: हम गोरझावर से बोल रहे हैं सर।
1: क्या करते हैं सोमपाल भाई आप?
0: पान कटा पड़ा है सर।
1: बहुत ही बढ़िया। कौन कौन सी वैरायटी के पान रखते हैं आप अपनी दुकान पर?
0: सब रखते हैं सर। कटक भी रखते हैं, बंगला भी रखते हैं, मीठी पत्ती भी रखते हैं, देसी भी रखते हैं।
1: तो सबसे ज्यादा शौकीन कौन से पान के हैं लोग?
0: बंगला खाते हैं सर।
1: हाँ, सागर का बंगला।
0: हाँ
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। वो आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया रहता है। पुराने समय में उसे तांबूल भी कहते थे।
0: हाँ सर। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जयशेखर।
0: जयशेखर? हाँ जी सर।
1: तो सोमपाल भाई, वृक्षारोपण करने का मौसम आ चुका है?
0: हाँ लगाते हैं सर।
1: कौन कौन से लगाते हैं आप?
0: सब वैरायटी लगाते हैं सर, ज्यादातर के आम लगाते हैं।
1: अच्छी बात है। आम से छाया भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है, और साथ ही पक्षियों को बैठने के लिए, खाने के लिए भी हो जाता है।
0: हाँ सर, थे वही में लगाते हैं।
1: चले बहुत ही अच्छी बात है। पेड़ों को कटने से भी जरूर बचाएं आप।
0: जी सर।
1: बताएं सोमपाल भाई, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
0: वो आया सावन झूम के सुना देना सर।
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर आया सावन झूम के, इस फिल्म का ये गीत।

0: झाग ही झाग सफाई पे दाग।
1: जी हाँ, तन्वन डिटर्जेंट पाउडर और साबुन, इससे मिलती है कपड़ों को गजब की धुलाई।
0: ये सीधे मैल पर करे वार, कपड़े चमके चमकदार।
1: तन्वन डिटर्जेंट पाउडर और साबुन, झाग ही झाग सफाई बेदाग।
2: हेलो,
3: स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने में।
2: जी सर।
3: नाम बताएं अपना।
2: सुरेंद्र साहू।
3: सुरेंद्र भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: हम बंडा से बोल रहे हैं।
3: अच्छा सुरेंद्र भाई, वृक्षारोपण के बारे में क्या कहना है आपका?
2: वृक्षारोपण के बारे में? वृक्षारोपण के बारे में ये कहना है कि सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए और सुरक्षा करनी चाहिए, उससे वातावरण अच्छा रहता है।
3: और आज जो हम पानी की कमी देख रहे हैं, ये बहुत हद तक दूर हो जाती थी जब हमारे पास बहुत अच्छे जंगल होते थे, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे होते थे। अब लगातार घर बनाने और दूसरे कामों के लिए हम पेड़ काटते गए और जंगल सिमटते गए, धीरे धीरे बारिश भी सिमटने लगी है।
2: जी जी जी, उसी के कारण है।
3: हाँ अच्छा, और आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि पेड़ पौधे लगाने भी चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए।
2: जी।
3: तो आप करते हैं, कैसे करते हैं देखभाल आप?
2: हमारे यहाँ तो लगे हैं, अभी हम लोगों ने लगाया था, दुकान के सामने भी पेड़ पौधे लगे हमारे।
3: अच्छा अच्छा, हर साल इस मौसम में जरूर लगाएं आप?
2: सब हम लोग संगठन है, सब लगाते रहते हैं।
3: चलिए ये तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और बता दें कि गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
2: बॉर्डर फिल्म का सुनना।
3: बॉर्डर का कौन सा?
2: संदेश आते हैं।
3: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म बॉर्डर का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने में।
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी उर्मिला ठाकुर बात कर रहे हैं, ग्राम राम खीरिया तहसील दहली से। सर कुछ अभी शादी आदि में लगे रहे और घर पे भी काम था।
0: अच्छा, किन किन लोगों की शादी में गई आप?
1: जी अभी 4-5 जन की थी, लेकिन अभी भांजी की थी हमारी।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो शादी में क्या क्या किया आपने, हमें कुछ बताएंगे आप?
1: जी सर एंजॉय किया है शादी में तो।
0: हाँ हाँ हाँ। अच्छा, पहले की जो शादियाँ होती थी तो उसमें घर की महिलाओं को खाना बनाने की जिम्मेदारी मिल जाती थी।
1: हाँ,
0: तो ऐसे में आप लोग एंजॉय नहीं कर पाते थे, और अब अच्छा हो गया है कि भाई बाहर के लोग आके बना जाते हैं।
1: हाँ,
0: तो गांव में भी यही हो रहा है आजकल?
1: हाँ सर, गांव पे भी अब तो सब जगह मतलब वही आती है।
0: हाँ हाँ,
1: खाना बनाने वाली।
0: हाँ हाँ,
1: पहले से लग जाती है हम लोगों के
0: यहाँ
1: तो।
0: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ, क्या है ना सर, अब कोई किसी के यहाँ काम नहीं करना चाहता।
0: सही,
1: सब लोग आते हैं तो बैठ के खाना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं।
0: हाँ
1: हाँ, और हम लोग भी घर पे अब देखो रिश्तेदारों को देखे कि घर का काम करें।
0: हाँ,
1: तो इस वजह से नहीं हो पाती,
0: और फिर तैयार होना भी पड़ता है, बच्चों को भी देखना है।
1: जी सर,
0: ये बहुत सारे काम हो जाते हैं।
1: जी, मेहमानों को देखना, बच्चों को देखना।
0: हाँ,
1: साथ में बड़ों को भी देखना।
0: हाँ सही कहा। जी जी जी, तो उर्मिला हमें कुछ बताएं कि वृक्षारोपण के लिए महिलाओं को कैसे आगे आना चाहिए?
1: जी सर, महिलाओं को तो ऐसा है कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए घर के साथ साथ।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, घर तो सब संभालते ही हैं,
0: बिल्कुल
1: सब महिलाएं, लेकिन उनको ये मतलब हमारा अनुरोध है कि वो पेड़ लगाएं और उनकी रक्षा करें, देखभाल करें।
0: बहुत ही अच्छी।
1: तो पेड़ काट के लकड़ी लाते हैं सब लोग।
0: हाँ हाँ,
1: तो हमारा यही कहना है कि पेड़ कम से कम काटें।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और अब सभी महिलाएं इकट्ठी हो जाएं। देखिए बारिश की भी कमी कितनी ज्यादा कर रही है हम लोगों को।
1: जी,
0: इसकी वजह भी वही है कि हमने बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई कर डाली।
1: जी सर, आप आओ हमारे गाँव सर।
0: बिल्कुल आएंगे, रमखिरिया। हाँ हाँ
1: जी सर, बहुत खूबसूरत गांव है, नदी है पास में।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: मंदिर हरा भरा है, मतलब गांव हमारा।
0: हाँ हाँ, जंगली जानवर भी खूब होंगे आपके यहाँ तो?
1: हाँ सर है ना।
0: अरे फिर तो आना चाहिए।
1: मोर है, हिरण है, मतलब।
0: हाँ हाँ हाँ। उर्मिला बताएं, गाना कौन सा सुनवा है हम आपको?
1: सर हिंदुस्तान की कसम का है वो, जलवा तेरा जलवा।
0: उर्मिला हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर हिंदुस्तान की कसम, इस फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सर, जयराम जी।
1: जयराम जी, फोन करेंगे सुने में स्वागत करते हैं आपका।
0: हम ग्राम चार नंबर समूह जिला सागर।
1: अपना नाम बताएं।
0: हमारा रामचरण नाम सर, रामचरण पटेल।
1: क्या करते हैं रामचरण भाई?
0: किसान करते हैं सर, पूरा उरा दिन बहुत है और पानी गिर रहा है सर कम।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो पानी की मांग है ऊपर वाला सुन ले तो आपको सही है।
1: हमें रामचरण भाई ये बताएं कि बारिश नहीं हो रही है तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं?
0: कारण है जी बिजली कटत रही तो, और माने पौधा पहाड़ों में जी झाड़ कट रहे, कटिंग हो रही है, संसार नहीं हो पा रहा।
1: हाँ हाँ,
0: और जो प्रदूषण जो है प्रदूषण के साथ में माने बारिश कम हो रही।
1: देखिए रामचरण भाई, हम आप चाहें तो बहुत हद तक हम अपने प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। लोगों को वृक्षों को काटने से बचाएं, लोगों से कहें कि वृक्ष अगर काटेंगे आप तो हमें बारिश और कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है।
0: सर ऐसा करने चाहिए सर्वजनक हर जन को, मतलब जो पेड़ है आषाढ़ के समय में अच्छे पौधे लगाने चाहिए, पेड़ फल खाने के और बिना खाने के भी अच्छे छाया दे, लकड़ी भी देते सर।
1: वृक्षारोपण करें लेकिन साथ ही ये प्रयास भी करें कि उनकी देखभाल भी हो सके।
0: जी हाँ, ऐसा ही करने चाहिए हर जन को, हर व्यक्तिगत वाली बात है भाई साहब।
1: हाँ,
0: और वो सभी को ऐसा करने चाहिए, एक दो पेड़ लगाए साल में ज्यादा नहीं लगा सकते। तो
1: सही कह रहे हैं आप,
0: कटिंग कम करें, बारिश उसी से बढ़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो रामचरण भाई बताएं, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: फिल्म मिलन, फिल्म का।
1: मिलन का कौन सा?
0: सावन का महीना पवन का रसूर।
1: आइए सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर मिलन फिल्म का ये गीत।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: हेलो।
1: हाँ भाई साहब नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, फोन करें गीत सुने में। अपना नाम बताएं।
1: जी बालमुकुंद रेकवार एडवोकेट।
0: बालमुकुंद जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: गौर झामर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो प्रैक्टिस कहाँ करते हैं आप?
1: सर केसी और देवी।
0: अच्छा अच्छा, तो किस प्रकार के केस लेते हैं आप?
1: सर सभी प्रकार के लेते
0: हैं।
1: जी।
0: अच्छा, और बारिश ना होने के पीछे क्या कारण मानते हैं आप, क्यों नहीं हो रही बारिश?
1: पानी ना होने का कारण मेन तो यही है कि ये पेड़ वगैरह भी कटते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: प्रदूषण का भी कारण है सर।
0: हाँ
1: जी।
0: तो हम कैसे रोक सकते हैं पेड़ों को कटने से?
1: सर अब क्या बताएं, वो तो यार हर जगह फ्लैटिंग और दुनिया भर की ये हो रहा है।
0: हाँ हाँ,
1: तो इस कारण से भी होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे बालमुकुंद जी, बहुत ही बड़ी समस्या है। हम पेड़ों को कटने से कैसे बचाएं?
1: जी जी सर।
0: तो इसका एक उपाय ये हो सकता है कि हम अपने तरीके से इस मौसम में खास तौर से हरे भरे पेड़ों को लगाने का प्रयास जरूर करें।
1: जी जी।
0: और लगाएं और साथ ही उनकी देखभाल भी करें।
1: जी सर जी।
0: तो आपने कभी लगाए हैं कुछ पेड़?
1: जी सर, हमने लगाया, हमारा खेत भी है सर।
0: तो कौन कौन से पेड़ लगे हुए आपके यहाँ?
1: जामुन के पेड़ भी लगे हैं, बेही के पेड़ भी लगे सर। हाँ तो सर बढ़िया, बहुत अच्छा बगीचा टाइप का बना हुआ है।
0: तो इस बार और लगा दीजिए पौधे कुछ।
1: जी जी लगाएंगे सर।
0: जी बहुत ही अच्छा लगा बालमुकुंद जी आपसे बातचीत करके। और बता दें कि गाना कौन सा सुना है आपको?
1: सर कोई किशोर कुमार जी का सुना दीजिए।
0: किशोर कुमार का कोई भी?
1: जी सर।
0: हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: अच्छा नो।
1: और अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है कि हमें अपने आप में अनुशासन बनाए रखना है। हमारा देश तभी तरक्की कर पाएगा, हम तरक्की कर पाएंगे अगर हम अनुशासित होंगे। अपने देश की छवि को लेकर, अपनी छवि को लेकर, अपने घर, अपने प्रदेश की छवि को लेकर हम अनुशासन में रहेंगे और दूसरे लोग भी हमें देखकर अनुशासन में रहेंगे। अनुशासन में वो सारी बातें आ जाती हैं जो किसी देश की तरक्की में, देश के विकास में सहायक होती है। तो यही होगी मुद्दे की बात। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे विनोद यादव और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति थी जयशेखर की, संयोजन था सुव्रता यादव का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर का नमस्कार। मित्रों, विविधा के इस अंक में हम लेकर आए हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष कार्यक्रम के संपादित अंश, जिसका शीर्षक था भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। पेशे से चित्रकारिता के शिक्षक रह चुके मिलिंद जी को प्रेरणा मिली वंदे मातरम के बारे में लिखी पुस्तक से, जिसके लेखक थे अमरेंद्र गाड़गिल। अप्रैल 1994 में वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की निर्वाण क्षति के अवसर पर अपनी युवावस्था में मिलिंद जी ने वंदे मातरम पर एक आयोजन में विचार व्यक्त किए और तब से आरंभ हुई एक शोध यात्रा जो आज तक अनवरत जारी है। भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इस शोध यात्रा का एक हिस्सा भर है। आइए सुनते हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित एक विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सब

का और वंदे मातरम का ये 150वां जन्मवर्ष शुरू है। इस अवसर पे वंदे मातरम के विविध पहलुओं का जो परिचय है मैं करता रहा हूँ। पिछले 30-35 साल से वंदे मातरम पर जो कुछ अभ्यास संशोधन मैं कर रहा हूँ वो सब समग्र वंदे मातरम का एनसाइक्लोपीडिया जैसा है, उसमें मैंने लिखा है। लेकिन वंदे मातरम ये जो मंत्र है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार थे, काव्य बहुत उन्होंने कम किए, लेकिन भारत के साहित्य में उपन्यास लिखने वाले जो पहले 3-4 लेखक है, उपन्यासकार है, उसमें बंकिम चंद्र जी है। वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है। और कुल मिलाकर मेरे ही पास 240 से भी ज़्यादा वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स है। भारतीय फिल्मों में वंदे मातरम का जो इस्तेमाल किया है, वंदे मातरम जिस स्वरूप में पिछले 100 बरस में आया है वो प्रस्तुत करने मैं जा रहा हूँ। बंकिम चंद्र एक विख्यात उपन्यासकार थे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद भारत में जनाकोश की एक लहर फैल गई। विशेषकर महाराष्ट्र और बंगाल में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे थे। उस समय के साहित्यकारों और कलाकारों ने भी इस जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र जी के जो साहित्यिक गुरु थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र गुप्त। उन्होंने 1850 के आसपास एक कविता की थी, जननी भारत भूमि आव केन थाक तुमि। आधुनिक साहित्य में, पूरे भारतीय साहित्य में जननी भारत भूमि यानी मातृभूमि ये शब्द का इस्तेमाल करने वाले आधुनिक साहित्य के वो पहले साहित्यिक थे, ईश्वर चंद्र गुप्त। और उन्होंने बंकिम चंद्र जी को प्रोत्साहित किया उनके कॉलेज आयुष्य में। बाद में उस कविता के बाद शिशिर कुमार घोष ने 1870 के आसपास भारत माता नाम की एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उस पर किरण चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा 1873 में एक नाटक रचा गया और वो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। बंकिम चंद्र अपने घर नैहाटी कांटा पड़ा, कलकत्ता से 30-35 किलोमीटर के आसपास ये छोटा गांव है। अश्विन शुद्ध अष्टमी के, दुर्गाष्टमी के रात वो मूर्ति के सामने बैठे थे और रात के समय उन्हें उस मूर्ति में उन्हें भारत माता प्रतीत होने लगी और उन्होंने उठकर अपने कमरे में जाकर एक लेख लिखा। उसका नाम था अमार दुर्गोत्सव। अश्विन शुद्ध अष्टमी के रात और नवमी के प्रातः काल में उन्होंने लेख लिखा। वो अमार दुर्गोत्सव उनका मानस पुत्र साहित्य का कमलाकांत, वो नदी के किनारे पर बैठा है, उसमें उन्हें भारत माता दिखाई देती है और अदृश्य हो जाती है तो वो व्याकुल होता है और वो माता का जय जयकार करता है, माता को बुलाता है

सा उसमें आया है, ये लेख वंदे मातरम का पहला गद्य स्वरूप है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद केवल एक महीने के बाद कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 के दिन बंकिम चंद्र ने एक ही समय पूरा वंदे मातरम 25 पंक्तियों का लिखकर पूर्ण किया। वो वंदे मातरम का पहला जो उपयोग है वो आनंद मठ कादंबरी में हुआ। आनंद मठ कादंबरी में वंदे मातरम का इस्तेमाल एक थीम सॉन्ग जैसे किया। कथानक में बार बार वंदे मातरम के शब्द आते हैं। और उसके बाद आनंद मठ नाम का नाटक रंगमंच पर आया और उसमें पहली बार वंदे मातरम किसी ने, भवानंद के काम करने वाले पात्र ने पहली बार वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम लोगों तक पहुंचने लगा। लेकिन 1894 में बंकिम चंद्र जी का देहांत हुआ, तब तक वंदे मातरम इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। 1905 में बंगाल के पार्टीशन के समय वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीयों के मन में जा चुके। हर एक संग्राम को एक रण गर्जना की आवश्यकता है ही, वैसी रण गर्जना हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम ये शब्द के रूप में मिली। और वो दिन था 7 अगस्त 1905। बालजी पेंढारकर और उनके भाई बाबूराव पेंढारकर ने वंदे मातरम आश्रम नाम की एक मुखपट बनाया था। उनकी फिल्म कंपनी का नाम भी वंदे मातरम फिल्म कंपनी था। 1924 में उन्होंने ये फिल्म निकाली, लेकिन सेंसर ने इतने कट्स का सुझाव किया कि वो फिल्म प्रदर्शित ही नहीं कर सके। उसके बाद मुखपटों में वंदे मातरम ये शब्द स्क्रीन पर दिखाई दिए। वंदे मातरम 1935 में पहली बार फिल्म में गाया गया और वो फिल्म का नाम ही था वंदे मातरम। बंगाली फिल्म थी। सुकृति सेन इन संगीतकार ने इसकी संगीत रचना की है।

वंदे मातरम ये शब्द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ऊंचा स्थान पर गए। वंदे मातरम ये शब्द बोलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण समझने जाने लगा। कलाकार, संगीतकार, चित्रकार, इन लोगों को भी ऐसे लगा कि हम भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कला द्वारा सहभाग लेंगे। तो संगीतकार और गायक लोगों ने वंदे मातरम का गायन किया। मराठी फिल्म नीलकंठ मास्टर 2015 में ये फिल्म रिलीज हुई। गजेंद्र अहिरे नाम के बहुत जाने माने दिग्दर्शक है, उन्होंने दिग्दर्शित की थी। और संगीतकार है अजय अतुल। इंग्रजी में जैसे हम थीम सॉन्ग कहते हैं वैसे ही इस फिल्म में उसका उपयोग किया है।

1909 साल में हुतात्मा अनंत कान्हे ने अपना बलिदान दिया, वंदे मातरम बोलकर वो फांसी पर चढ़े। यह फिल्म उनके चरित्र पर, उनके बलिदान पर आधारित थी। उनकी क्रांतिकारी यात्रा का चित्रण करते हुए वंदे मातरम का प्रयोग क्रांतिकारियों को प्रेरणा गीत के रूप में इस फिल्म में किया है। यह गीत फिल्म में अपने संपूर्ण रूप में नहीं बल्कि विभिन्न प्रसंगों में खंडों के रूप में सुनाई दिया है। केवल यही फिल्म ऐसी है कि इसमें पूरा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। संगीतकार प्रदीप वैद्य ने केवल यही एक फिल्म संगीतबद्ध की है। गायक जयदीप दिग्विजय वैद्य। हम सुनेंगे वंदे मातरम हुतात्मा अनंत कान्हे 1909 फिल्म से।

1996 में एक फिल्म आई थी फातिमा मीर के उपन्यास द अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा, इस उपन्यास पर आधारित ये फिल्म थी। महात्मा गांधी के युवावस्था के उन 21 वर्षों का चित्रण इस फिल्म में किया है। 8 फिल्म के जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने इसका निर्देशन किया था। रजत कपूर ने युवा गांधी का पात्र निभाया था। इस फिल्म का नाम था मेकिंग ऑफ द महात्मा और हिंदी में नाम था गांधी से महात्मा तक। इस फिल्म में गांधी जी एक सत्याग्रह के दौरान जन प्रेरणा के लिए वंदे मातरम गीत केवल 2 पंक्तियों का प्रयोग इसमें उन्होंने किया है। ये गाना गाया है प्रसिद्ध पॉप गायिका उषा उत्तप ने और संगीत दिया है वनराज भाटिया ने।

अगला फिल्म है सबुज द्वीप राजा। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के तरफ से ये फिल्म का निर्माण किया था बच्चों के लिए। दिग्दर्शक थे तपन सिन्हा और संगीतकार थे तपन सिन्हा और आलोकनाथ डे। फिल्म में वंदे मातरम दो भागों में प्रस्तुत किया था। पहला भाग फिल्म

के आरंभ में आता है, जहां क्रांतिकारी तालुकदार के अतीत का चित्रण किया गया है, जबकि दूसरा भाग फिल्म के समापन पर सुनाई देता है। इसकी धुन में बंगाल की रविंद्र संगीत की परंपरा का स्पष्ट प्रभाव अनुभव होता है, जो इस प्रस्तुति का एक विशिष्ट सांगीतिक पहचान होती है।

1971 में और एक बंगाली फिल्म बनी, उसका नाम था महाविप्रभो अरविंद, श्री अरविंद, योगी अरविंद के जीवन पर आधारित यह फिल्म थी। इसमें वंदे मातरम गीत तीन अलग अलग प्रसंगों में सुनाई देता है। इसके संगीतकार है हेमंत कुमार मुखर्जी। हेमंत कुमार मुखर्जी बहुत प्रतिभावान संगीतकार थे। उन्होंने दो अलग अलग चित्रपटों के लिए संगीतबद्ध वंदे मातरम किया और वो दोनों ही वंदे मातरम अलग अलग ही है। ये जो धुन है वो रविंद्रनाथ ठाकुर की मूल धुन के आधार पर उन्होंने बनाई है। पहली बार यह गीत फिल्म के शीर्षक यानी टाइटल सॉन्ग के स्वरूप में आती है। हेमंत कुमार का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। हम पहले सुनेंगे वंदे मातरम टाइटल सॉन्ग महाविप्रभो अरविंद से।

इसी फिल्म में तीसरा जो वंदे मातरम है वो और भी थोड़ा अलग है। अंत में जब योगी अरविंद सांसारिक जीवन का त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन करते हैं, तब देवी की दर्शन के

प्रसंग में वंदे मातरम एक बार पुनः सुनाई देता है। इस प्रकार गीत का अंतिम प्रयोग राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत संगम का प्रतीक बनकर उभरता है।

इसी फिल्म में टाइटल सॉन्ग के रूप में वंदे मातरम प्रस्तुत किया था, वैसे ही और एक हिंदी फिल्म में केवल टाइटल सॉन्ग के लिए वंदे मातरम का प्रयोग किया था, इसीलिए उसकी रिकॉर्ड बाजार में नहीं आई। वो फिल्म थी विडर, दिग्दर्शक थे राम मुखर्जी और प्रख्यात संगीतकार नौशाद ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। इस फिल्म की शुरुआत ही इसी टाइटल सॉन्ग से होती है। वंदे मातरम मार्चिंग सॉन्ग जैसे केवल दो संगीतकारों ने ही बनाया है, उसमें से एक ये है और दूसरे तिमिर बरन भट्टाचार्य है। हम सुनेंगे फिल्म विडर वैजयंती माला और दिलीप कुमार समूह स्वर में।

स्वतंत्रता के बाद जो पहली फिल्म आई जिसमें वंदे मातरम का उपयोग किया था वो थी आंदोलन। निर्देशक थे फणी मुजुमदार और संगीतकार थे विख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। वंदे मातरम की संगीत रचना 200 से ज़्यादा है, उसमें जो 4-5 संगीत रचना सबसे बढ़िया है उसमें से ये एक है। और फिल्म की एक विशेष उपलब्धि यह है कि इस फिल्म में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया जनगणमन चित्रित किया था वो देखना मिलता है। इसके अतिरिक्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वायु दृश्यों को प्रस्तुत करने वाली यह स्वतंत्रता के बाद की पहली फिल्म थी। इस गीत के संगीत प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने किया था। इसमें सुधा मल्होत्रा, पारुल घोष और मन्नाडे ने स्वर दिया था।

1951 में आनंद मठ फिल्म, लेकिन वो थी बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म किससे पहले ये फिल्म आई थी। उसमें दिग्दर्शक थे सतीश दास गुप्ता और संगीत था सुबर दास गुप्ता, बंगाल के प्रख्यात संगीतकार थे। इस फिल्म में वंदे मातरम फिर एक बार अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। बंगाल की एक लोक संगीत प्रसिद्ध है बाउल संगीत, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल बाउल संगीत जैसा किया है, यानी भजन जैसा किया है। बहुत ही अलग सा ये संगीत है। हिंदी जो आनंद मठ फिल्म है उसमें रणगीत जैसा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें पूजा गीत जैसा, प्रार्थना गीत जैसा वंदे मातरम का उपयोग किया है। हम सुनेंगे बंगाली फिल्म आनंद मठ, संगीत सुबरदास गुप्ता और स्वर है द्विजेन मुखोपाध्याय और अरुंधति मुखर्जी।

लेकिन ऐसे कुछ फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार हैं जिन्होंने वंदे मातरम की धुन बनाई लेकिन उसका इस्तेमाल फिल्मों में नहीं किया गया। पहली है संगीतकार और गायक पंकज मलिक, इनकी धुन। पंकज मलिक न्यू थिएटर के प्रमुख संगीतकारों से एक थे। वे रविंद्र संगीत के विख्यात गायक भी थे और उनके द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम की धुन वंदे मातरम की रविंद्रनाथ की जो धुन है उससे अलग है, ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अपनी

मास्टर कृष्ण राव पुरंबीकर ये प्रख्यात गायक और संगीतकार थे, भास्कर बुआ बखरे के शिष्य और बाल गंधर्व के गुरु बंधु थे। उन्होंने वंदे मातरम जो किया वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत बनाने के लिए पंडित नेहरू के साथ उन्होंने सांगीतिक संघर्ष किया, उसकी एक अलग ही कहानी है। आज जो हम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में देखते हैं उसका कारण मास्टर कृष्णराव पुरंबीकर ने घटना समिति के साथ किया गया सांगीतिक संघर्ष ये महत्वपूर्ण कारण है। मास्टर कृष्णराव ने झिंझोटी राग में वंदे मातरम का बंधन किया और अन्य कुछ रागों में भी उन्होंने वंदे मातरम किया था। हम सुनेंगे मास्टर कृष्णराव द्वारा झिंझोटी राग में वंदे मातरम।

तीसरे संगीतकार है वसंत देसाई। वंदे मातरम को बहुत सारे संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया, लेकिन वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत की तरह से उन्हें संगीतबद्ध किया जाना चाहिए।

ये विचार बहुत कम संगीतकार ने किया है, उसमें से एक है वसंत देसाई। धुन एक ही है लेकिन उसके लिए जो वाद्य का इस्तेमाल किया है वो अलग अलग है। हम सुनेंगे जो रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने ढोल ताशा तुतारी बांसुरी ये भारतीय वाद्यों का उपयोग किया है, शंख का भी उपयोग किया है।

चौथे संगीतकार है ज्ञान दत्त और इसका गायन किया है गीता दत्त और जी एम दुरानी ने। लेकिन ये वंदे मातरम थोड़ा अलग ही है। इस रिकॉर्ड में अपेक्षापूर्ण तेज गति से प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त होने पर भी इसकी प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली है। हम सुनेंगे गीता दत्त, जी एम दुरानी, संगीतकार ज्ञान दत्त।

ये संगीत रचना है तिमिर बरन भट्टाचार्य। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सरोद वाद्य पर शास्त्रीय संगीत बजाने वाले वे पहले सरोद वादक थे। 1938 के आसपास सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, तब तिमिर बरन भट्टाचार्य ने वंदे मातरम उनके लिए तैयार किया था और पहला भाषण सिंगापुर से किया आजाद हिंद सेना का नेतृत्व लेने के बाद। तब भाषण पूरा होने के समय यही रिकॉर्ड उन्होंने बजाए। सुभाष चंद्र बोस की अत्यंत प्रिय ये रिकॉर्डिंग थी।

आर रहमान ने वंदे मातरम किसी फिल्म के लिए नहीं किया है। स्वतंत्रता को जब 50 बरस पूरे हुए तो 1997 में उन्होंने वंदे मातरम का एल्बम बनाया था। उसी बरस में 1997 में रंजीत बारोट ये संगीतकार ने वंदे मातरम 2 नाम की पहले कैसेट बाद में सीडी बनाई। उसमें साजिद खान ने राजस्थानी लोक संगीत जैसे वंदे मातरम गाया था। कौशिकी चक्रवर्ती आज की प्रख्यात गायिका, उन्होंने वंदे मातरम का गायन किया था। और पॉप म्यूजिक शैली में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शुभा मोदगर ने वंदे मातरम का गायन किया था। हेमंत कुमार मुखर्जी ने 3 फिल्म के लिए वंदे मातरम गाया और 2 फिल्म के लिए संगीतबद्ध किया, लेकिन वो सब वंदे मातरम एक से दूसरे अलग है। इसी फिल्म में 2 बार वंदे मातरम प्रस्तुत किया है। हिंदी आनंद मठ में 1952 में ये फिल्म आई। इस फिल्म का बहुत सारे वैशिष्ट्य है कि जिसमें दिग्दर्शक है हेमेंद गुप्ता। हेमेंद गुप्ता जी ने स्वातंत्र संग्राम में सहभाग लिया था, इसलिए इस फिल्म का दिग्दर्शन कर अलग ही दिखाई देता है। राष्ट्रभक्ति की भावना अन्य फिल्मों से ज़्यादा इसमें दिखाई देती है। पहला जो गायन है वो खुद हेमंत कुमार ने किया है। गीत का आरंभ हेमंत कुमार के करुण स्वर आर्त स्वरों से होता है। हेमंत कुमार का भावदर्शन बहुत ही सुंदर है।

वंदे मातरम को अब तक अनेक संगीतकारों ने विभिन्न धुनों में स्वरबद्ध किया है और लगभग सभी धुनें अपने अपने ढंग से उत्कृष्ट है, किंतु फिल्मी रूपांतरण में इस प्रस्तुति को जो लोकप्रियता और जनस्वीकृति मिली वह अद्वितीय है। 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा 165 देशों के श्रोताओं के बीच कराए गए सर्वेक्षण में लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इसी वंदे मातरम को विश्व के सार्वकालीन 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर का गायन एक साथ वीरता और करुणा दोनों भावों से परिपूर्ण है। अनेक स्वर में जहां एक और ओज और आक्रोश का संचार है, वही दूसरी ओर मातृभूमि के प्रति समर्पण और संवेदना की गहरी अनुभूति भी है। यह गीत अभिनेत्री गीता बावी पर फिल्माया गया है। यदि लता मंगेशकर द्वारा वंदे मातरम शब्द पर ली गई प्रत्येक तान को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो हर बार उनके एक नया स्वर विन्यास और सूक्ष्म वैविध्य अनुभव होता है। वंदे मातरम का यह रिकॉर्डिंग आज सबसे लोकप्रिय रिकॉर्डिंग माना जाता है।

0: मातरम वंदे मातरम।
1: कंठ संगीत में यानी वोकल गायन में तीन गायकों को भारत रत्न मिला, उनमें से पहली थी डॉक्टर एम एस सुब्बलक्ष्मी, दूसरी थी लता मंगेशकर और तीसरे थे पंडित भीमसेन जोशी। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है अलग अलग तरह से। लता मंगेशकर जी ने गाया है अनंत मठ फिल्म के लिए, एम एस सुब्बलक्ष्मी ने गाया है दो वंदे मातरम की उनकी रिकॉर्ड है, एक गाई है दिलीप कुमार रॉय के साथ दक्षिणी और उत्तर हिंदुस्तानी जुगलबंदी के रूप में वंदे मातरम का गायन, और दूसरा वंदे मातरम उन्होंने गाया है सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिल वंदे मातरम। और भीमसेन जोशी जी ने 1997 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 50 वर्ष जब पूर्ण हुए तो 14 अगस्त को रात 12 बजे संसद के विशेष अधिवेशन में भीमसेन जोशी जी ने वंदे मातरम गाया। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है, ये एक अलग ही बात है।
2: वंदे मातरम। सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इस कार्यक्रम के ये थे संपादित अंश। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। इस विशेष कार्यक्रम का संयोजन किया था शिल्पा मिलिंद सबनीस ने। संपादन एवं प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में इंदिवर की रचना आपने सुनी, उषा मंगेशकर की तरफ से। फिल्म थी साजन बिना सुहागन।

0: आ रही हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर
1: सुन जरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में।

0: मुकेश की आवाज में सबक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

महेश किशोर की आवाज थी। सावन कुमार की रचना आपने सुनी। विपिन सचदेव और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत था सनम बेवफा फिल्म से।

श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक, निर्माता और निर्देशक सावन कुमार की फिल्मों के नगमे।

0: उषा खन्ना की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हवस फिल्म का गीत आपने सुना, सावन कुमार का लिखा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना, संगीत था उषा खन्ना का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली
1: गलियां, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आपाए बाहर आई इस फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यही है श्रोताओं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रुनझुन बूंदों की बौछारें लिए आपके रेडियो सेट पर श्रोताओं आ चुका है विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर। हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे जो श्रोता आज नए नए जुड़े हैं फेसबुक से या फिर हमारे इस कार्यक्रम से, उन सभी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। बने रहिए हमारे साथ सुरीला सफर कार्यक्रम में। आज की जो इबारत है वो हमारे श्रोताओं ने वैसे देखी है और पढ़ी भी है, देखी भी है फेसबुक पेज पर और लिखा भी है बहुत कुछ, तो ये इबारत जल्दी से आपके लिए पढ़ देते हैं। सुंदर सजीली धरा पर हरियाले सावन की छटा, नव पल्लवित पुष्पों की झनकार, बादलों का मृदंगवाद, चमकी बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी, तो नींद नहीं आई, कोई पास तो कोई दूर, कहीं मेघ मल्हार, कहीं कजरी की तान, कोयल की कूक, पपीहे की पुकार, बाग बगीचे और खेतों की हरियाली, पावस ऋतु में

मिलन की आस, मोर का सजीला नृत्य, सावन की इस नैया में तन भीजे मन भीजे, जी डरे और करे प्यार की पुकार, कि घर आजा संग साजन झूला झूली, अब के सावन में गजब हुई गवा, मन लाजवंती सा छुईमुई हुई गवा, झरने पानी से इतलाते हैं, सरिता में भर गया नूतन पानी, पत्थरों में भी फूलों का इंद्रधनुषी श्रृंगार, छोटी सी उम्र से अनजान प्रकृति में रंग भरती नन्ही तितलियां, धरती अंबर में ये कैसा लगा है सावन का मेला। श्रोताओं, आप समझ चुके हैं आपके रेडियो सेट पर आजकल वैसे सावन का मौसम छाया है, क्या क्या छुपा है सावन की बूंदों में, जरा दिल से पूछिए। दिल का राग, कभी दूरी कभी कोई पास पास, छोटे छोटे झरनों की अंगड़ाइयाँ, तालाब पोखरों नदियों में उमड़ता पानी, हरियाली हर तरफ, मवेशियों के लिए चारागाह, हल बैलों के घुंघरुओं की रुनझुन आवाजें जैसे घन बरसता हो, रात कभी कभी बिजलियों से सिहर जाती है, क्या रात क्या शामी क्या सुबह, सब भीगे अंदाज में नजर आते हैं। पिछले सावन क्या कुछ छूटा, इस सावन क्या कुछ नयापन लेकर आया हरियाला सावन, क्योंकि ये एक मौसम ऐसा है श्रोताओं, जितनी खुशी हमारे दिल में होती है उतनी ही खुशियाँ घर के बाहर प्रकृति में भी नजर आती हैं। सावन का वो कौन सा खास अंदाज है जो आपके दिल को छू जाता है, ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हम आपके आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे जो श्रोता नए हैं उन्हें बता दें, आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आपको इस पते पर अपनी प्रतिक्रियाएं अपने कमेंट्स भेजने हैं। रेडियो श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब ये फिल्म पहचानिए। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

सयूरा तो सचमुच नाच उठता है सावन में, और जब गायन की बात करें तो राग मेघ मल्हार और कजरी की तान हर सू सावन के मौसम में नजर आती है। श्रोताओं, अगले गीत में आपको संगीतकार बताने हैं और फिल्म में जो कलाकार हैं उन्हें पहचानना है। वैसे इन कलाकारों की और भी फिल्में हैं, कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन आते ही जैसे प्रकृति अपने आंचल में धरती को सजा लेती है, नव पल्लवों की हरियाली, फूलों की मुस्कान, बादलों का मृदंग और बिजली की चमक सब मिलकर ऐसा संगीत रचते हैं जिसमें मन अनायास ही झूम उठता है। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो लगता है जैसे आसमान ने अपनी प्रेम पाती धरती के नाम लिख दी हो। कहीं मेघ मल्हार की तान तो कहीं पपीहे कोयल कजरी की मिठास, बाग बगीचों से लेकर खेतों तक हर ओर हरियाली का साम्राज्य है। झरने इतलाते हुए बह रहे हैं और मोर अपने सजीले नृत्य से सावन का स्वागत कर रहे हैं, और बहुत सारे मधुर गीत भी इन्हें आज याद आ रहे हैं। कुछ एक गीत इन्होंने बताए भी हैं। वैसे आपको ये भी बताना है श्रोताओं कि आजकल जब हम सावन की बात करते हैं तो खेतों की भी बात करते हैं। आप ज़रूर व्यस्त होंगे, हमारे कृषक जो हैं वो खेतों में, तो आप विविध भारती कहाँ से सुन रहे हैं ज़रूर बताइए, और वहाँ का मौसम कैसा है ये भी बताइए। वैसे आपके प्रदेश में सावन किस खास अंदाज में मनाया जाता है, कोई खास परंपरा तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई किए का एहसास दिल को बहुत तड़पाती है, और हर पल अपनी पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदें मन में ठंडक के बजाय सुरीली उदासी से भर देती हैं। सावन के सुहावने मौसम में अपने पिया मिलन की पुरानी यादों को जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। जी हाँ, आजकल वैसे श्रोताओं देखें तो हर तरफ बस निगाहें बादलों पर ही टिकी हैं। ये बादल जो सावन में आजकल छाए हुए हैं, इनका रंग बड़ा निराला होता है।

दे

मला सिन्हा और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे श्रोताओ। दो बीघा जमीन फिल्म के लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने डिटेल्स जो लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है और शैलेंद्र की रचना थी वो गीत जो आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ग्राम में पृष्ठभूमि और शैव क्षेत्र के वाशिंदे होने के कारण सावन सदैव सर्वश्रेष्ठ लगता है, कृषि धान रोपण आदि आदि की इन्होंने बात करी है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल प्रेमियों के मिलने का समय नहीं बल्कि ये आम आदमियों परिवारों और पूरी दुनिया के लिए भगवान शिव की भक्ति प्रकृति के उत्सव और आत्म शुद्धता का पवित्र मास है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व शिव उपासना का है। ये पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है अब के सावन में चीटरे तन मन पे पानी गिरे और कुछ हमारे श्रोताओं ने सावन का महीना पवन करे शोर इस फिल्म की इस गीत की बात की है। और हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि इतने सारे गीत जो हैं वो हमें याद आ रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा गीत जो है वो आज शामिल हो पाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऋतु चक्र के गतिमान जीवन का कि उत्सव धर्मिता के परिप्रेक्ष्य में सावन प्रकृति के उल्लास सृजन का प्रतीक है। ये केवल जल वर्षा का समय नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे राग प्रेम और सांस्कृतिक उत्सवों को जीवंत ताने बाने का अनुपम दस्तावेज है। रिम जिम फुहारे फुहारे कजरारे बादलों की गर्जन मोर और पपीहे की कोक से उत्पन्न होने वाली संगीत लहरियों से मानव मन में एक उत्सव धर्मिता का संचार होता है। झूला झूलना मल्हार कजरी और अन्य लोकगीतों के गायन की गूंज

सामाजिक सौहार्द को मजबूत करती है। सावन पावस के रूप में भक्ति और श्रृंगार रस की विभिन्न रंगों से जुड़कर विरह और वियोग की तीव्रता से प्रकृति के उल्लास चित्त को आकर्षित करता है। ऋतुओं के इस शाश्वत चक्र में सावन मनुष्य को प्रकृति के साथ लयबद्ध होने और जीवन को उत्सव की तरह जीने का संदेश देता है। जी हाँ, प्रकृति के साथ रहना, लयबद्ध होना, ये भी सावन सिखाता है। और इसी लय में एक बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया जो मानसून के सीजन में अपना खास घोंसला बनाती है, ये कौन सी चिड़िया है और ये किस तरह का घोंसला बनाती है, क्या आपने इसे देखा है, तो आप हमें ज़रूर लिखें। और ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गीत को कब आपने गाया, गाते हैं इस गीत को बारिश के मौसम में।

चलिया फिल्म के इस गीत को हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश की आवाज़ में कमर जलालाबादी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के दिनों में अगर बारिश हो गई और हमें मौका मिला रोड पर चलने का तो गाने की लाइन इतना याद नहीं रहती। उस समय राज कपूर का पानी में छप्पा छैया करना बहुत पसंद आता था और हम सभी एक इस तरह की हरकत करके एक दूसरे को भी भिगोते थे। वैसे राज कपूर साहब का एक और गीत है श्रोताओं, जो बारिश का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। वो गीत अगर आपको याद आ रहा हो तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने राज कपूर नूतन द्वारा जो है इस फिल्म में अभिनीत इस फिल्म छलिया की बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन आते ही हरियाली जो चारों तरफ दिखाई देती है और हमारे घर के पास के मंदिर से आती शिव जी के भजनों की आवाज़ और महिलाओं का हरे रंग की साड़ी पहन कर

सजना सवरना बड़ा ही अच्छा है। और जी हाँ, और मेहंदी भी तो लगाई जाती है, तो हमारी जो श्रोता सखियाँ हैं वो बता सकती हैं। वैसे मेहंदी की अगर बात किया जाए तो मेहंदी का आजकल चलन थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है, यानी मेहंदी जो है वो अलग तरह से लगाई जाती है। इस बारे में अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल बारिश का नहीं बल्कि यादों, प्रेम और आस्था का भी है। शिवालयों में गूंजते हर हर महादेव के स्वर और मन में उमड़ते भाव जीवन को एक नई ताजगी दे जाते हैं। शायद यही वजह है कि सावन हर साल आता है तो है, लेकिन हर बार दिल में एक नई कहानी छोड़ जाता है। पिछले सावन में श्रोताओं, कौन सी ऐसी बात थी जो आपकी इस सावन में पूरी हुई? तो ये जो परिवर्तन है वो कैसा लगा या क्या कुछ परिवर्तन हुआ, ये आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पटना में कल रात में बारिश हुई, अभी तो तेज धूप निकली है। आज एकादशी के दिन मंदिरों को खूब सजाया जा रहा है और श्रीहरि और महादेव दोनों की पूजा चल रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, क्या किए कोई मन भाग गया, दिल में हमारे वो समा गया, हंस के किसी ने देखा एक बार, दिल की मुराद कोई पा गया, सांसों की मीठी आग, होंठों पे मीठा मीठा राग। और अपने मन का इन्होंने गीत भी बताया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज जो गीत हैं, यानी सावन का के जो गीत हैं और जो बारिश के जो गीत हैं वो सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हैं। और कौन से गीत आपके पसंद के हैं? वैसे इस इबारत में बहुत सारे शब्द भी ऐसे हैं श्रोताओं, जिनसे आप अपनी कोई बात लिख सकते हैं। फिल्म पहेली का ये गीत है, इस अभिनेत्री को आपको पहचानना है, यही

हमारे श्रोताओं ने अभिनेत्री का नाम कुछ कुछ लटपटा सा बताया है, लेकिन हम आपको बता दें श्रोताओं, पहली फिल्म का ये गीत था हेमलता की आवाज में, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का, नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया गीत था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी में जब ड शब्द आता है तो ये गीत बरमास गाया जाता है, डम डम डिगा डिगा। जी हाँ, ये तो है कि अंताक्षरी में ये गीत बहुत गाया जाता है। वैसे हमने एक सवाल और भी श्रोताओं आपसे पूछा था कि जो एक पक्षी है बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाता है मानसून में, वो आपको बताना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन को झूलना उत्सव पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, पास के मंदिर का हरियाली श्रृंगार हुआ है। जी हाँ, अब तो धीरे धीरे सावन जो है वो शबाब पर आ रहा है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत और ऋतु संहार, जी मेघदूतम हो सकता है ये है, और ऋतु संहार लिखा है। तो मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने आषाढ़ का पहला दिन कविता लिखी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविताओं में बादल और वर्षा जीवन की सृजन और संघर्ष के रूप में लिखा है इसे और दिखाई देता है, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है घन घमंड नभ गर्जत घोरा दामिनी दमक रहन घन माही। और मलिक मोहम्मद जैसी की भी ये बात करते हैं, पद्मावत की भी बात करते हैं। जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हमारे कवि हैं जिन्होंने सावन और जो वादियाँ हैं बारिश की, उन पर बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं। इस गीत में श्रोताओं मेला नजर आता है, तो मेले की कोई यादें अगर आपकी हों तो आप साझा कर सकते हैं।

वाद्य यंत्र है वो आपको बताना है कि ये वाद्य यंत्र कौन सा है। और जो भारत है वो बड़ा ही अलग प्रकार का, अगर हम बात करें प्रकृति के नज़रिए से, तो प्रदेश है, यहाँ पर हैं अलग अलग। तो तितलियों का प्रदेश किसे कहते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बड़ी अलग अलग सुंदर सुंदर तितलियाँ नज़र आती हैं। लैंड ऑफ बटरफ्लाइज किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। और साथ ही ये बताना है कि एक प्रदेश जिसके नाम में मेघ आता है वो कौन सा प्रदेश है, ये आपको बताना है। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के आगमन के बाद प्रकृति अपना रूप निखारती है, चारों ओर छटा देखते ही बनती है, धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मुझे भी बारिश में भीगना बेहद अच्छा लगता है, कल ऑफिस से लौटते वक्त भी बारिश में भीगता हुआ ही आया। जब घर में होता हूँ तो टेरिस पर चला जाता हूँ और बारिश में भीगने का आनंद लेता हूँ। और गीत भी इन्होंने बताए हैं, रामा रामा गजब होई गवा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन का विशेष महत्व है, जिसमें भोले बाबा का जलाभिषेक पूजन किया जाता है, जिसमें हरे श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। सावन में हर सोमवार को विशेष व्रत रखते हैं, हमारे घर में सभी लोग इस व्रत को रखते हैं। और इसके अतिरिक्त सावन में मेहंदी रचाने का भी विशेष महत्व है, झूले भी डाले जाते हैं और महिलाएं और कन्याएं विशेषकर हरे परिधान श्रृंगार का प्रयोग करती हैं। तो आपने किसके साथ झूला झूला, ये आप बताइए हमें। और हमने एक और सवाल आपसे पूछा, लैंड ऑफ बटरफ्लाइज और ऐसा प्रदेश जिसके नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है। और एक श्रोता ने लिखा है, बया पक्षी घोंसले बनाती है और घोंसले को घर में रखना, उस घोंसले को घर में रखना शुभ माना जाता है। ये कलाकार जोड़ी आपको बतानी है श्रोताओं।

जैसे को तैसा फिल्म का गीत आपने सुना, रीना रॉय और जितेंद्र पर फिल्माया गया, और इनकी जोड़ी का कौन सी ऐसी फिल्म है श्रोताओ जो आपको अच्छी लगती है? क्योंकि इस जोड़ी की और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लैंड ऑफ बटरफ्लाइज सिक्किम को कहते हैं। जी हाँ, सिक्किम में श्रोताओ जो जोंगो क्षेत्र है वो लैंड ऑफ बटरफ्लाइज कहलाता है, तितलियों का प्रदेश, क्योंकि यहाँ बड़ी सारी तितलियाँ हैं। और एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि किस प्रदेश के नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अभी सावन की रिमझिम बारिश में अपने घर में खिले हुए उन गुड़हल के सफ़ेद फूलों को देख रहे हैं जिन पर ये बूंदें ओस के जैसे चमक रही हैं और उन्हें नीचे की तरफ झुका रही हैं, और हमारा दिल एक गीत गुनगुना रहा है, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। भाई ये तो बड़ा ही मतलब थोड़ा दुखी कर देने वाला गीत है। तो नैना क्यों बरसे? बादल बरसे, ऐसा होना चाहिए। पहले पत्थर पर पीस कर मेहंदी लगाते थे, फिर सूखी मेहंदी को छानकर चाय के पानी में घोलकर रात भर रखते, फिर दूसरे दिन माचिस की तीली से तार बनाकर बारीक डिजाइन बनाते। समय के साथ अब बहुत परिवर्तन आया है, अब बने बनाए कोन मिल जाते हैं, लाओ और लगा लो, सुंदर सुंदर डिजाइन भी आसानी से बन जाती है। जी हाँ, और कई बार छाप कर भी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं कुछ हाथ में इन्फेक्शन ना हो जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन आई हुई हूँ और यहाँ जो टाइम है थोड़ा पीछे चलता है, और इन्होंने वहाँ के टाइम के बारे में भी लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन तो नहीं बरस रहा पर विविध भारती हमको रोज सावन के गीतों से भिगो रही, अच्छा लगता है। शुक्रिया विविध भारती। जी हाँ, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सावन है तो भीगना तो पड़ता ही है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार तमाम सारे गीतों को इन्होंने लिखा है, अब इनमें छठे मौसम का इजाफा कर देते हैं, वो मौसम है सुरीले सफर का इंतजार। जी हाँ, वो तो पूरा हुआ। एक और श्रोता लिखती है कि सावन की हर बूंद में एक कहानी है, हर पुहार में प्रेम की रवानी है, भीगी धरती कहती चुपके से ये मौसम नहीं किसी के आने की कहानी है।

आरजी बर्मन की तर्ज थी छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, शीला आवाज पर फिल्म आया गया। श्रोताओ, बारिश का मौसम जो होता है वो अपने आप में बड़ा सुहावना होता है। अगर किसी एक जगह आपको जाना हो बारिश के मौसम में, तो आप कहाँ जाएंगे और क्या आपको तस्वीरें उतारना बारिश के मौसम का अच्छा लगता है? तो कुछ तस्वीरें तो ज़रूर आपके पास होंगी जो आज भी आपने सहेज कर रखी होंगी, तो ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि सावन का मौसम प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा देता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल, हरे भरे लहलाते खेत, कलकल करती नदियाँ, पहाड़ों से बहते झरने, बादल की गड़गड़ाहट, रिमझिम वर्षा और तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। और वैसे छोटे छोटे जो झरने होते हैं श्रोताओ, वो भी इस समय अपने पूरे शबाब पर होते हैं, तो ये झरने समय के साथ बिल्कुल सूख जाते हैं, यानी बारिश होगी उसके बाद फिर नज़र नहीं आते। तो ऐसे प्यारे प्यारे झरने आपकी तरफ हैं क्या, और कौन सी ऐसी जगह है जहां बारिश में आप जाना पसंद करेंगे, ये हमने अभी आपसे पूछा था, आप बता सकते हैं। वैसे अगर ऐसी जगहों की बातें की जाएँ तो हो सकता है कि आपका खुद का शहर हो, खुद का प्रदेश हो, जो ऐसे सुंदर जो चित्र कह सकते हैं बारिश के मौसम का, वहाँ नज़र आता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हुए हम देख रहे हैं कबूतरों को, वो इतने खुश हैं कि साथ नीचे घास पर बैठे हैं, मानो उनकी अपनी कोई महफिल चल रही हो, हमने उन्हें उस तरह पहले कभी नहीं देखा, अरे वो तो उड़ गए बहुत जल्दी। जी हाँ, पंछी होते हैं ये तो उड़ जाते हैं, और गौरैया भी बहुत नहाती है पानी में, आपने देखा है, तो आप गौरैया की जो बातें हैं वो भी ताज़ा कर सकते हैं। गौरैया बड़ी ही सुंदर होती है श्रोताओ। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि पूर्णिमा की सुनहरी रात और चंचल पुरवैया, हवा के झोंके गगन में तैरते उमड़ते घुमड़ते मेघ और चपला की चमक, रिमझिम फुहारों के बीच भीगी बलखाती वसुंधरा और मयूर का मन भावन नृत्य, तमाम सारी बातें जो सावन की।

हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये किताब सुन रहे थे नया जमाना फिल्म से। और हमारे श्रोताओं के कमेंट्स, हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि आज पहाड़ से घूम के लौट रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अच्छा लग रहा था। भीगते भीगते पहाड़ों का मौसम और वहाँ का नज़ारा, जी हाँ पहाड़ों का मौसम बड़ा ही अलग होता है बारिशों में। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में रह रहे हों तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ इस समय क्या मौसम है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि आज की भीगी भीगी सुरमई ये सफ़र आज का है, सावन का मेला, मेले में बादल, बादल में बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी रे, कोयल की कजरी तान, पपीहे की पुकार, पिया मिलन की आस जगाए। और इन्होंने बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक पैरोडी सी बनाई हुई है। कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओ, और संगीतकार।

0: अरुण गोविल के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है श्रोता, वो रावण हत्था है।
1: कजरा लगा के, गजरा सजा के,

भारत भूषण और मीना कुमारी जी के लिए लिखा है हमारे श्रोताओं ने कि उन्हीं पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जाना बेहद पसंद है।

इकमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो टिटेरी बहुत आती है, उसके लिए पीने का पानी सकोरे में बहुत रख देते हैं भरकर, और वो नहाती भी है, अभी भी खिड़की के कांच को अपनी चोंच से ठोक रही है, बहुत शोर कर रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, वो भी चिड़ियों के फूलों पर गिरते पानी की बूंदों के, अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है, हम तो मैदानों के उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ पहाड़ और झरने बिल्कुल नहीं हैं, नदियाँ तो बहुत तेरी हैं और इनमें कई जगह बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है, झरनों का लुत्फ इन बांधों पर लिया जा सकता है।

0: मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोपाल से 170 किलोमीटर दूरी पर पंचमढ़ी है, वहाँ मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन ये है और वहाँ पर बरसात के मौसम में पहाड़ से बहुत सारे झरने निकलते हैं। ये समय यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय होता है।
1: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया अनामिका फिल्म से, किशोर कुमार की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर का गाया अनामिका फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले का गाया हुआ है, जिसे हमने लिया कश्मीर की कली फिल्म से, एसएच बिहारी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

0: आशा भोसले की आवाज में कश्मीर की कली फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यही समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को है, आप सुनेंगे अब प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। यह आयोजन हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश भर में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति सहित सभी देशवासियों से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने और देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की।
1: आज तिरंगा यात्रा हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं, हर राज्यों में, राजधानी में आज सब दूर तिरंगा यात्रा निकल रही है और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें देश की स्वतंत्रता के लिए। अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ये परमात्मा करे कभी हमारे देश पे दुश्मन की नजर न लगे।
0: गौरतलब है कि प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। राज्य को आज 4 नई सीधी हवाई सेवाओं की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में इन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। नई उड़ानें भोपाल से रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता के बीच शुरू होंगी। मुख्यमंत्री भोपाल से रीवा की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। इन सेवाओं का संचालन अलायंस एयर द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार की नागरिक विमानन नीति के तहत प्रत्येक राउंड ट्रिप पर 10 लाख रुपए तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। नई सेवाओं से प्रदेश की आंतरिक और अंतर्राज्यीय हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों के स्थान पर लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। पुदुचेरी में आज पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को न्याय सुनिश्चित कराना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन और लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज इंदौर में आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली जा रही है। सुबह 6 बजे से लालबाग परिसर से शुरू हुई रैली में हजारों युवा पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए। रैली कलेक्ट्रेट टावर चौराहा और भंवर कुआं होते हुए राजीव गांधी चौराहे पहुंचेगी। पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसतन 17.2 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20% कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शासकीय महाविद्यालय परिसर सोयत कला में पौधाकरण किया गया। डिंडौरी जिले में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे कई क्षेत्रों का मुख्यालय से संपर्क बाधित हो गया है। और पन्ना में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्राचीन चंदेल कालीन महाराज सागर तालाब और परिसर का भ्रमण किया और कदम्ब के पौधे का रोपण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता

0: स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
1: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एस वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: Uprashtrapati Radhakrishnan 2 divasiya Andaman aur Nicobar Dweep Samuh ki yatra par hain। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
2: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
3: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
4: सरकार की चार सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के

0: समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं, क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालन नदियों के बढ़ते

0: जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: शरदः शतम्।
1: भारत सिर्फ एक देश ही नहीं, एक दर्शन है। इतिहास साक्षी है कि हजारों साल की सभ्यता को अपने आंचल में संभाले हुए है भारत। इस महान देश ने पूरी दुनिया को एक सुर में पिरोने के लिए वासुदेव कुटुंबकम जैसा नारा बुलंद किया। इंसान का इंसान से भाईचारा बना रहे, इसीलिए अतिथि को देवों के समान आदर सत्कार दिया। अतिथि देवो भव जैसे विचार इसी धरती पर उपजे, जियो और जीने दो जैसे विचार हमारी उत्पत्ति का हिस्सा है। हम आदतन भी प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और शांति की बात करते हैं। इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि पूरी दुनिया को प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और शांति का पाठ पढ़ाने वाले इस देश की आन, बान और शान की ओर जब कभी किसी ने बुरी नजर डाली, तो इस देश के सपूतों ने, इस देश के जांबाज सिपाहियों ने अपनी जनों की कुर्बानियां देकर भी इस देश की इस्मत पर आंच नहीं आ

बारूदों और गोलियों की बरसात थी। बड़ा ही सख्त पहरा था, कहर था। जहां चली थी ये सन 1965 की जंग, वो पंजाब का अमृतसर शहर था। दुश्मन नापाक इरादे ले अमृतसर के इलाके खेमकरन तक घुस आया था। अमृतसर हिंदुस्तान के दिल का एक टुकड़ा, जो पंजाब का सरमाया था। दुश्मन की तादाद बहुत थी, लेकिन दुश्मन इस बात से बेखबर था। हजारों जांबाज हिंदुस्तानी सिपाहियों के बीच परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का साया था। शहीद अब्दुल हमीद सन 1965 की जंग का जांबाज सिपाही, जिसने अकेले दुश्मन की आर्मी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 पैटर्न टैंक नेस्तोनाबूद कर दिए। याद रहे, यही पैटर्न टैंक्स बनाने वाले एक बड़े देश ने इस बात का दावा किया था कि ये टैंक्स किसी भी तरह नष्ट नहीं किए जा सकते, मगर अब्दुल हमीद ने दुश्मन के 7 टैंक्स नष्ट कर इस बात को झुठला दिया। तो चलिए, इससे पहले कि हम अब्दुल हमीद के सन 1965 की जंग के कारनामों के बारे में सुने और जाने, आइए चलते हैं सन 1954 के करीब। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के एक गांव धामपुर में जनाब मोहम्मद उस्मान के घर के

0: वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
1: जानता हूं बेटे, तुम्हारा फौज से खत आ गया है।
0: तो अब्बू, मैं आपसे और अम्मी से इजाजत चाहता हूं आर्मी में जाने के वास्ते।
1: देखो बेटा, सच पूछो तो बाप का मन तो कहता है कि तुम्हें रोक लूं। फौज में हमेशा जान हथेली पे रखनी पड़ती है, मगर जब तुम्हारे जज्बे को देखता हूं, मुझे तुम पर बहुत फक्र होता है।
0: शुक्रिया अबू। अम्मी।
2: हाँ, हाँ बेटा।
0: आप देंगी इजाजत मुझे?
2: अब्दुल बेटा, एक माँ अपने बेटे को 9 महीने पेट में जो रखती है, दुख दर्द सहती है, कीली जगह पर खुद सोती है और अपने हिस्से का निवाला अपने बच्चे के मुंह में डालती है, मगर फिर भी उफ तक नहीं करती और बदले में कभी कुछ नहीं चाहती। लेकिन मैं ऐसी माँ नहीं हूँ। मेरे बेटे, मुझे अपने दूध की कीमत चाहिए।
0: अम्मी, आप सिर्फ एक मर्तबा कहें तो मैं फौज में जाने का इरादा एकदम छोड़ सकता हूँ।
2: नहीं नहीं नहीं अब्दुल, मैं तुम्हें फौज का इरादा छोड़ने के लिए नहीं कह रही, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि जी जान से अपने मुल्क की खिदमत करना। अल्लाह नसीब वालों को ये मौका देता है, और हाँ, कभी ऐसी नौबत आए, अपनी जान भी देनी पड़े, तो मेरा और अपने अब्बू का सर मत झुकने देना बेटा।
0: अम्मी, मेरी रगों में तेरा दूध खून बनकर दौड़ता है। तेरे कदमों की खाक माथे पे लगाकर तेरे आंचल की जन्नत को छोड़कर जा रहा हूँ। कसम उस परवरदिगार की, कभी मेरे मुल्क पर बुरा वक्त आया तो दुश्मन को दोजख तक पहुंचाकर दम लेगा तेरा बेटा।
2: आमीन।
1: सुम्मा आमीन।
3: वाह, सदके ऐसी माताओं के जो ऐसा जज्बा रखती हैं। दोस्तों, वीर शहीद अब्दुल हमीद की पैदाइश 1 जुलाई सन 1933 को उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के गांव धामपुर में हुई। अब्दुल के वालिद यानी पिता पेशे से दर्जी थे और मां एक घरेलू औरत। बचपन से ही हमीद, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर शहीदों के किस्से बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता और सुनता था। शायद यही वो वक्त था जब उसके दिल के किसी कोने में मुल्क की खिदमत करने का जज्बा पैदा हुआ था। लिहाजा 27 दिसंबर सन 1954 में अब्दुल हमीद ने ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। अब्दुल हमीद का आर्मी नंबर था 239885 और उसके बाद वो इसी रेजिमेंट की 4th बटालियन में नियुक्त हुए और फिर अपनी नौकरी के आखिर तक वहीं कार्यरत रहे।

0: और फिर अपनी सर्विस के दौरान अब्दुल हमीद आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा और रामगढ़ में कार्यरत रहे। अरे अरे, लेकिन ये बैलगाड़ी पर कौन सवार है? ओ, ये तो अपने अब्दुल हमीद ही हैं। शायद कुछ दिन की छुट्टी पर घर आए हैं। ये वक्त सन 1962 का है। आइए सुनते हैं किससे बात कर रहे हैं।
1: इस बार इतना वक्त काहे लगा दिया आने में? याद नहीं आई का हमारी?
0: तुम्हारी फोटो हमेशा सीने से चिपकाए रहते थे हम। कई बार डांट खाई है तुम्हारे चक्कर में।
1: अब हमें क्या मालूम, ऐसे झूठ मूठ बहला रहे हो तो।
0: अच्छा, हम झूठे हैं? अभी बताते हैं तुमको। अरे रुक ना, अरे कहाँ भाग रही है?
1: छोड़िए हमारा हाथ। देखिए, हमारी कलाई बहुत नाजुक है, आपका हथौड़े जैसा फौजी हाथ नहीं है, छोड़िए।
0: अच्छा तो चलो ना, तुमको भी फौज में दाखिल करवा देते हैं।
1: हटिए पीछे, बहुत नटखट हैं आप।
0: ए बेगम सुन ना, अरे हमारी आंखों में देखो ना एक बार।
1: क्या है, हमें शर्माते हैं।
0: लो तो हम तुम्हारी शर्म मिटा देते हैं। अरे सुनो ना, अरे भाग, अरे रुकना, अरे भागती कहाँ हो? कौन आ गया?
2: अरे इधर आओ, तुम्हारा तार आया है।
0: आ रहे हैं, हम आते हैं जरा। हाँ, कहाँ से आया है चाचा?
2: लो भाई तुम्हारा तार
0: लाओ।
1: पढ़िए, क्या लिखा है इसमें?
0: जंग छिड़ गई है, हमें तुरंत बुलाया है।
1: लेकिन लेकिन आप अभी अभी तो आए हैं और अभी इतनी जल्दी चले भी जाएंगे?
0: हमारे इम्तिहान की घड़ी आ गई है बेगम।
1: लेकिन और भी तो कितने सिपाही हैंगे फौज में, थोड़ा रुक के नहीं जा सकते का आप?
0: अरे हर फौजी अगर ऐसे ही सोचेगा कि और सिपाही हैं, तो फिर दुश्मन हमारे घर की दीवारें लांग कर हमारे घरों में आन घुसेगा। मुझे जाना होगा बेगम, जिंदा रहा तो फिर।
1: जिंदा तो आपको आना ही पड़ेगा, हमारी खातिर न सही, अपनी अपनी होने वाली औलाद की खातिर ही सही।
0: अरे हम बता ही नहीं, तुम रो काहे रही हो? तो खुशी की बात है। अरे अरे आंसू पोंछो,

20 अक्टूबर 1962 को 3225 किलोमीटर लंबे हिमालयन बॉर्डर पर हिंदुस्तान और चीन के बीच जंग छिड़ गई। दोनों मुल्कों के बीच हिमालयन बॉर्डर का ये झगड़ा पहले से ही चलता आ रहा था। जब दोनों मुल्क सियासी तौर पर इस झगड़े का कोई हल ना निकाल पाए तो चीन ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। और ये जंग तभी थमी जब 20 नवंबर 1962 को चीन ने सीज फायर का ऐलान किया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने भी भारत की ओर से इस जंग में हिस्सा लिया। 1962 की इस लड़ाई के दौरान अब्दुल हमीद की बटालियन 7th इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी, जिसके कमांडर थे जॉन दलवी।

0: जिंदू सिंह भी कमाल बात करते हैं।
1: ता अब्दुल पाजी, अब तो तुसी क्वार्टर मास्टर स्टोरेज दे इंचार्ज बना देते गए हो।
2: क्या बात है।
1: मुबारका मुबारका। वैसे तुसी 106 mm राइफल चलान विच हो भी था उस्ताद।
2: हाँ भाई, ये बात तो है, ये बात तो है।
1: पाजी, कोई पार्टी शार्टी होनी चाहिए थी।
3: ओए नीटू सिंह, ओए तुझको सिवाय पार्टी के कुछ और कभी ध्यान नहीं आता है।
1: ले भाई,
2: जब देखो खाने पीने की बातें।
0: सही बोला है, एकदम सही बोला है।
1: भाई हम कोई सिविल की नौकरी में तो है नहीं, जो हर चाचे ताए मामे के मुंडे कुड़ियों के ब्याह की पार्टियां उड़ाते फिरे। ओए ओए, साड़ी तो मजबूरी है भाई जान, कि 24 घंटे तुम लोगों के मुंह देखना।
2: ओए ये क्या बोल रहा है भाई,
0: क्या बात कर रहा है।
1: खैर तुम बताओ अब्दुल हमीद भाई,

0: पार्टी शार्टी दोगे कि नहीं?
1: देखो भाई नीटू सिंह, तुम जितनी चाहे पार्टियां लो,
0: अच्छा,
1: पर जहां तक राइफल चलाने की बात है उसका सबूत तो दुश्मन के सीने में लोहा दाग कर मिलता है।
2: ये बात करीने, ये बात
1: शेर याद आया है,
2: इरशाद करो, इरशाद करो, दिल्ली करो या गाजियाबाद करो, मगर हमीद पाई तुम इरशाद करो।
1: तो अर्ज किया है,
0: कर्ज लिया? वो की देख लो कर्ज लिया अब्दुल भाई,
2: चुप हो, चुप।
1: ओहो सुन तो लो, तो अर्ज किया है कि अव्वल तो हमें जंग पसंद नहीं, कि अव्वल तो हमें जंग पसंद नहीं, और अगर जंग हुई तो जीत यकीनन हमारी होगी।
2: और
0: अगर जंग हुई तो जीत यकीनन हमारी होगी।

अब्दुल हमीद को नौकरी में अभी 5 साल ही हुए थे कि आर्मी ने अब्दुल हमीद को क्वार्टर मास्टर स्टोर्स का चार्ज दे दिया। तभी एक दिन 8 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद अपने बटालियन 4th ग्रेनेडियर्स के साथ अमृतसर के खेमकरण भीकेविंड रोड के गांव चीमा में अपनी चौकी मतलब पोस्ट पर अपनी बटालियन के साथ मौजूद थे कि तभी दुश्मन देश ने अब्दुल की बटालियन पर गोलीबारी शुरू कर दी। 4th बटालियन ने दुश्मन की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अब्दुल की बटालियन चीमा गांव में उत्तर की तरफ मौजूद थी और दूसरी बटालियन यानी 7th ग्रेनेडियर्स गांव असल उत्तर में दक्षिण में मोर्चा संभाले हुए थी। दुश्मन की गोलीबारी लगातार बढ़ती जा रही थी और अब्दुल हमीद की बटालियन को दुश्मन का मुकाबला करते हुए 24 घंटे हो चुके थे कि तभी दुश्मन की बढ़त को देखकर 4th ग्रेनेडियर्स को अपनी पोस्ट से पीछे हटने का हुक्म मिला। लेकिन अपनी पोस्ट से पीछे हटने से पहले अब्दुल हमीद ने दुश्मन की आर्मी के 2 पैटर्न टैंक्स को नष्ट कर दिया। इस वक्त अब्दुल के ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट H.R. जाहनू और दूसरे लेफ्टिनेंट थे V.K. वैद।

0: टैंकों के गोलों की बौछार बंद नहीं होनी चाहिए। नेशना नाबूद कर दो जो भी सामने आए। अब तो बस दिल्ली पहुंचकर इनके लाल किले में बैठकर ही नाश्ता करेंगे,
1: यकीनन
0: चिकन बिरयानी और नमकीन चाय के साथ।
1: बशीर साहब, टैंकों के गोलों की बौछार तो नहीं रुकेगी, मगर दुश्मन के ठिकाने का तो कुछ पता नहीं चल रहा।
0: ओ, दुश्मन जिस भी बिल में छुप जाए, बिलों से निकाल निकाल कर मारो इन काफिरों को।
1: ऐसा ही होगा।
0: आ,

दुश्मन के साथ जंग अभी भी जारी थी कि तभी 10 सितंबर 1965 को दुश्मन की फौज ने भारी फौज और पैटर्न टैंक्स के साथ सुबह के 8 बजे हमला बोल दिया। दुश्मन के पैटर्न टैंक्स की गोलाबारी जारी थी, मगर दुश्मन अब्दुल हमीद की बटालियन के एक भी सिपाही को ढूंढने में नाकाम था। चूंकि अब्दुल हमीद और उसके साथी कॉटन और गन्ने के खेतों में छुपे हुए थे, अब्दुल हमीद की बटालियन का पता लगाने के लिए दुश्मन ने बमबारी और भी तेज कर दी।

0: अब्दुल दोस्त, दुश्मन की गोलाबारी बमबारी तो और भी तेज होती जा रही है।
1: हाँ हाँ।
0: और ऊपर से ये पैटर्न टैंक।
1: अरे फिक्र मत कर दोस्त, एक बार इनको इस देश की मिट्टी पर कदम रखने दे बस। मेहमान नवाजी की रिवायतें हमसे बेहतर कौन जानता है। वैसे भी बच्चे तो हमारे ही हैं, थोड़े बिगड़ैल हैं बस,
0: तो
1: सिखा देंगे।

0: 10 सितंबर 1965 सुबह के 9 बजे थे कि
1: देखा कैसे कल तुम दबा के भागे थे वो लोग
2: चूहे की तरह।
0: खामोश, चुप चुप चुप चुप, कोई आवाज नहीं करेगा। आ रहे हैं कमबख्त अपने पैटर्न टैंकों को लेकर।
2: आने दो,
0: इन गन्ने के खेतों में वो हमें देख भी नहीं पाएंगे। चुप खामोश,
2: बैठो बैठो बैठ जाओ,
0: कोई आवाज नहीं।
3: हम भी तैयार हैं अब्दुल भाई, आज इनको नाक से चने नहीं चबा दिए तो।
0: रुको, वो रेंज में आ रहे हैं, मुझे जाना होगा जीप पर।
3: लेकिन अब्दुल भाई, इनके पैटर्न टैंक,
0: अरे इनके टैंकों की ऐसी की तैसी, जा रहा हूं मैं।
3: जाओ।
0: दुश्मन को करारा जवाब देते हुए अब्दुल हमीद ने दुश्मन के 3 टैंक नष्ट कर डाले। दुश्मन के बहुत से फौजी

0: फिल्म शागिर्द का दो गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की,
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

राम और शाम फिल्म का गीत था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया। शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बादलों का दिल लिए, फूलों की मुस्कान लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। चलिए देखते हैं श्रोताओं आज कौन से गीत हैं शामिल और किन श्रोताओं की पसंद है शामिल आज के इस प्रोग्राम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के, किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल सोलो में आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का ये गीत। सुनना चाहा आप सभी ने धमतरी राजन से रमेश लाल धीवर, यदुवंश धीवर, कुणाल ममता और मुन्नी धीवर ने इस गीत को सुनना चाहा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा रियाज, शमरीन मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड के। और पालदा नाका इंदौर से इसी गीत को सुनना चाहा हसीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी मंसूरी और बबलू मंसूरी ने इसी गीत की फरमाइश की। कुंडलिक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी वैष्णवी ने हिंगोली वारंगा से और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता गवाड़कर प्रिंस और बदलापुर मुंबई के हमारे श्रोता हैं सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता, अर्जुन गवाड़कर और बहादुरा नागपुर के ये श्रोता हैं वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमार ध्वनि। और इसी गीत को सुनना चाहा जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, ये हमारे श्रोता हैं दौलत बेग, दौलताबाग, मुरादाबाद से।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर ये गीत था और लिखा संतोष आनंद ने। गीत की फरमाइश की भुज कच्छ गुजरात से विपिन भाई देविका और इनके परिवार के सभी सदस्य, और इस गीत को सुनना चाहा छत्तीसगढ़ बेमेतरा से हमारे श्रोता हैं भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा और लकी सिन्हा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम और मेहराज जहानी। इन्होंने लिखा है आजाद नगर।

अमृतसर से, ये हरिद्वार से ये पत्र आया है। और हमारे जो श्रोता हैं ये हैं कालेगांव जाफराबाद के सुधाकर प्रशांत सचिन सर्वद प्रथमेश प्रणाली और कल्पना ने इस गीत को सुनना चाहा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे मानिक सिंह बैसे, कावेरी विनीत बैसे, लल्ली लेखमणि बैसे, इन्होंने लिखा है शंकर नगर दुर्ग से। और ये हमारे श्रोता हैं शुभांगी अनिल वागबेकर, ये हैं ग्राम बालिंगा करवीर कोल्हापुर महाराष्ट्र के श्रोता। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर साहिर लुधियानवी की ये रचना आपने सुनी लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की गई इज्जत फिल्म का ये गीत था। बड़ा बाजार उदयपुर राजस्थान से गोपाल तंबोली, कांता तिलक, किरण सक्षम और लावण्या तंबोली की ये फरमाइश थी। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानसी शांति, मानस और शांति, ऋचा गायत्री वैष्णव की ये फरमाइश थी। और ये पत्र है छत्तीसगढ़ के इस जगह का, नाभा जिला पटियाला से पंजाब सोमदत्त, केरव और ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी। और जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था। नचगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता, प्रदीप, विशाल, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते थे।

आनंद बख्शी का लिखा अनजाना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, आवाजें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की, ये आवाजें थी। अनजाना फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान नाज वसीम अकरम की ये फरमाइश थी। और इस गीत को सुनना चाहा, इसी गीत को बीकानेर राजस्थान से हुसैन भिश्ती, सुल्ताना भिश्ती, असलम और विनोद, इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे। इस्लामपुर जिला बुल्ढाना, सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना सुमेद कुमार दामोदर की ये फरमाइश थी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला शेफाली, मास्टर डेविस और शेफी की ये फरमाइश है। और टीवी टावर नागपुर से डूंगर दिवे और दीक्षा रमाताई, सीमाताई और राहुल की ये फरमाइश है। और इसी गीत के लिए लेक सिटी उदयपुर से पत्र आया है। प्रकाश चंद्र, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको इज्जत फिल्म का गीत सुनवाया था। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर की भी फरमाइश थी।

आप ये गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, सहल ध्यानवी के बबुल खयाम की तर्जी है। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रीतू की फरमाइश है। ये बाबूराम आनंद, बीना खुशी, नंदग्राम गाजियाबाद से इन्होंने पत्र भेजा है। पी बी कुलथे, हनुमंत कुलथे, समर्थ कुलथे, इनकी फरमाइश आई है। भीड़

और कभी कभी फिल्म के इस गीत के लिए जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, जगमान सिंह डागला, हैप्पी डागला, इनकी फरमाइश आई हनुमान जंक्शन राजस्थान के। ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और ये हमारे श्रोता हैं मालेगांव से अरविंद, सुनीता, रोहित और निखिल सारकर, ये हमारे श्रोता हैं। और चौक रोड यानी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जितेंद्र और मीका विरक की फरमाइश हमने आज शामिल की। आपके पत्रों का श्रोता रहता है हमें इंतज़ार। मनचाहे गीत कार्यक्रम का यही था आखिरी गीत और हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतज़ार। मनचाहे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है, दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार और जरूर लिखिए पत्र अपने पसंदीदा गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

0: नाट्य तरंग में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। आज सुनिए दूसरा भाग, किसी एक फूल का नाम लो।
1: आलम, आलम, नहीं, आप सब लोग को छिपा रहे हैं। अब आलम फिर आपसे पूछती है, शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं?
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते
3: हैं?
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते?
3: मुकदमा खत्म हुआ। कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन अदालत की ये आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही।
4: प्रीतम सोनी,
3: कौन?
4: मुझे नहीं पहचानते? प्रीतम, अपने अंतःकरण की आवाज को भी नहीं पहचानते? उस अदालत में तुमने झूठ बोला। स्वाति, पाठक, सुंदर और केशव सबके साथ मिलकर तुमने अदालत में कहा था कि तुम शेखर खोसला के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन क्या ये सच है?
3: कामनी को बचाने के लिए औरों की तरह मुझसे जो कुछ बनता किया, सच को छुपाया, सच को छुपाया।
4: क्या अब अपनी अदालत, अपने अंतःकरण की अदालत में भी वो सब छुपाओगे? झूठ छुपाओगे?
3: नहीं,
4: बोलो
3: बोलो। नहीं, अब सच सच कहना होगा। मैं जानता हूं कि कामनी ने जानबूझकर, सोच समझकर शेखर खोसला का खून किया। शेखर खोसला उसे ब्लैकमेल करना चाहता था।
2: वाह, वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? तुम्हारे पास पैसे कहां है कामनी?
5: प्रीतम भाई, मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन जो है वही मांगता है वो।
2: क्या मतलब?
5: मतलब मेरा रूप, मेरा शरीर, मैं आपको कैसे समझाऊं?
2: ये बात और कोई भी जानता है?
5: नहीं।
2: पाठक भी नहीं?
5: नहीं, पाठक भी नहीं। सबसे ज्यादा डर तो मुझे पाठक का ही है। ये बात जानते ही पाठक समझ जाएगा कि मैं उससे डरती हूं, उसे खो देने के लिए तैयार नहीं। तब क्या वो मुझे अपनी बांदी न समझेगा? मेरा मनमाना इस्तेमाल नहीं करेगा? शेखर खोसला की तरह वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा?
3: तुम्हारी बात सही है कामनी। प्रेमी कमजोरी जानकर और भी बेरहम हो जाता है। स्वाति मेरी कमजोरी जानती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और सुंदर का कड़वा प्रसंग छेड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं है।

0: इस तरह अनजाने ही मैंने यह ख्याल कामनी के दिमाग में डाला, पिस्तौल में असली गोली भरकर आत्महत्या करने की। उसने आत्महत्या न करके खून किया और जिंदगी भर की कैद पाई। उस घटना के लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। भले ही अदालत में कोई बात नहीं खुली, कहानी आखिर तक बिल्कुल चुप रही। शेखर खोसला का राज अभी तक राज ही है, पर मैं अपने आप को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं।
1: ओ, ये कौन आमरा इस समय कौन है?
2: भैया मैं यानी केशव ठाकर।
1: क्या
2: गुड इवनिंग यानी नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना?
1: ओ हाँ।
2: नमस्कार कामनी जी।
3: नमस्कार, कैसे हैं केशव जी?
2: अजी मजे में हूँ। सुंदर भाई ने कहा था एक नाटक चाहिए, सोचा दे आऊं।
1: तुम जरा जल्दी आ गए।
2: मैं पहले पैदल आ रहा था, फिर सोचा बस में चलूं। ये रही नाटक की काफी। ठीक है तो मैं जाऊं।
3: पीजिए, चलती थी क्या है?
2: क्यों, जल्दी होगी तभी बस में आए हैं। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ, मैं तो नाटक सुनाना चाहता था।
3: बैठिए बैठिए, क्या जल्दी है?
1: हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे।
2: जरूरी बात? अति सुंदर अति सुंदर। हाँ हाँ कहिए, मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ तो
1: हमारी निजी बातें थी।
2: निजी बात? समझा। आप लोग शायद, मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में बात कर रहे थे। वो बात ये थी कि मैं बाहर सोच में खड़ा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, और तभी आपकी बातें सुनाई पड़ी जी।
1: छिप छिप कर बातें सुनते हो बदतमीज।
3: क्या हुआ केशव जी?
2: जी
3: आप नाटक पढ़िए ना, देखक के मुंह से सुनने में कुछ और ही मजा है।
2: जी जी बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ तो सुनाता हूँ, लेकिन सुनिए, आप लोग शेखर खोसला को जानते हैं
1: क्या? तुम जानते हो?
2: जरूर जरूर, बहुत अच्छे तरीके से। अरे कुछ ही दिन पहले वो अफ्रीका से आया है।
3: वो शेखर खोसला? आपके शेखर खोसला कोई और ही
2: होंगे। अजी तो आप किस खोसला की बातें कर रहे थे?
3: होगा कोई, छोड़िए नाटक पढ़िए ना।
2: हाँ तो वो नाटक का नाम है रात की रानी।
3: वाह कैसा खूबसूरत नाम है, रात रानी। आगे
2: आगे आगे उसमें पात्र हैं एक लेखक और
1: आत्मकथा लिख लाए हो?
2: नहीं नहीं, आत्मकथा नहीं लिख लाया। हाँ वैसे देखा जाए तो आत्मकथा ही है।
1: ये क्या झमेला है?
2: हाँ वो मैं ये कह रहा था कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ।
1: क्या कहा?
2: आपने पूछा था ना कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ या नहीं,
1: तो तुम जानते हो?
3: जानते होंगे, इसमें क्या खास बात है? एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, इसमें क्या?
2: नहीं शेखर खोसला को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे हमने अपने बुरे और अच्छे दिन साथ साथ बिताए थे। हाँ सालों उधर गए। 5-6 साल पहले हम बंबई की एक कोठरी में साथ साथ रहते थे। अरे वो बेकार था और मैं भी। फिर वो अफ्रीका चला गया, वहां से बहुत सा धन कमाकर जब लौटा और अरे चल ये भी किस पछड़े में मैं पड़ गया। हाँ अजी वो अब मैं नाटक पढ़ूं?
3: हाँ हाँ पढ़िए ना।
1: नहीं पहले शेखर खोसला के बारे में सब कुछ बताओ।

0: शेखर खोसला। हाँ शेखर खोसला बड़ा होशियार आदमी था, हाल ही में अखबार में नाम भी छपा था उसका और फोटो के साथ।
1: अच्छा
0: हाँ, अरे अपनी जात के किसी समारोह में मुख्य अतिथि था वो।
1: उम्र क्या है?
2: सुंदर तुम बेकार परेशान हो रहे हो, केशव जी किसी दूसरे शेखर खोसला की बात कर रहे हैं।
0: मुझसे यही कोई दो साल बड़ा होगा।
1: मतलब ये कि शेखर खोसला 30-32 का है, ठीक?
0: और वो कहता था अरे लड़कियां उस पर जान देती है जान।
2: और क्यों?
0: और मैं सोचता था कि कामनी देसाई का मतलब ये है कि आपका आपका रूप ऐसा है कि
1: क्या
0: कि शेखर इन पर जान दे।
1: शेखर खोसला का रंग कैसा है?
0: जी गोरा।
1: रंग गोरा है,
2: गोरा।
1: आंखों में भूरापन,
2: भूरापन,
1: काले बाल और चौड़ा माथा। वो आदमी कैसा है?
0: अजी बहुत चालाक। उसी पर तो ये नाटक लिखा है मैंने। हाँ
1: देखो केशव,
0: हाँ
1: मुझसे बाद में मिलना, एक जासूसी कहानी बताऊंगा।
0: अरे लेकिन भैया ये नाटक पढ़कर तो देखिए।
1: कह दिया ये नहीं चलेगा, नया नाटक तुम्हें सामने बिठाकर लिखवाना पड़ेगा।
0: अच्छी बात है।
1: और इस तरह अपने पास बैठाकर हमने उस बौड़म से नाटक लिखवाया। बाद में कामनी ने माना कि शेखर खोसला ने उसके साथ बलात्कार किया था। कुछ दिनों वो उसके प्रेम में पागल रही और उसने शेखर को बेशुमार पत्र भी लिखे थे। अफ्रीका से लौटने पर शेखर ने कामनी को कीर्ति वैभव के शिखर पर देखा तो उसे अपने वश में रहने के लिए पुरानी बात जाहिर करने की धमकी दी। कामनी ने पाठक के डर से शेखर के सारे पत्र जला दिए। नाटक में पिस्तौल वाला प्रसंग मैंने ही रखवाया था, पता नहीं कैसे कामनी ने उसमें असली गोलियां डाली और शेखर खोसला का खून कर दिया।
3: शेखर खोसला को आप जानती हैं? स्वाति सोनी बताइए शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानती हैं?
4: मैं जानती हूं लेकिन कामिनी को उम्र कैद की सजा हो गई, वो हमारे बीच से चली गई, लेकिन अदालत का ये प्रश्न मेरे दिल में दिमाग में अब भी गूंज रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ शेखर खोसला से उसे बदला लेना था। क्या कहा, अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है?
5: हाँ भाभी।
4: अरे बुद्धू, अगर किसी भी तरह वो तुम्हें ब्लैकमेल करता तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता जैसा है। मुझे तो लगता है तुम कोई धोखा खड़ा कर रही हो।
5: अभी ये धोखा नहीं, हकीकत है। और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे शेखर खोसला से बदला लेना है।
4: तुम्हारे प्यार को ठुकराया इसलिए? कैसे लोगी बदला?
5: लगता है वो मेरे साथ चाल चल गया।
4: क्यों, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया?
5: लेकिन नहीं, तब वो अफ्रीका जा रहा था, मैंने जब उससे कहा कि मैं उसके साथ किसी भी तरह नहीं चल सकती तो उसने साफ कह दिया चिंता रहे तो फिर मिलेंगे वरना अलविदा।
4: वो अफ्रीका से लौट आया है?
5: हाँ हाँ भाभी, ये देखो अखबार में छपा हुआ उसका ये फोटो देखो। ये देखो इस ग्रुप में दाएं से तीसरा, यही है शेखर खोसला।
4: हाय कैसा है?
5: गोरा, पूरी आंखें, चौड़ा माथा, नुकीली नाक, तेज मिजाज, मजबूत जिस्म।
4: तो क्या अब उससे शादी करेगी और उसकी जिंदगी तबाह करके बदला लेगी।
2: क्या करूं भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। भाभी मेरी कुछ समझ में
4: अरे
2: नहीं आता।
4: ये सब चालबाजियां छोड़ दे, समझी? अब उसे भूल जाओ और पाठक से शादी करके चैन से जिंदगी बसर करो।
2: भाभी आप समझती क्यों नहीं,
4: जिस आदमी को तुमने उसकी कच्ची जवानी में पाया हो और बहुत दिनों अपनी अमानत समझा हो, अब वो आदमी अचानक भव्य पुरुष बन जाए, कसकर तुम्हारी उंगलियों में फंसे शीशे की तरह एकाएक सारी दुनिया का चकमकाता सितारा बन जाए, तो
2: तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लुट गई?
4: तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कामी प्लीज मेरे साथ ऐसी बात ना करो, नहीं तो मुझ पर भी भूत सवार हो जाएगा। भाभी मैं बदला लेना चाहती हूँ, मुझे उस आदमी को मिटा देना है। तू शादी कर लो और इस तरह तुम्हारा घायल अहम शांत हो जाएगा, फिर उसे सारी जिंदगी सता कर मारना, तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना उसे। लेकिन कौमी को इतना सब्र न था, उसने केशव ठाकर के जरिए शेखर खोसला को नाटक में आने का निमंत्रण भिजवाया और उसे मार कर ही चैन की सांस ली। मैंने ही उस मन उस घड़ी में उसे ऐसी बुरी सलाह दी। मैं उस अपराध के लिए जिम्मेदार हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको मुझको सजा मिलनी चाहिए।
3: शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलिए जगन्नाथ महाशंकर पाठक, शेखर खोसला को आप जानते हैं?
6: हाँ जानता हूं, लेकिन उसी अदालत की आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही?
7: ये आवाज तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम भी अपराधी हो। बचने के लिए तुमने अदालत में झूठ बोला। कामनी किसी और से भी प्रेम करती है, ये जानकर तुम ईर्ष्या और शक्ति आग में जल उठे।
6: हाँ, मैं ईर्ष्या की आग में जल उठा था।
2: पाठक, एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है।
6: कौन है वो? वो लेखक केशव ठाकर?
2: नहीं, उसका एक दोस्त है।
6: कैसे परेशान कर रहा है?
2: वो कहता है तू जगन्नाथ पाठक से शादी कर, नाटक कर, सब ठीक है, लेकिन मुझसे संबंध रख।
6: मतलब
2: मुझे भी चाहे किसी बहाने में उससे मिलू।
6: और तुम ये सब ना मानो
2: तो वो तुम्हें उड़ा ले जाएगा।
6: उस आदमी का नाम क्या है?
2: शेखर खोसला।
6: शेखर खोसला?
2: हाँ पाठक, पर मैं तुम्हें ये बताती कैसे?
6: कामनी, या तो वो आदमी पागल है या बेवकूफ, या फिर तुम मेरे सामने ढोंग रच रही हो।
2: क्यों?
6: तुम्हारी बात मुझे सच्ची नहीं लगती।
2: तुम डर गए ना, तुम कायर हो, तुम दर्शकों के सामने अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हो, शेखर और अपने दोस्तों के सामने तुम दोनों में इस्तेमाल करना चाहते हो, चतुर स्वार्थी नीच कंगाल।
6: एक शब्द भी और कहा तो कला खोल दूंगा।
2: वाह मेरे प्रेमी, मुझे बचाने के बदले खुद ही मुझ पर हाथ उठा रहे हो, शक करते हो, और तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे।
6: हाँ, शक के इसी डरावने क्षण में मेरे दिमाग ने पिस्तौल के अंदर असली गोलियां भर देने का ख्याल आया।

0: और उस दिन मंच पर नाटक शुरू होने से कोई 15 मिनट पहले मैंने पिस्तौल में चुपके से असली गोलियां भर दी, ये जानते हुए कि कामनी ने एनसीसी में पिस्तौल चलाना सीखा है और हाथ में आते ही वो पिस्तौल चलाएगी। और इस प्रकार देश पांडे की भूमिका करने वाला वो लेखक केशव ठाकर मर जाएगा और ये एक दुर्घटना ही मानी जाएगी। ठाकर बात झूठी नहीं थी, शेखर खोसला सच में जीता जाता इंसान था। कामनी उसे दर्शकों में बैठा देख सुखबुद्ध खो बैठी और उसे गोली का निशाना बना डाला, लेकिन सजा उसे नहीं, मुझे नहीं, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि शेखर खोसला की हत्या के लिए जिम्मेदार मैं हूं।
1: शेखर खोसला को आप जानते हैं, केशव ठाकर आप चुप क्यों? बोलिए, शेखर खोसला के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं?
0: ये आवाज, कामनी को सजा हो गई, शेखर खोसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अदालत की आवाज खत्म नहीं हुई। शेखर खोसला मेरा मित्र था, उससे कई बार रुपए पैसे से मैंने मदद मांगी, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था, वह बदमाश था। उसने मेरी पत्नी को भी मेरी आंखों में धूल झोंककर अपना बंदी बना लिया था। सुध-बुध खत्म कर देने वाले गुप्त लोग की तरह वो मुझे निकले जा रहा था। उसका दर्द, उसकी छूट किसी दूसरे को दे देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
2: केशव जी,
0: कहिए जी,
2: आपको नाटक के लिए कथानक हमेशा जीवन से मिलता है ना?
3: आप नाटक रात की रानी की बात कर रही हैं कामनी जी?
2: आप बता रहे थे ना कि आपने ये नाटक अपने आप, अपनी पत्नी और शेखर खोसला पर लिखा है?
3: और क्या?
2: और ये नया नाटक किसी एक फूल का नाम लो?
3: वो हाँ, वो तो जैसा आप सबने कहा वैसा।
2: बड़े गहरे हैं कवि जी,
0: बड़े गहरे हैं कवि जी। कोकेन जैसा नशा था कामनी के दिमाग में शेखर खोसला की मित का, कहानी का। उसे नशे की आदत पड़ गई थी, रोज रिहर्सल के बाद नृत्य का अभ्यास करते वक्त उच्चारण ठीक रखने के बहाने मुझे बुलाती और मुझसे बातें करती रहती। इसी तरह उसके अहम को संतोष मिलता और पाठक अंधे प्यार के अंधी चलन में दीवाना होकर मुझसे और भी ज्यादा शराफत से पेश आता। उसके कहने से मैंने नाटक में देश पांडे का पाठ करना स्वीकार कर लिया था और फिर नाटक के प्रदर्शन से एक दिन पहले।
2: सुनिए कवि जी,
0: जी
2: कल शो है ना?
0: हाँ।
2: कल पाठक ने सवेरे 10:30 बजे ड्रेस रिहर्सल रखी है, क्या आप उससे 1 घंटा पहले ठीक 9:30 बजे आ सकते हैं?
0: जी,
2: एक जरूरी बात करनी है आपसे।
0: कामनी जी, मैं ठीक 9:30 बजने से 2 मिनट पहले थिएटर हॉल में पहुंच जाऊंगा आपकी खातिर।
2: कवि जी,
0: जी जी,
2: आप आ गए?
0: मैं बिल्कुल आ गया।
4: ये पहली पंक्ति के तो
0: टिकट
4: मैंने खरीदे हैं अपने पैसे से।
0: टिकट किस लिए?
4: ये तो टिकट शेखर खोसला को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। सीट नंबर A14 और 15, उससे कहिएगा जरूर आए, नहीं तो उसके घर जाकर मैं उसका खून करूंगी।
0: समझ गया, मतलब ये कि आप शेखर खोसला को देखना चाहती हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानी को।
4: हाँ, अपनी मुट्ठी के शीशे को देखना है। देखो, मेरे मन की कल्पना से ज्यादा उजला है या ज्यादा काला? देखो आपके उस खूबसूरत चोर को।
5: और आपको अपनी खोज भी तो सच्ची कर दिखानी है कामनी जी।
4: आप बड़े गहरे हैं कवि जी।
0: और दूसरे दिन शाम को नाटक शुरू हुआ। पर्दा उठने से कुछ ही देर पहले थिएटर हॉल में शेखर खोसला सबसे अगली पंक्त की A14 नंबर की सीट पर आकर बैठ गया था। पता नहीं कामनी ने कब और कैसे पिस्तौल में असली गोलियां भरी। कोई नहीं जानता उसे मेरा खून करना था या शेखर का। और शेखर खोसला की हत्या के अपराध में कामनी को उम्र कैद की सजा दी। जेल में मैं उसे देखने गया। मैंने उसे अजीब हालत में पाया।
6: शेखर खोसला
0: जेल की कोठरी।
6: हाँ, पूरा सच।
0: बकली
6: सच के सिवा कुछ नहीं।
0: शेखर खोसला की बातें कर रहे हैं।
6: शेखर खोसला, झूठ बोलोगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताओ बताओ, इस मुलसिमा कामनी देसाई को जानते हैं? जवाब तो हाँ या ना।
4: को करवाई मेरी है जिसे तुम गाया देनी चचो भाई और नीच माँ की कैद से छुड़ा लाए, उस कामनी देसाई को तुम नहीं जानते। पर शेखर, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हारी पूरी पत्तियों में अपना घोंसला बनाया है। तुम्हारी लंबी तीखी नाक से मैंने अपनी जिंदगी में गर्म सांसें ली हैं। तुम्हारी प्यारी मजबूत बाहें पकड़कर तुम्हें मैं आसमान से यहां उतार लाई अपने हाथों में। और अब कहां गई तुम्हारी वो छेदती हुई आंखें? कहां गई तुम्हारी वो खमन से तनी हुई गर्दन? चुप क्यों, चुप क्यों शिखर? जवाब तो, मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो शिखर, मुझसे बातें करो।
7: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी और प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
8: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
9: और आ गया।
8: एक और आ गया।
9: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या? अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
7: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की तीसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं चौथी और अंतिम कड़ी।
1: कथा की तरफ आते हैं, कथा फिल्म का प्लॉट कहाँ से आया था?
2: हाँ, कथा का प्लॉट ये एक प्लॉट है कि जो मेरे से नहीं आया,
1: एक किसी और जगह से आया।
2: हाँ, बिल्कुल, ये मैंने एक प्ले देखा, ससा आणि कासो, शंगो साठे करके एक बहुत हमारे लायक मराठी राइटर है थे राधर, और उनका नाटक था जो मैंने मंच पे देखा। अब नाटक मुझे ठीक ही लगा, मतलब जिस तरह से वो आगे चलता गया वो किसी हद तक रूखा लगा थोड़ा सा, और मेरे लिए तो बात नहीं बनी, लेकिन उसकी जो ये थी, क्या कहते हैं, अंडरलाइंग कथा, नहीं कथा से भी उसकी जो प्रेरणा या उसका जो एक मतितार्थ था, हाँ, वो इतना खूबसूरत और इतना सही था कि क्या मैं बताऊं। मतलब उसका कहना था इस नाटक का कि आजकल कंटेंट को कोई कीमत नहीं रही, हाँ, तुम क्या हो इससे ज्यादा तुम कैसा पेश आती हो,
1: दिखावा क्या है,
2: ये दिखावा क्या है ये माने रखता है आजकल के जिंदगी में। और जो सही है, अफसोस है कि आज भी ये बिल्कुल सही है, और माल को नहीं बल्कि पैकेजिंग को महत्व है। इस तरह वो उसको चांदी के कागज में लपेटा जाता है, उसको रिबन किस तरह से लगाई जाती है और उसमें और चमचम डाली जाती है वगैरह वगैरह, तो इट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये क्या बात है, अगर ये मैं लेके, ये तत्व को लेकर मैं एक फिल्म बनाऊं और कहानी मैं पूरी अपनी अलग ही बनाऊं तो चलेगा क्या? मैंने टाटे साहब से कहा कि आइडिया तो आपका है, आपको पूरी तरह हम क्रेडिट दे देंगे कि आपसे हमने प्रेरणा ली, लेकिन बात का सब मेरा, चलेगा क्या? उन्होंने कहा जो मर्जी करो, वो अच्छी तरह जानते थे मुझे, बहुत मतलब घरेलू हमारी पहचान और दोस्ती सी थी, तो उन्होंने कहा जो मर्जी करो, ठीक किया, जो मर्जी किया मैंने और पूरा ही वो बदल दिया। उसमें सारे कैरेक्टर्स, वो तो प्ले में नहीं है, जो वो बापू का कैरेक्टर आता है जो घंटी बजाते रहता है, या वो सिंधी नमिया बीबी है, या ये जो डालडा का टमरे लेके घूमता है वो आदमी, या वो दादी अम्मा किससे सुनाने वाली, वो सब सब सब मेरी कल्पना के बच्चे।
1: और चौल को आपने जिस तरह से पकड़ा अपने सीरियल्स में भी और अपनी फिल्मों में भी, तो वो गुलजार साहब ने जो कहा था द मिनिस्टर ऑफ चौल,
2: आपको मालूम है, वो बहुत ये करते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा कि सही है, चौल का क्या चक्कर है यार, तुम तो मिनिस्टर ऑफ चौल हो। तो ये मुझे बड़ा बचपन से ही फैसिनेशन रहा है चौल्स का, शायद इसलिए कि हमारे घर में, हमारे बंगले में मैं अकेली, मेरी माँ अकेली, अदाना अकेले, मतलब हम तीनों, तीन जनरेशन के तीन लोग, और बड़े प्यार से हम रह रहे थे, लेकिन मुझे अपने उम्र का या और भी तो जरूरतें होती है ना बच्चे की, तो फिर मैं इधर उधर पड़ोस में बगल में इधर उधर जाती थी, या हमारे और दूर के कोई रिश्तेदार हो उनके यहाँ जो ढेर सारे बच्चे होते थे, खूब मामा मामिया मौसी चाचियां होती थी, उधर जाती थी, और इतना मुझे वो अच्छा लगता था, उनका आपस में लेन देन सुनना, उनके नोक झोंक सुनना, उनके झगड़े सुनना, उनका त्योहार मनाना वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैं बड़ा जाके उसमें समाने की कोशिश करती थी। और मुझे लगता है चॉल्स का और ये इकट्ठा रहने का जो फैसिनेशन है ना, कि मतलब अलग अलग, बेशक तुम्हारे घर हो, दीवारें अलग अलग हो, लेकिन छप्पर तो एक है।
1: बहुत सुंदर बात, हाँ। वाह,
2: तो इसका मुझे बहुत मोह रहा है बचपन से।
1: गुलजार साहब से जुड़ी एक और घटना है,
2: हाँ।
1: वो भी बताइए।
2: कौन सी?
1: वो डायलॉग सुधरवाने वाली।
2: नहीं, कहीं वो सुन ले तो। नहीं, वो एक जमाना था, अफसोस कि इतना मिल नहीं सकते हम, लेकिन तब मैं बार बार उनको कुछ उर्दू लफ्ज अगर मुझे चाहिए होता या किसी उर्दू लफ्ज का सही मतलब चाहिए होता तो मैं उनको फोन करती थी कि गुलजार साहब इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने कहा सही, अब मैंने तय कर लिया, मैंने बहुत सोचा है इस बात पर, बहुत सीरियस लिया कि ये मैं तुम्हें बहुत मुफ्त में सलाह देता रहता हूँ और अब आगे से मैं चार्ज करूंगा। तो और सचमुच फिर वो कहते थे देखो 2 रुपए

0: आस पास हो गया अभी तक, वो कुछ अठन्नी चार्ज होता तो क्या आप
1: एक नहीं? बार की सलाह पे अठन्नी यानी पांच बार की सलाह पे ढाई रुपए हुए थे
0: हाँ, तो वो याद दिलाते थे कि तुमने मेरे पैसे अभी नहीं चुकाए, नहीं वो करो जल्दी, ऐसी बात अच्छी नहीं वगैरह वगैरह। वेरी लवली पर्सन, वेरी डिलाइटफुल।
1: ये जो कथा की कास्टिंग आपने की थी तूफानी, इसके बारे में बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि इन दोनों बंदों को उलट कैरेक्टर दिया जाए?
0: ये कोई खास बैठ के सोचने की बात ही नहीं थी ना, अब मुझे सच पूछो तो याद नहीं कि कैसे क्यों सोचा, लेकिन नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला,
1: शरारती भी
0: और दूसरे पे हावी होने वाला हाँ, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा, मुस्कुराता हुआ, शरीफ जैसे चश्मे बद्दूर में था। तो मैंने कहा ये तो टेलर मेड नहीं चाहिए, है ना। तो कथा में नसीर विल बी द स्लाइटली बुद्धू भोला भाला राजा राम, बिल्कुल सही नेक आदमी, नाक के सीधे जाने वाला, और ये दूसरा जो है चंट होगा कि दूसरे को ठगाने वाला, अपनी चलाने वाला वगैरह वगैरह। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया, दोनों ने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट, मजा आ गया। कब करें? तो मैंने कहा कौन से रोल करना? नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो मैंने कहा क्या, जैसे क्या बात कर रही हो तुम भी सिली? एंड आई सेड नहीं, आई एम सीरियस, एब्सोल्युटली अ फैक्ट। और नसीर ने कहा मैं राजा राम, तुम भूल गई हो मैं कितना स्मार्ट बंदा हूँ और कैसे मेरा रॉब है ये फलाने का, क्या लोग मुझे मान लेंगे ये भोला भाला बुद्धू राजा राम? डू यू थिंक एनीवन विल एक्सेप्ट मी एज राजा राम? एंड फारूक ने यही कहा कि तुम बताओ कि मुझमें कहाँ बदमाशी तुम्हें नजर आई, बता तो दो जरा, इतना मैं सीधा साधा नेक आदमी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम पोस्टर बॉयज हो क्या या एक्टर हो? तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए? वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है? हाँ वही करते रहोगे, अच्छा ये भोला भाला दिखता है तो भोला भाला, और तुम शरारती हो तो तुम दो चैलेंज, डोंट यू वांट एनीथिंग मोर एक्साइटिंग इन लाइफ? तो फिर आई डोंट नो, आई मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि दोनों मान गए फिर और दोनों ने फिर लाजवाब रोल्स किए।
1: बिल्कुल तो बिल्कुल, बिल्कुल।
0: हाँ, बहुत सुंदर रोल्स।
1: और वहाँ पर फिर दीप्ति चली आई,
0: और दीप्ति को तो लिया ही था चश्मे बद्दूर, बाद हमारा बहुत आपस में प्यार भी था, और आई रियलाइज दैट शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर। दीप्ति इतनी अच्छी कलाकार है, अरे बाबा बाबा। वो देखो इन दोनों की बड़ी तारीफ हुई, लेकिन दीप्ति को भी देखो ना, तो वो सीधी एकदम चौल में रहने वाली सीधी सी, और इतना प्यार से वो, एक फारूक उसका सीन है कि आजकल देखा नहीं कि लड़कियां कितनी लिबरेटेड है, और आप क्या काकू बन के रहती है? तो दीप्ति के जो हाँ वैसे लिबरेटेड मैं भी हूँ मतलब काफी लिबरेटेड हूँ, ऐसे इतना वो प्यारा से मासूम।
1: एक सीन चश्मे बद्दूर का भी याद आता है, जब वो इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं, अब वो 5 मिनट बीत नहीं रहे हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं, और वो रेडियो लगता है हम तुम एक कमरे में बंद हो, और वो सुंदर सीन है उसमें जो असहजता है तो दीप्ति जी ने जिस तरह से किया है, कमाल कमाल,
0: बहुत सुंदर किया है दोनों ने। वो जो प्यार का एक मासूमियत जो प्यार की है, इतनी दोनों के तरफ से इतनी सुंदर तरीके से टपकती है, इट्स ब्यूटीफुल। इवन आई लव दिस, वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स टोटली माय एंटायर करियर। इफ यू आस्क मी नेम 5 सीन्स व्हिच आई फील आर रियली रियली गुड, दैट्स वन ऑफ देम।
1: क्या बढ़िया सीन की बात हुई है। अच्छा, फिल्मों की पटकथा कितने दिनों में आप अमूमन लिखा करती थी?
0: अरे बाबा ऐसा नहीं मैं कह सकती, डिपेंड ऑन द फिल्म। जैसा कि दिशा का पूछो, तो दिशा को लिखने में मुझे लगा 17 साल।
1: ओ गॉड
0: मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब ये नहीं कि मैं 17 साल हर एक दिन लिखती रही, थोड़ा थोड़ा
1: प्रोसेस था।
0: नहीं, लेकिन वो दिशा के लिए एक कुछ देखा, फिर वो जहन में बैठ गया कि इसको कभी न कभी कहीं न कहीं इस्तेमाल करना है, तो वो दिमाग के कंप्यूटर में दर्ज हो गया। फिर और कुछ ऐसा ही हुआ, फिर और कुछ, इस तरह छोटा छोटा छोटा छोटा वो समेटता गया मेरे अंदर, और फिर एक दिन विस्फोट हुआ और फिर मैं लिखने लगी, और फिर 7 दिन में लिखी। तो टेक योर चॉइस, अगर 17 साल लगे कहो या 7 दिन लगे कहो।
1: वाह, ये भी बात है। हाँ। और जब आपने कहा कि ये कुछ देखा और दिमाग के कंप्यूटर में जमा हो गया, तो मुझे याद आता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गई ब्लाइंड स्कूल में
0: जी।
1: और वो रस्सा कशी का खेल हाँ, रहा हाँ, था हाँ। वो सीन बाद में स्पर्श में आता है ना, तो कोई कोई चीजें जो दर्ज होती जाती है दिमाग में
0: वो कथा
1: का हिस्सा बनती जाती है।
0: अरे ये रस्सी जाने दो, लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो या ट्रम्प्स कहो, क्या है कौन सा सीन, तो वो अंधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं।
1: हाँ। हाँ?
0: इससे और क्या चाहिए। अब वो मैं बैठ के थोड़े ना सोचा है वो सीन, वो देखा तो लिख लिया, क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, वो उनका गेंद क्या है एक रिंग है और उस रिंग में उन्होंने बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी, ताकि वो रिंग में वो सब झुनझुन झुनझुन करके बचते हैं ढक्कन सब, और फिर वो रिंग फेंको तो झुनझुनाती हुई जाती है हवा में झुनझुन झुनझुन झुन, फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है, प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा, नॉट वेरी हेवी, तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है। तो ये बॉलर फेंकता है, ये झुनझुना या बॉल कहो का बॉल है, वो बॉल फेंकता है, ये सुनता है और जैसे पास आया वह टैक करके
1: क्या
0: मारता है, तो या तो सिक्सर या तो कैच।
1: वाह वाह,
0: ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए, अभी मैं आपको बता रही हूँ तब फिर भी मेरे
1: रोंगटे खड़े हो
0: गए। इट इज सो ब्यूटीफुल, तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से, स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया।
1: इसीलिए तो सेल्यूलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का
0: जी।
1: क्योंकि जीवन से चीजें निकाली गई थी। मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो, और वो ये है कि ये जो चौल है, मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चौल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया और वो मुंबई में नहीं मिली।
0: नहीं, क्या मजे की बात है ना, मुंबई की खास चौल पुणे में। दिस इज फिल्म यार, यू नो फिल्म ए टू जेड फिल्मी एवरीथिंग इज फेक, तो ये भी फेक ही है, चौल भी फेक है हमारी, लेकिन चौल फेक नहीं है, पोजीशनिंग फेक है।
1: पोजीशनिंग फेक है कि वो आपको बंबई में मिलती ही नहीं।
0: नहीं ना, बंबई में कितनी चौल है रे बाबा बाबा बाबा, हम पागल हो गए ढूंढते ढूंढते, मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक, उधर थाना तक, कहां कहां नहीं घूमे हम, तो कई चौल तो होती थी, वहां के मालिक बहुत बदतमीज होते थे, बेतहाशा पैसा मांगते थे, या वहां सुना कि कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा, कई चाले थे इतनी खराब थी, मतलब सीढ़ियां लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए, और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ था, कहीं भीड़ जा ही नहीं पाते थे चौल तक, तो इस तरह से एक भी चौल हमें रास नहीं आई, और फिर परेशान हो गए, फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चौल बनाते हैं, अब क्या करें, तो मैंने कहा कि अरे ये चौल करना और वो भी सेट बनाना है, कभी नहीं हो सकता, लेकिन क्या करे मानना पड़े। फिर किसी ने बताया कि पुणे में देखो ना, पुणे में जरूर मिल जाएगी चौल, तो मैंने कहा नहीं नहीं बंबई की चौल पुणे में क्यों, तो कहता अच्छा तुम स्टूडियो में नकली चौल लगाने को तैयार हो लेकिन पुणे में असली चौल नहीं चाहिए क्योंकि वो पुणे में है। मैंने कहा हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा, तो फिर हम पुणे गए और पुणे में तो उल्टा ही हुआ, जो चौल देखो हमें पसंद आए, जो चौल देखे वो हमें रास आए, तो फिर हमने 5 चौले शॉर्टलिस्ट की और फिर एक जो बहुत हमारे मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह वगैरह, और वो एक ताड़ुग के चौल करके केसरीवाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पुणे में, तो

0: खुद चले जाते बगल में पड़ोस में।
1: इस तरह पूना की साड़ुंग के चौल कथा फिल्म में बंबई की चौल बनके हमेशा के लिए अमर हो गई, है ना। ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं,
0: कौन सा?
1: जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीरी पे कदम रखा था।
0: प्यारा लगा मुझे। अगर सुनो, एक से जल्दी से बताती हूँ कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया जो आपने गाना बजाया विविध भारती में।
1: क्या बात है, कौन आया कौन आया। अब अपने सुनने वालों को बता दे कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा, कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं
0: जी।
2: कौन

0: अब दिशा की तरफ चलते हैं, आपकी जिंदगी की आपकी नजर में हाँ। सबसे महत्वपूर्ण फिल्म हाँ। है ये
1: बिल्कुल,
0: और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था।
1: विलासराव सालुंके वाज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग कि वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन विजय एंड सरोजा परूलकर पुणा में, दोनों अब नहीं रहे लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों पति पत्नी थे और हमेशा कुछ न कुछ सोशल काम में लगे रहते थे। कहीं कुछ किसी के साथ जाती हो तो ये दोनों वहां हाजिर, लड़ने के लिए, उनको ये दिलवाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सही, ये तुमने विलासराव की पानी पंचायत नहीं देखी, उनके गांव में वो गांव पूरा पानी को उन्होंने अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया बात हाँ, है।
1: और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है। एनीवे मैं देखने गई
0: हाँ, जी।
1: उनके गांव में
0: नायगांव,
1: नायगांव, नायगांव गई थी। तो वहाँ नायगांव में उन्होंने कहा सब पूरा देख लिया, ये हो गया वो गया। उन्होंने कहा अच्छा, एक हस्ती से आप नहीं मिलेंगे, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए।

0: तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठीना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया था, धूप में काम कर करके सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का, ये है हमारे सोमा। तो मैं जरा सी चौंके, मैंने कहा ये अच्छा नमस्कार, बड़ी खुशी हुई, सोमा अपना कुआं दिखा दो सही टाइप को। तो मुझे सोमा ने अपना कुआं दिखाया, बाकायदा कुआं पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी, कहता ये सोमा ने खुद खोद खोद के पानी निकाला। 12 साल सोमा कुआं खोद रहा था, क्योंकि सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे कोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरकाली, उसके अंदर पानी है। ऐसे उसको पता नहीं कहां और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी। और वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे, तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता। और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मायके चली गई, फिर वापस आ गई, बेचारी जाएगी कहां, बच्चे उसके 3-4, और पूरा गांव सोमा पे हंसता था। उसका नाम था पगला सोमा, क्योंकि सारे देखते सोमा क्या है, अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा। और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव पगला गया बिल्कुल। तो ही हैड द लास्ट लाफ। फिर गांव वालों ने आगे बढ़ बढ़ के फिर उसका कुआं बांधा, ये किया वो किया। तो विलास राव ने कहा सही, ये फिल्म बनाने लायक है। मैंने कहा जरूर है, और ये मैं अपने दिमाग में दर्ज कर।
1: इंसान के जुझारूपन की मिसाल,
0: जुझारूपन की क्या मतलब, किस हद तक उफ। और फिर ये जब हुई फिल्म, ओम पुरी ने ये रोल किया
1: जी,
0: और शबाना ने उसके बीवी का किया, और वो इतना उनके प्यारे सीन है, वो कहती है कि अरे इस चुड़ैल को लेके मैं क्या करूं, कोई औरत होती तो मैं देख लेती, लेकिन ऐसी शौक का क्या करूं जो कुआ, मतलब उसकी शौक।
1: तो,
0: और हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई
1: जी।
0: फिर वो कुआ हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक पूरी फिल्म के लिए ये शायद इट्स नॉट मीटी इनफ, नॉट फ्लेशी इनफ। हाँ, आगे इतना रोजमर्रा के काम में लग गई। और फिर काफी साल गुजरे, और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सुभाषिनी अली,
1: जी जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल
0: मालूम है, कैप्टन लक्ष्मी की बेटी और खुद मार्क्सिस्ट है, और बहुत धड़ल्ले वाली औरत और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। तो वो बहुत मिल मजदूरों का काम करती थी मुंबई में, और वो एक दिन मेरे घर के पास ही रहती थी तब, तो मेरे घर आई और दो चटाइयां देखी सुभाषिनी ने, कहती है सही दो दो चटाइयां क्या करनी, मैंने कहा है पड़ी है, कहते एक चटाई तो दे दो ना मुझे, मैंने कहा तुम क्या करोगे चटाई लेके, कहते मेरे लिए नहीं रे, मुझे अपने गाड़ा में काम आएगी। मैंने कहा क्या, कहाँ काम आएगी, कहते गाड़ा गाड़ा, गाड़े में जाती हूँ ना मैं, तो गाड़े में काम आएगी। मैंने कहा गाड़ा मतलब क्या बोल रही हो, क्या गाड़ा। तो सुभाषिनी ने ऐसी आंखें फाड़ के मुझे देखा, कहती है तुम मराठी औरत अपने आप को डायरेक्टर कहती हो, लेखिका कहती हो, और तुम्हें गाना नहीं मालूम बम्बई में रहकर। मैंने कहा नहीं सच्ची नहीं मालूम मुझे क्या गाना मतलब, कहती चल मेरे साथ चल। और फिर मैं सुभाषिनी का पल्लू पकड़ के उसके साथ गई, और हम चिंचपोकड़ी और यहाँ वहाँ वो सब मिल एरिया में वो मुझे ले गई, और गाड़ा देखा मैंने। गाड़ा क्या होता है, इट्स अ डॉर्मेटरी, बड़ा कमरा जिसमें 20 से लेकर 40 बंदे एक साथ रहे,
1: एक लंबा
0: लंबा बड़ा एक हॉल, हॉल ही गाड़ा मतलब हॉल कमरा, हाँ, लेकिन उस कमरे में साथ रहते हैं, साथ काम करने वाले मिल मजदूर, 40-40 मिल मजदूर एक कमरे में। तो वो जैसे मैं दहलीज पर खड़ी हुई, सुभाषिनी तो अंदर गए थका थक करके, और मैं आंखें फाड़ के देखती रही 40 जने अंदर कमरे में, और अलग अलग उनका हर एक का कुछ ना कुछ चल रहा था, कोई पेपर पढ़ रहा था दिन का, कोई लेटर लिख रहा था पोस्ट कार्ड पे, कोई फ्लूट बजा रहा था, 4 जने पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक जन स्टोव पे चाय बना रहा था, एक जन कुछ भी मतलब अलग अलग अलग अलग उनके सवाल। और बहुतेरे लोग सोए थे चटाइयों पे, गहरी नींद सो रहे थे, चारों तरफ ये झमेला चल रहा है, लेकिन बीच बीच में लोग बड़े मजे के खर्राटे भी भर रहे हैं। तो मैं देखती रह गई खड़ी रह गई। फिर उसने कहा अरे आओ ना, क्या देख रही हो। फिर मैं अंदर गई और फिर बातें करने लगी लोगों का, वो सब कहते हम अपना देहात छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने घर बार सब छोड़ के हम वो अपने पेट भरने के लिए, रोजी ढूंढने के लिए बंबई शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो गांव में रह गया, पीछे दिल छोड़ के आए हैं, बाकी सब लेके आए। तो मैंने कहा तो फिर आपको सिर्फ एक 6 फुट जगह मिलती है, कहते हाँ ये हक की हमारी 6 फुट जगह जहाँ हम सो सकते हैं आराम की नींद, कहते हाँ सो सकते हैं लेकिन करवट बदल सकते। मैं

0: ने ये फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल किया है कि हम सो सकते हैं करवट नहीं बदल सकते। किसी ने मुझे कहा क्या तुम बहुत अच्छा डायलॉग लिखती हो। मैंने कहा मैं डायलॉग चोरी करती हूँ। मेरा अपना
1: आम जीवन से आया है जी।
0: तो एनीवे तो ये इस तरह वो देख के मैंने कहा ये तो इट्स टू ड्रामेटिक टू फिल्मी टू नॉट डील विथ। तो फिर ये भी वो कुएं के साथ ये
1: जुड़ गया।
0: और देन द लास्ट थिंग वॉज विजय सरोजा अगेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम निपानी। निपानी इफ यू नो
1: इंडस्ट्रियल एरिया
0: इज द इंडस्ट्रियल एरिया नोन फॉर बीडी वर्क्स। हाँ, निपानी की तंबाकू और निपानी की बीड़ियां मशहूर है। तो वहां औरतों ने एक जंग खड़ा किया था क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। उनको पैसे ठीक से नहीं दे रहे थे। उन पर वो बहुत ही क्या क्या तरह तरह के जुल्म होते थे वगैरह वगैरह। तो विजय और सरोजा वो के साथ शामिल होने के लिए गए थे निपानी और वहां से लौट रहे थे। और विजय ने मुझे जो किस्से कहानियां सुनाई तो मुझे लगा मैं चारों तरफ मेरे तंबाकू ऐसे
1: उड़
0: रहा है और मेरा दम घुट रहा है ऐसे। तो ये फिर तंबाकू वाली औरतें भी खड़ी हो गई लाइन में और फिर देखते ही देखते जैसे जादू हुआ और फिर 7 दिन के अंदर इसका मेल हो गया और फिर पटकथा मेरी बन गई।
1: क्या बात है। और मैंने हमेशा हर जगह ये दिखा है कि आप ये कहती हैं कि आपकी नजर में ये आपकी सबसे अच्छी फिल्म है।
0: जी जी, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण फिल्म है। इसका अब तक मुझे लगा कि एक तो ये मेरी 4थी-5वीं फिल्म थी, मतलब फीचर फिल्म, बाकी छोटी मोटी छोड़ो डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म। लेकिन तब तक मुझे ये मीडियम भी खासा समझ में आया था और लोग भी बहुत बढ़िया मिल गए। एक्टर्स भी नाना पाटेकर और रघुवीर यादव, नीरू फुले, शबाना आजमी, ओमपुरी और बाकी सब मिल वाले, एक्चुअल मिल वाले, ऐसे एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ लिखा हुआ, बम्बई बम।
1: हाँ, वो आपने खुद लिखा है
0: जी,
1: ये भी कमाल की बात है।
0: मैंने खुद लिखा और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया और राहुल रानडे ने बढ़िया पार्श्व संगीत दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस फिल्म में। और फिर एडिटिंग क्या, फोटोग्राफी क्या, फोटोग्राफी के लिए 2 जने थे, गांव की फोटोग्राफी मधु अंबटनी की, केरल का मशहूर कैमरामैन, और जी एस भास्कर ने बंबई की फोटोग्राफी की।
1: क्या
0: तो
1: बात,
0: दोनों ने कमाल किया, मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस।
1: जब एक काम की ऊर्जा आगे बढ़ती है तो समान विचार के लोग जुड़ते चले जाते हैं।
0: सही बात
1: है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। यहाँ मैं 2 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ, एक तो नाना पाटेकर से हुई लड़ाई और उनकी दादागिरी और दूसरा रघुवीर यादव का आगमन इस फिल्म में।
0: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है।
1: जी जी
0: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड सही, आई वांट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर। एंड नाना इट वॉज सच अ स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें। लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
1: जी,
0: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
1: जुनून
0: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया।
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
0: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो, तुम्हारा मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बनल करना अपन। हाँ, मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत कैसे, तुम वसंत की तो फिल्म की शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30

0: से ऊपर लगता हूँ तो मैं चुप रही। फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई जाहिर है।
1: मुझे तो पहली बार किसी ने आपको हराया होगा।
0: पहली बार तो नहीं लेकिन हाँ ऐसा कम ही मौका था लेकिन उसने हराया। यस इसमें कोई शक नहीं लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि अरे वो बहुत बड़ा लगता है उस रोल के लिए। नहीं वो सही लगता है अपनी जगह पे उसने अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे फिर बहुत आगाह किया दादा को ले रही हूँ तो देखो दोनों मालूम है ना वो झगड़ा करता है बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है और कभी कभी गुस्सा आता है तो इतना वो शोर मचाता है ये करता है वो करता है। मैंने कहा देख लूंगी और वाकई में फिर एक बार ऐसा हुआ कि बकुरी गांव में हमारा शूटिंग था और वो किसी बात को लेकर खूब बिगड़ गया खूब चिल्ला चिल्ली ये वो मैं नहीं करूंगा मैं जा रहा हूँ फला। तो फिर विनी मेरी बेटी विनी की नाना की अच्छी दोस्ती थी तो विनी ने फिर जाके उसको समझाया दादा बाबा करके फिर वो शाम तक ठंडा हो गया फिर शूटिंग चालू रही। ऐसे और एक बार कभी हुआ अब वो मुझे डिटेल याद नहीं है। तो ये दो बार हुआ दो बार निपटाया दोनों बार हम बड़े डरे हुए थे और मैंने भी कि नाना ऐसा कहे ये वो मन में ना होते हुए भी बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की लेकिन वो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार डबिंग कर रहे थे हम तैयार हो गई थी शूटिंग पूरा हुआ था और अब डबिंग बाकी तो बीआर में अगेन बीआर में डबिंग चल रही थी और किसी बात को लेके वो बिगड़ा स्क्रिप्ट ये वो करके चिल्लाने लगा। अब मेरा भी माथा ठनका और गुस्सा मेरा भी थोड़ा सा वो
1: खतरनाक वाला है
0: खतरनाक वाला हो सकता है कभी कभी। तो फिर इस बार मेरा भी एकदम से मेरी घंटी बजी फिर मैंने कहा नाना तुमको इस तरह पेश आना है तो यहाँ जगह नहीं है बाहर हो जाओ एकदम यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए और यहाँ अगर रहना है तो तमीज से पेश आना पड़ेगा वगैरह वगैरह जो भी तू मैं बहुत हुई। फिर कहता तुम मुझे बाहर निकाल रही हो मैंने कहा हाँ बिल्कुल तो गया दरवाजे तक जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा मैंने कहा यही आइडिया है जाओ। तो गया और सब हक्का बक्का अंदर सात आठ लोग थे हम बाकी अब सब एक दूसरे को देख रहे कह तो दिया जोर से। फिर किसी ने कहा अब क्या होगा मैंने कहा एनीवे बाकी लोग अभी काम अपने पास है तो काम जारी रखते हैं। नाना फिर आ गया दरवाजा खोल के
1: कितनी देर बाद तो,
0: कुछ 20 मिनट बाद आधा घंटा बाद ना मैंने कहा अरे तुम आने वाले नहीं थे आगे कहते हाँ सुनो इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम औरत जात हो इसलिए बच गई नहीं तो कोई ठिकाना नहीं था।
1: अरे बाप
0: तुम औरत हो इसलिए बच गई करके धड़ाम से बड़ा ड्रामेटिकली निकल गया तो निकल गया फिर सबने कहा कि फलाने को कहे जाके अब क्या दूसरे ने डबी करने का सवाल ही नहीं था और वो ये कर सकता था बिल्कुल कायदे से कानून के खिलाफ होगा तो मैंने कहा नहीं सुनो देखते हैं जरा अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे आज बाकी काम करेंगे देखते हैं। सब घर गए अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा सुबह सुबह बड़ी जल्दी फोन आया फोन उठाया सही नाना अगर मैं नाना भूलते बड़ी मीठी प्यारी आवाज हमेशा वाली कह रहे नाना मैं भी उतनी ही मीठी आवाज में अगर आज कितनी वास्ता शिफ्ट है कितने बजे की शिफ्ट है आप तो मैंने कहा दो शिफ्ट है एक 9 बजे और एक 3 बजे तुम्हें कौन सी पसंद है। वो कहता मैं 3 बजे आऊं तो चलेगा मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेगा आ जाओ अच्छा मिलते हैं बात खत्म।
1: मतलब बात है
0: प्याले में मराठी में कहते हैं ना
1: प्याले में तूफान
0: वैसे वो हुआ लेकिन ये अच्छा तो अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ
1: जी।
0: अभी फ्लैश फॉरवर्ड तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल बाद की बात होगी मे बी इवन मोर अब साल वाल मुझे याद नहीं रहते लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स से मुझे फोन आया कि इस साल का जीवन गौरव पुरस्कार हम नाना पाटेकर को दे रहे हैं।
1: जी जी
0: मैंने कहा बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप कहते इसलिए कि वो आपके हाथों देने का हमारा इरादा है हमें बहुत अच्छा लगा आप देंगी क्या मैंने कहा दूंगी जरूर दूंगी हाँ तो बड़े खुश हुए अच्छा अच्छा तो फला वक्त ये वो आपको लेने आएंगे वगैरह। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये किस्सा सुनाया नाना का मैंने कहा आज मैं हूँ तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ नाना भी खड़ा पास में फिर बाद में मैंने कहा कि अंत में मुझे इतना ही कहना है कि देवा परमेश्वरा मला स्त्री जन्माला घातलं से फार उपकार केलेस कारण आज मी म्हणून नानाला हा

0: जरा देऊ शकते.
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार, अद्भुत.
0: एंड एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन. सब लोग उठ के तालियां बजा रहे और नाना ने जो मुझे जप्पी लाई. बहुत हंसा नाना, बहुत हंसे हम दोनों.
1: क्या बात है. उसका हिंदी बता देते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लिया इसलिए आप बच गई और इसीलिए आज नाना को आप जीवन गौरव पुरस्कार दे पा रही
0: हैं. मानती हूँ कि हे भगवान, मुझे आपने स्त्री जन्म दिया, इसका लाख लाख शुक्रिया, ताकि आज मैं ये दे पाई.
1: बिल्कुल, क्या बात है. बड़े प्रेम से आपने नाना को याद किया. ये गाना सुनते हैं
0: जी. क्या बात.

0: रघुवीर यादव का इस फिल्म में आना भी एक घटना है।
1: रघुवीर यादव का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। रघुवीर मेरा हमेशा का बहुत लाडला एक्टर रहा है, बहुत ही प्यारा, एंड आई लव हिम एज अ पर्सन, आई लव हिम एज एन एक्टर। और इसलिए मैंने ये जब लिखी कहानी तो सोमा तो और कोई हो ही नहीं सकता था, रघु तो मतलब ओमपुरी का छोटा भाई
0: जी जी,
1: जो देखता है कि अपना भाई और भाभी कितने परेशान हैं और मैं बोझ बन के रह रहा हूँ, इसलिए वो बेचारा छोड़ के जाता है। तो रघु किसी और फिल्म में बिजी था
0: जी,
1: तो उसने कहा सही जी ये तो डेट बिल्कुल नहीं हो सकती किसी तरह, मैं बिल्कुल बुरी तरह फंस गए हो, मैं नहीं मना कर सही ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम किसी तरह पटा लो उनको ये वो। कहता हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश मतलब, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? कहता है फिर तो आपको पटाऊंगा।
0: बिल्कुल मासूमियत इंटैक्ट।
1: और उसने किया रोल, और क्या रोल, बहुत सुंदर रोल किया, वेरी ही लिव्स द रोल, रियली लिव्स द रोल।
0: जी जी, और ये दिशा जिसकी बात हम कर रहे हैं सई परांजपे की नजर में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है
1: जी।
0: आपने बीच में एक कहा था कि अगर आपके फिल्माए गए बेस्ट सीन की बात करें तो मैंने चश्मे बदूर के जिस सीन का जिक्र किया था वो शामिल है,
1: वो एक है।
0: तो एक सहज जिज्ञासा है कि हाँ, बाकी कौन से सीन है?
1: बाकी दो जो हैं वो दिशा के ही है
0: जी।
1: हाँ, एक वो है जहाँ परशुराम को पानी लगता है कुएं में।
0: वाह वाह वाह,
1: वो सीन है, मैं बताऊं कि परशुराम खोद रहा है कुदर से और वो देखता है, कहता है है है, फिर हाथ डालता है, देखता है तो कीचड़, कहता है पानी पानी, और चिल्लाने लगता पानी लग गया मेरे कुएं में, पानी लग गया, हौसा मतलब बीवी का नाम, बच्चों के नाम। और इधर घर में शबाना मतलब उसकी बीवी हौसा अपने बेटी के बाल बना रही है, वो छोटी कंघी होती है ना वो मराठी, और वो एक हमारा करंडा होता है ये रखने का, वो तो वो लेके, तो एक छोटा बच्चा आता है कि कद्दू की माँ, उसके छोटे बच्चे का नाम कद्दू है, कद्दू की माँ, वहां परसा चाचा चिल्ला रहा है कुएं पे, पानी लग गया करके। तो ये कहते हे राम मुझे मालूम ही था, पगला ही गया आखिर। और वो बेचारी इतनी वो तैयार है ये झेलने के लिए कि अब मियाँ की तो फाइनली घंटी बज गई, इज गॉन मैड। तो वो उठती है उसके पीछे बच्चे और दौड़ दौड़ के, वो कांटे कटोरे में वो कांटे लगता रहता है, दौड़ के बेचारे जा रहे कुएं की तरफ, और फिर वो देखते हैं नीचे और वो फिर दिखाता है कीचड़, और ये कहते हैं कुआ, एंड देन दे कांट बिलीव इट, एंड देन दे गो इन, एंड देन यू नो

0: वो पानी लेके पहले तो अपना माथे पे लगाती है, फिर बच्चे एक दूसरे को लगाते हैं, पानी डालते हैं एक दूसरे पे, और फिर रघुवीर को पोस्टकार्ड एक आता है, और वो पोस्टकार्ड के जैसे हमारे यहाँ शुभ तिलक करके केसर का लगाते हैं, किसी की शादी का ये बताना हो या कुछ है केसर का, तो ऐसे मिट्टी का लगाया हुआ है कि ये जो शुभ तिलक है ये अपने कुएं की मिट्टी का है पानी, तो और फिर वो कुएं का ये होता है। तो फिर शबाना जो आज तक गालियां देती है कुएं को, वो कहती है कुआ माता आपको हमारी वगैरह वगैरह करके बोलती है, तो वो छोटा बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई।
1: छोटा बच्चा कहता है कितना सुंदर,
0: तो आई जस्ट लव दिस फिल्म बिकॉज आई थिंक it's a very true film and it keeps you absorbed and it's a very serious subject but it is so entertaining in the right sense, I mean, you know, उसमें बहुत हंसी मजाक भी है, बहुत human give and take है, बहुत चीजें है। मैं सोचती हूँ उसमें सचमुच मैंने अपना सब कुछ डाला है। दिशा
1: जी, एक और किसी दृश्य की बात आप करना चाह रही
0: हैं? हाँ, वो दृश्य बहुत ही कमाल का दृश्य है कि एक दिन ऐसा होता है कि नाना भी अब पहुंच गया है, नाना मतलब वसंत और सुमा अब दोनों दोस्त बंबई पहुंच गए हैं, और वसंत की बेचारे की नई नई शादी हुई है लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है गाँव, पैसे ही नहीं है, और वो तरसता रहता है बीवी के लिए, बहुत प्यार करता है उससे। फिर एक उनका मिल वाला है जिसका एक छोटा कमरा होता है कहीं, तो वो कोई कहता है कि अरे वो बापू का एक कमरा है, वो कभी कभी दे देते हैं किसी को जरूरतमंद को, तुम क्यों नहीं भाभी को बुलाता यहाँ वगैरह वगैरह, तो बापू का पूछता है, कहता है हाँ हाँ बुलाओ बेशक बीवी को। तो एनीवे वो आती है फूलवंती उसकी बीवी, वो आती है और एक शाम को फिर वो कमरा उसका हाँ, और वो दिखाता है जो बहुत अच्छा एक्टर है जिन्होंने कमरे का मालिक बताया, वो किशोर नांदलस्कर
1: जी,
0: हाँ,
1: जी
0: ग्रेट कॉमेडियन। तो किशोर नांदलस्कर ही हैज द कमरा, ही सेज कि हाँ भाभी पानी आता है सुबह 4 बजे हाँ, और फिर वो निकल जाता है। फिर ये दोनों बहुत मशगूल किए प्राइवेसी और इतने दिनों बाद वगैरह वगैरह, और वो दोनों लेटते हैं तो मैं खट खट खट खट खट खट, तो दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा, होता है कि कौन है रात के इस वक्त, तो कौन है हमें और कौन है, तो जिसका कमरा है उसकी बहन कोल्हापुर से आई है अपने बच्चे लेकर, और तो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इन दोनों को खाली करना पड़ता है फिर, और अब दिस इज द सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट
1: जी।
0: दे रीच द गाड़ा, गाला के बाहर एक गली सी है छोटी बहुत पतली गली, वहां वो फुलवंती सर पे पल्लू और उसके साथ ट्रंक उसका छोटा बसंत और सोमा भी साथ है, और वो रो रही है और वो कहते कि 40 बंदों के साथ एक कमरे में मैं सोऊं, तो वो कहता है सोमा और चारा भी तो नहीं है ना भाभी, जिसे और कुछ तो चारा होगा, तो वसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह, तो सोमा कहता है रुको, अंदर आता है और अंदर पर एकदम सब बंदे कोई ये बनियान पहना हुआ, तो छोटी छोटी अपने कच्चे में है चड्डियां पहने, और वो सब चिल्ला चिल्ली तो कहते हैं क्या एक औरत यहाँ, ये कैसे हो सकता है, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, आज एक आए ये कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह। फिर वो सयाजी शिंदे भी है उन गाले वाले में, वो कहता है अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह, कहते लेकिन जगह कहाँ है, तो फिर सोमा कहता है मैं बाहर सो रहा हूँ तुम मेरी जगह वगैरह वगैरह, फिर सब मानते हैं, कहते हैं रुको रुको रुको, और फिर हमने ऊपर कैमरा लगाया था क्योंकि एक वहां ये था जहां कैमरा रख के हम ऊपर से देख रहे थे हा? तो टॉप शॉट था, और सब ये लोग आधे लोग सोए हुए हैं हा? और ये भगदौड़ मची है कि अब औरत आएगी तो कोई पैजामा पहन रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई एक लुंगी के लिए दोना खींचा खींचा होती है, एक जना तो एक सोया हुआ आदमी उसको उठो उठो कहता है वो गहरी नींद है, तो उसका चटाई के साथ उसको ऐसे ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल इट्स वेरी फनी दिस थिंग। तो ये सब होके फिर नाना और ये दोनों चुपके से अंदर आते हैं, सब सन्नाटा, अब सब लेट जाते हैं, और फिर नाना सोता है, वो भी सोती है, और जैसे दोनों सोते हैं उनके बगल में एक बुजुर्ग उनमें से जो है वो उनकी तरफ पीठ करता है और साइड वाले को इशारा करता है, फिर वो भी पीठ करता है, और सब लोग उनकी तरफ पीठ करते हैं ताकि थोड़ी प्रिवेसी उनको मिले, मतलब ये या चाहे की प्रिवेसी है पीठ करने से, लेकिन उतने में वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से शराफत दिखाना, तो सब एक एक एक एक करके ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, सब एक करते हैं और फिर सन्नाटा है ठीक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स।
1: क्या बात, अद्भुत दृश्य। राजश्री

0: सावंती वर्ट्रेस
1: रांची सावंती
0: जी, कमाल। अब पपीहा है जो चिपको आंदोलन पर बनी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पपीहा का जिक्र करें।
1: तो पपीहा का जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ। ये फिल्म कह सकते हैं कि अपने भारत के वन अरण्य जंगल और आदिवासी, इनको ये मेरा एक सलाम है।
0: वाह,
1: इसका ये पढ़ के
0: चिपको आंदोलन की
1: आंदोलन का मैंने कहा ये तो कुछ इसको तो करना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन एक फेरी टेल फॉर एडल्ट्स करें, बड़ों के लिए एक परी कथा। हाँ, तो अभी तक मैंने कभी प्यार का ट्रायंगल नहीं हैंडल किया था, तो एक प्यार का ट्रायंगल करें। एक कोना फॉरेस्ट ऑफिसर हीरो, जिसके लिए वन और जंगल और उनकी रक्षा यही सब कुछ है, ही इज ऑन अ मिशन, मिलिंद गुना जी। देन द गर्ल विनी माय डॉटर हु इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु इज स्टडीइंग
0: समाज मानवी की,
1: हाँ, लेकिन आदिवासियों की
0: जी।
1: शी इज स्टडिंग ट्राइबल्स और इसलिए वो इस जंगल में आई है। और तीसरा एंगल है फॉरेस्ट, खुद जंगल। तो ये इन तीनों को लेके ये ऐसे एक कहानी एक ही, और बहुत आदिवासी है उसमें नेचुरली। तो अब उस पे एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे सुलझते हैं, ये भी एक मजे का बता सकती हूँ इस फिल्म को लेकर। कि हमने सोचा कि ये आदिवासी तो दिखाया है बड़े चाव से कि हाँ आदिवासी है, लेकिन अब कौन से आदिवासी। देर आर 300 आदिवासी ट्राइब्स इन इंडिया, भील या डागर या महादेव कोरी या वारली या कौन, मतलब इतने हैं, और उनकी भाषाएं अलग है थोड़ी सी, उनके रिवाज अलग है। तो क्या करे फिर, बहुत है। और गलत भी नहीं करना चाहिए, इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म यू कांट टेक लिबर्टीज विद एक्चुअल फैक्ट। फिर सोचा कि कह तो रहे कि ये परिकथा है बड़ों के लिए
0: जी,
1: तो व्हाई नॉट टेक लिबर्टी एंड हैव एन जेनेरिक ट्राइबल। यू ना भींड है, ना भील है, ना महादेव कोड़ी है, वो ट्राइबल है बस। एंड ट्राइबल्स हैव अ वेरी यूनिक कॉमन फैक्टर, दे आर ऑल वेरी इनोसेंट, दे आर ऑल वेरी बिलीविंग एंड दे आर ऑल वेरी स्केर्ड इनसिक्योर एंड दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल एंड वेरी लविंग। तो ये सब जो है, तो वो सब लेके हमने ट्राइबल्स तो बना दिए, और जंगल को भी जूटी पुटी का जंगल किया, मंतरबन नाम दिया जंगल को मंतरबन
0: जी।
1: और फिर भाषा, भाषा क्या करें, फिर ये सोचा कि एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले तो उनकी भाषा समझ में आती थी, बेशक अपने में अलग अलग हो, लेकिन समझ में इसलिए आती थी कि बहुत मराठी की झाग थी उसमें।
0: बिल्कुल,
1: मतलब मराठी को ही ट्विस्ट करके कुछ उन्होंने अपना बनाया था। तो हमने कहा हम भी क्यों नहीं ऐसा ही करें। तो हमने अपनी भाषा बनाई, और मेरे दो फैंटास्टिक असिस्टेंट्स, एक सुहेल अब्बासी,
0: अरे वाह,
1: और एक श्रीधर रंगायन, फैंटास्टिक दोनों, इतने मजे के। तो उन्होंने ये भाषा को लेके तो वो बहुत ही मतलब पगला गए, और उन्होंने फिर बहुत ये सब लिखा पढ़ी की, ये किया, उसका व्याकरण बनाया, और फिर वो तो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे, नहीं नहीं सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग नहीं है, पुलिस, अरे चुप कर यार, सही भाषा तो नहीं।
0: गजब गजब गजब,
1: इतना सीरियसली वो लेते थे, अरे नहीं वो गलत बोला गलत बोला, मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत बोला। तो एनीवे, तो बहुत मजा आता था वो सब, हम जंगल में वो किया, और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री ने दिया काफी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल, एंड इट हैड अ लॉन्च ऑन दिल्ली दूरदर्शन
0: जी।
1: तो वो जेब से गया नहीं, लेकिन फिल्म ने कमाया नहीं कुछ, और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कैसेट्स बिकती थी, बहुत कैसेट्स, तरह तरह के वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में, या फॉरेस्ट के शिक्षा केंद्रों में, या स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐसे बहुत कैसेट्स खरीदे लोगों ने
0: जी।
1: और द फिल्म वाज यूज्ड फॉर वर्कशॉप्स।
0: ये गाना सुनते
1: जी, क्या बात।

0: जीवन की नाटकीयता की एक मिसाल और है इस फिल्म से जुड़ी हुई, और वो ये है कि चुनाव में जिस व्यक्ति ने आपको हराया था।
1: यस यस।
0: मैं पूरी नहीं करूंगा ये बात, आप ही बताइए।
1: जब कॉलेज में मैं थी तो पहली बार मैंने जो एक प्ले डायरेक्ट किया, अंग्रेजी प्ले था डियर डिपार्टेड, विच वन द बेस्ट इंटर कॉलेजिएट प्राइज फॉर द बेस्ट प्ले। आई वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड आई ऑल्सो आई एक्टेड इन दैट प्ले, आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये हो गया। तो एनीवे तब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा दे यूज टू बी डिफरेंट इलेक्शंस इन द कॉलेज फॉर डिफरेंट पोस्ट्स, लाइक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, लेडीज रिप्रेजेंटेटिव, डिफरेंट आइटम कर। सो देयर वाज अ पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी एंटरटेनमेंट। सो आई सेड आई वांट टू स्टैंड फॉर दैट। तो लोग हक्का बक्का नहीं, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं कभी ये पोस्ट के लिए खड़ी। मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा कानून थोड़ा है कि लड़की नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए खड़ी रहो। मैंने कहा मुझे नहीं लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये दिस इज कंसर्निंग द वर्क दैट आई डू, प्लेज वगैरह। सो आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट एंड आई गॉट इलेक्टेड इन अ वेरी थम्पिंग मेजोरिटी। बहुत अजूबा था ना उन दिनों, लड़की खड़ी वगैरह वगैरह, और मेरा ये प्ले भी जीता था। तो ये हुआ। अच्छा, उससे एक बड़ी पोस्ट थी ड्रामा सेक्रेटरी। तो अगले साल मैंने कहा ड्रामा सेक्रेटरी के लिए
0: चुनाव लड़ा जाए,
1: तो वो नाम दिया। और अब पूरा मामला पलट गया, सब लड़के कहने लगे ये लड़कियां सर पे बैठ जाती है, जरा सा मौका दो तो अब ये ड्रामा सेक्रेटरी बनेगी। तो देन देयर वाज अ हवा चलती है ना, जैसे हवा चली कि इसको हराना है। तो मुझे अच्छी मेजोरिटी से हराया, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई मेरी। तो अब फ्लैश फॉरवर्ड, और ये हम इसका कर रहे थे, एंड मिनिस्ट्री हैड गिवन अस देयर ब्लेसिंग्स की करो फिल्म वगैरह,
0: पपीहा बनाओ।
1: और मैं फिर जंगल का सबसे कौन फॉरेस्ट ऑफिसर सबसे नंबर वन था माशेलकर, उनके पास पहुंच गई। तो बड़ा सीनियर सा आदमी और बहुत तमीज वाला वगैरह वगैरह, हमारे अच्छी बात हुई। फिर उन्होंने कहा पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं पहचाना। He said क्यों पहचानोगी? क्या? He said वो फर्ग्यूसन कॉलेज अबू कमंग साल हो, मी तुमच्या चरगात होतो, मैं आप ही के बैच में था, आप ही के क्लास में मैं। ओह, मैंने कहा। He said yes of course, and he said you were standing for the drama post, and he said someone forget his name stood opposite me who won. He said I was his number one supporter. So and we sought to it that you lost. So I said acha to ye hai wagera, fir badi hansi mazak ki baatein hui. He said acha to mujhe ab kuch papak shalan karna chahiye. I have to make up for that. So I said ha karo. He made everything possible. Wherever we went, we had the forest guest house to stay. We had a forest expert committee to guide us. We had a forest retinue, bodyguards, etc. We had jeeps. क्या नहीं बोलो, and permission everywhere. ताड़ोबा जाना है जाओ, संजय गांधी उद्यान जाओ, महाबलेश्वर जाना है जाओ, नागझीरा जाना है जाओ, you know. So we shot all over, fantastic, and it really went up very well.
0: क्या बात है!
1: It's sad that the film didn't. People have not seen it so much.
0: जी. अभी हाल ही में आपको जी गौरव अवार्ड मिला आपके नाट्य कर्म के लिए। आपने अभूतपूर्व काम किया है, अप्रतिम काम किया है। मुझे लगता है कि इस लंबी बातचीत के आखिर में कुछ बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण नाटकों की कर ली जाएं।
1: बात यह है यूनुस कि ये मेरे नाटकों के बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है, और क्यों नहीं आप वो पढ़ते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी। और अब मेरी ये जो किताब है, जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस पे लिखी है, तो वो अब हिंदी में छप रही है
0: जी। हाँ?
1: और वो पब्लिकेशंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छपी जाएगी। तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इनवाइट करती हूँ आपको कि आप उसमें पढ़ें, मैंने बहुत तफसील से लिखा है।
0: बिल्कुल। और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है ये मराठी में उपलब्ध है, और उसके अलावा ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है
1: जी,
0: और अब हिंदी वर्जन भी आ रहा है।
1: हाँ, मराठी में उसका नाम है सय, जो राजहंस प्रकाशन ने किया है। फिर अंग्रेजी हार्पर कॉलिंस की छपी है, इट्स कॉल्ड अ पैचवर्क क्विल्ट, पैचवर्क क्विल्ट, इसलिए कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के क्विल्ट बनाया जाता है ना सुंदर सा,
0: जी, जी।
1: तो मेरी माँ कहती थी हमेशा कि तुम एक चीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, आज नाटक, कल टेलीविजन, परसों फिल्म, हाँ ये 50 एक ना भर मारा भर चिंदिया, दैट मीन्स ना एक कुछ ठीक से करती है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर बैठती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये टुकड़े जोड़कर मैंने ये क्विल्ट बनाया है, ये पैचवर्क क्विल्ट। और अब ये हिंदी में जो छपरी है उसके दो टाइटल्स हैं, अभी पक्का नहीं तय हुआ, आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है। एक है सहनामा या सही नामा, और दूसरा है सही बात या सही बात।
0: क्या बात है, अब ये तो बड़ा मुश्किल है, हम अपने श्रोताओं से कहते हैं कि वो तय करेंगे।
1: लवली,
0: कि क्या नाम होगा।
1: आई लव टू हियर व्हाट दे फील, आई ट्रूली वुड, सिंसियरली, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।
0: जी सही जी, एक बात कहना चाहता हूँ।
1: जी,
0: आज से तकरीबन 20 बरस पहले मैंने बड़े डरते डरते आपसे फोन पर बात की थी और आपसे इंटरव्यू चाहा था। तब मैं बहुत नया था और तब भी आपसे डरता था, अब भी डरता हूँ।
1: तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे आप डरते रहिए, अच्छी बात है। ये अच्छा लगा कि कोई मुझसे डरता है।
0: जी, तो आपने कहा था कि इंटरव्यू करने का अभी मन नहीं है,
1: बर
0: आगे कभी बात करेंगे,
1: तो किए ना।
0: मुझे पता नहीं था,
1: वादा निभाया
0: कि 20 साल इस वादे में लग जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी लंबी बात इतने धीरज के साथ की, थोड़ी ज्यादती है इतने सारे सवाल कर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी, संपादन नेहा शर्मा।
3: देश का प्रसारण है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विगत दिनों दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो के महानिदेशक ने दिल्ली मेट्रो को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर की जा रही विद्युत आपूर्ति के लिए आभार जताया है।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्रा का तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल से शुभारंभ किया। कार्यक्रम में खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, वरिष्ठ विधायक और अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित विधायक, सांसद, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय जन शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान सभी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में आदिवासी समाज की संस्कृति, एकता और प्रकृति से जुड़ाव की तस्वीर देखने को मिल रही है। विभिन्न स्थानों पर रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबले में भारत की अश्मिता चालिहा ने चीन की हान छियानशी को धराकर खिताब अपने नाम कर लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे काकोरी कांड के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा विश्व आदिवासी दिवस एवं भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस। साथियों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय भारत छोड़ो आंदोलन पर। वार्ताकार है परशुराम शुक्ल बिरही। साथ ही क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं काकोरी कांड के बारे में। साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। यह घटना 9 अगस्त सन 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट हुई थी। इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार का धन प्राप्त कर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना तथा ब्रिटिश शासन को चुनौती देना था। इस घटना ने पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना को और अधिक प्रबल कर दिया था। दोस्तों, काकोरी कांड का नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल ने किया। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के युवा अंग्रेजी शासन के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए हर प्रकार का बलिदान देने को तैयार थे। दोस्तों, इसने देश भर के युवाओं में देशभक्ति, साहस और त्याग की भावना को बढ़ाया। साथ ही इस घटना ने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों को उजागर किया। काकोरी के वीरों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा मिली। दोस्तों, आइए अब चर्चा करते हैं क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय विश्व आदिवासी दिवस पर। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, संस्कृति, परंपराओं और उनके योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। आदिवासी समाज प्रकृति के सबसे निकट रहने वाला समुदाय है। उनकी जीवन शैली, रीति रिवाज, लोक कला और संस्कृति मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। इस दिवस के माध्यम से उनके सम्मान, विकास और अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, भारत में अनेक आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हिस्सा आदिवासी समुदायों का है। गौंड, भील, संथाल, उराव, मुंडा, बैगा, नागा जैसी अनेक जनजातियां देश के विभिन्न राज्यों में रहती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत में इनकी बड़ी आबादी निवास करती है। दोस्तों, आदिवासी समुदाय प्रकृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जंगलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते हैं। उनकी जीवन शैली पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चलने की सीख देती है। इसके अलावा उनकी लोक कला, लोकगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। दोस्तों, औषधीय पौधों और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनका ज्ञान आज भी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, भारत सरकार भी आदिवासी समुदाय के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित करती है। शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास और रोजगार संबंधी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान में भी अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी समाज के सम्मान, समानता और अधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
हमें उनकी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के समान अवसर प्राप्त हों। जब आदिवासी समुदाय सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त होगा, तभी हमारा देश वास्तविक अर्थों में समावेशी और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इसलिए विश्व आदिवासी दिवस हमें समानता, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश देता है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक और निर्णायक चरण था। इसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह दिवस हमें देशभक्ति, त्याग, साहस और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और गति प्रदान की। इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनता अब अंग्रेजी शासन को किसी भी स्थिति में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इससे ब्रिटिश सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव पड़ा। यद्यपि आंदोलन के तुरंत बाद स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव को कमजोर कर दिया था। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने का अवसर देता है। यह दिवस हमें अपने लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। आज के युवाओं का कर्तव्य है कि वे देश के विकास में ईमानदारी, अनुशासन और सेवा की भावना से योगदान दें। यही स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस आंदोलन ने पूरे देश को स्वतंत्रता के एक सूत्र में बांध दिया था। 9 अगस्त को मनाया जाने वाला भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस हमें यही याद दिलाता है कि स्वतंत्रता अनगिनत बलिदानों का परिणाम है। इसलिए हमें अपने देश की स्वतंत्रता, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। यही इस स्मृति दिवस का वास्तविक संदेश और उद्देश्य है। दोस्तों अभी समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय भारत छोड़ो आंदोलन पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है परशुराम शुक्ल बिरही।
1: भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विशेष स्थान है, क्योंकि इस आंदोलन के बाद ही भारत स्वाधीन हुआ था। अगस्त सन 1942 की 8 तारीख को महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा था, उद्धरण, मैं अगर
2: चार नंबर
1: तत्काल इसी रात प्रभात से पहले स्वाधीनता चाहता हूँ।
2: नाइस गई, नाइस गई,
1: झूठ
2: सही
1: का बोल,
2: नाइस कम हुई है।
1: आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं मंत्रिमंडल या दूसरी मांगों के लिए वायसराय से सौदा करने वाला नहीं हूं। मैं पूर्ण स्वाधीनता
2: से करो
1: किसी चीज से संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, आप इसे अपने दिलों में
2: संजो
1: कर और हर एक में इसका जाप करें। यह मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रखते जीवित नहीं रहेंगे। उद्धरण समाप्त। अभी सूरज की किरणें धरती तक नहीं आ पाई थी कि अंग्रेजों के अधिकार

0: अधिकारी और सिपाही सड़कों पर फैल गए। दिनांक 9 अगस्त को तड़के ही गांधी जी तथा दूसरे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अनजानी जगहों पर जेलों में बंद कर दिया गया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और जगह जगह गिरफ्तारियां होने लगी थीं। इन गिरफ्तारियों ने पूरे देश की जनता को सकते में डाल दिया और पूरे देश में एक स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। जनता का दबा हुआ गुस्सा भड़क उठा। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगी थी। पूरे देश में कारखानों में, स्कूलों और कॉलेजों में काम बंदी और हड़तालें हुईं, उग्र प्रदर्शन हुए। आंदोलनकारी जनता पर अंग्रेजी सरकार के लोगों ने लाठी चार्ज किया और गोलियां चलाई। बार बार की गोलीबारी और अंग्रेजों के दमन चक्र से पीड़ित जनता का क्रोध उबल पड़ा और उसने अनेक स्थानों पर हिंसक कार्यवाहियां की। जनता ने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों आदि अंग्रेजों के शासन के तमाम प्रतीकों पर आक्रमण किए। उन्होंने टेलीफोन के तार काट दिए, खंभे गिरा दिए, रेलवे लाइन उखाड़ दी और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। अनेक जगहों पर शहरों, कस्बों, गांवों में विद्रोहियों का अस्थायी शासन भी हुआ। संयुक्त प्रांत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश राज्य लुप्त हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के मिदनापुर जिले में, तामलुक और बम्बई या मुंबई के सतारा जिले जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार भी बना ली थी। इन सारी विद्रोहात्मक कार्यवाहियों में आमतौर पर विद्यार्थी, किसान, मजदूर और साधारण नागरिक भागीदार थे। उच्च वर्गीय लोग मूक दर्शक बने रहे थे। अपवाद स्वरूप कुछ उच्च वर्गीय अवश्य इस आंदोलन में शामिल हुए थे। सरकार ने अपनी ओर से भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। उसके द्वारा किए गए दमन की कोई सीमा नहीं थी। अखबारों और प्रेस का पूरी तरह गला घोंट दिया गया था। प्रदर्शन कर रही भीड़ पर मशीन गनों से गोलियां बरसाई गई थीं। कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी गई थीं। चारों ओर खुफिया पुलिस और पुलिस दिखाई देती थी। अनेक नगरों और कस्बों को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। पुलिस और सेना द्वारा की गई गोलीबारी से 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। विद्रोही माने गए गांवों को जुर्माने के रूप में भारी भारी रकमें देनी पड़ी थीं। सन 1857 के विद्रोह के बाद जैसा दमन हुआ था, वैसा ही दमन अंग्रेजों की सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का पूरी तरह दमन कर दिया गया था। देश की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि पर विचार करें तो सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व इस बात में था कि इसने यह सिद्ध किया कि देश की राष्ट्रवादी भावनाएं किस गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी थीं और देश की जनता संघर्ष और बलिदान की कितनी क्षमता प्राप्त कर चुकी थी। इस क्षमता को अंग्रेज कुछ कुछ समझने भी लगे थे। देश की जनशक्ति जाग चुकी थी। राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने वाले उसके कवि अपनी कविताओं द्वारा जनता का साहस बढ़ा रहे थे। सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता की पंक्तियां इस दृष्टि से दोहराना योग्य है। महाप्रलय होने दे निष्ठुर, कर विनाश की तैयारी, सर्वनाश हो पराधीनता, यों ही भारत की सारी, बढ़े चलो बढ़े चलो, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं, डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। ऐसी कविताओं से जनता का मनोबल स्थिर बना हुआ था। उसकी मानसिकता में अंग्रेजों के शासन के प्रति विरोध की उग्रता बनी हुई थी। ऐसे वातावरण में सन 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसकी चपेट में सैकड़ों लोग मारे गए, किंतु ब्रिटिश सरकार ने कोई सहायता कार्य नहीं किया। नेता अब भी जेलों में बंद थे। जनता के गुस्से को पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं मिल पा रही थी। समय ने जनता को राहत दी। समय की शक्ति के सामने किसी की नहीं चलती। बड़े बड़े आक्रमणकारी, सम्राट, धनाढ्य, विद्वान, तपस्वी आदि समय के एक इशारे पर अस्तित्वहीन हो जाते हैं। समय अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ तो उसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः सन 1942 की भारत छोड़ो मांग को विजय मिली। दिनकर की ये पंक्तियां याद आती हैं। जनता की रोके राह किसी में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। दो साथ समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अंग्रेजों को इस देश से जाना पड़ा और इसे स्वतंत्र करना पड़ा, किंतु जाते जाते अंग्रेज देश को दो भागों में बांट गए। आज हम एक संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हमारा प्रजातंत्र संसार का सबसे विशाल प्रजातंत्र है। हम 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुए थे, अतः प्रतिवर्ष इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय भारत छोड़ो आंदोलन पर। वार्ताकार थे परशुराम शुक्ल बिरही। साथियों, अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में। हमारे आज के विषय संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है पर चर्चा करने का। दोस्तों, मनुष्य की उन्नति का आधार उसकी सोच होती है। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व और भविष्य बनता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक, उदार और व्यापक होगी तो हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसके विपरीत संकीर्ण मानसिकता व्यक्ति को सीमित विचारों में बांध देती है और उसके विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। इसलिए कहा जाता है संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है। दोस्तों, संकीर्ण मानसिकता का अर्थ है सीमित, पक्षपातपूर्ण और रूढ़िवादी सोच रखना। ऐसा व्यक्ति केवल अपने विचारों को ही सही मानता है और दूसरों के विचारों, संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान नहीं करता। वह जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है। इस प्रकार की सोच व्यक्ति को नए विचारों और परिवर्तनों को स्वीकार करने से रोकती है। दोस्तों, संकीर्ण मानसिकता सबसे पहले व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करती है। जो व्यक्ति नई बातें सीखने और नए अनुभवों को अपनाने से डरता है, वह समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाता। साथियों, संकीर्ण मानसिकता समाज में भेदभाव और आपसी संघर्ष को जन्म देती है। जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं इसी सोच का परिणाम है। जब लोग एक दूसरे को समान सम्मान नहीं देते, तब समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत उदार और व्यापक सोच समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव को बढ़ावा देती है। दोस्तों, संकीर्ण मानसिकता को दूर करने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच और सहिष्णुता का विकास करती है। परिवार और विद्यालयों को बच्चों में समानता, सहयोग और मानवता के संस्कार विकसित करने चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए और नए अनुभवों को अपनाना भी हमारी सोच को व्यापक बनाता है। साथियों, संकीर्ण मानसिकता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाना है।

तो हमें संकीर्ण विचारों का त्याग करना होगा। हमें सभी लोगों के प्रति समान सम्मान, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। व्यापक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण और मानवता के मूल्यों को अपनाकर ही हम अपने तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकते हैं। यही एक प्रगतिशील, समृद्ध और विकसित समाज की पहचान होती है। दोस्तों, आइए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है आपसे विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको बता दें, इस वक्त आप अपने रेडियो सेट पर ट्यून किए हुए हैं अपना मनपसंद रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर। हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं।

0: नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है,
1: मैं सागर हूँ।
0: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
2: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
0: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
3: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
4: और नासिर का
0: नमस्कार। सागर का हर चौराहा, हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी।
5: सागर खड़ा है बदलाव की राह में। मैं गोपाल सागर के स्वरूप के परिवर्तन का साक्षी हूँ। जहाँ पहले सागर में बहुत सारी समस्याएं होती थी, रोड को लेकर, सुरक्षा को लेकर, पानी को लेकर, अब सागर का स्वरूप बदल चुका है। पहले की अपेक्षा सागर में बहुत परिवर्तन आ चुका है। जहाँ पहले रोडों का हाल बेहाल हुआ करता था, अब काफ़ी सुधार हो गया है। पहले जहां रोड सकरे हुआ करते थे, अब रोडों का चौड़ीकरण करवा दिया गया है, जिससे कि आवागमन आसान हो गया है। और रेलवे फाटक पर जहां लोग पहले घंटों इंतज़ार किया करते थे निकलने के लिए, जिसमें समय और ईंधन दोनों का नुकसान होता था, अब सागर में बहुत रेलवे फाटक के ऊपर बहुत जगह ब्रिजेस बनाए गए हैं, जो सागर की विकास की परिकल्पना का दर्शाते हैं। नालियों का गहरीकरण किया गया है। विकास के इसी क्रम में नालियों को एक विशेष तरीके से, नए तरीके से बनाया गया है, जिससे कि पानी के भराव की समस्या खत्म हो गई है। सागर में अब पानी के लिए जहां पहले बहुत समस्या होती थी, सागर में पानी के लिए पुरानी लाइन को हटा करके नई लाइन बिछाई गई है, जिससे कि पानी की समस्या का एहसास नहीं होता है। राजघाट बांध को गहरीकरण के लिए भी आगे बात की जा रही है, जिससे कि पानी की समस्या कभी ना आए। लोग पहले जहां कचरे से बहुत परेशान हुआ करते थे, जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते थे, उस समस्या का समाधान करने के लिए परिवर्तन की धारा में सागर में कचरा गाड़ी की व्यवस्था हुई है, जिससे कि एक सही समय पर और सही जगह पर कचरा प्रबंधन हो। सागर में कचरा प्रबंधन के लिए शहर से दूर अलग अलग यूनिट स्थापित की गई हैं, जिससे कि कचरे का सही तरीके से रिसाइकल हो के उपयोग हो के स्वच्छता में सहयोग मिल सके और हम स्वच्छता के क्षेत्र में अपने कदम को बढ़ा सकें, और जिससे कि सागर स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़े। अब सागर में परिवर्तन के क्रम में सुरक्षा के हिसाब से

0: श्रृंगार किया हो। इसी क्रम को संवारने के लिए सागर में अनेक परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें लाखा बंजारा झील, जो प्राकृतिक तौर पर शहर की आत्मा कहा जाता है, झील कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिससे जो शहर की सुंदरता में चार चांद लगाता है। यहाँ लोग सुबह और शाम घूमने के लिए आते हैं, जो अत्यंत घूमने के लिए मनोरम स्थान बन गया है। प्रकृति के साथ साथ सागर ने सांस्कृतिक मूल्यों को संवारने का भी काम किया है, जो हमारे पुरानी धरोहर थी, मंदिर और बावड़ी और अनेक प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर जो थी, उनको संवारने का काम भी सागर ने किया है। इनमें प्रमुखता से वृंदावन मंदिर, जो झील के पास स्थित है, इसकी झलक दूर से ही देखने को मिलती है। और प्रादत्त जो हमारी बावड़ियां हैं पहले की, उनको भी संवारा गया है, जिसमें नागेश्वर मंदिर के पास की बावड़ी और लक्ष्मीपुरा की बावड़ी भी प्रमुख है। आज सागर अपने विकास को लेके आगे बढ़ रहा है और सांस्कृतिक और प्राकृतिक मूल्यों के साथ अपनी गाथा लिखने के लिए तैयार खड़ा है।
1: सागर की प्रशंसा करते ये आवाज़ मनीष जाटव की।

0: दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है। इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
1: और नासिर को।
0: नमस्कार।
1: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
0: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
2: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
0: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
1: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.6 MHz पर। शाम के 5:40 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है गीत, गजल और कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता।

0: बरसात की भीगी रातों में फिर कोई कहानी याद आई, कुछ अपना फसाना याद आया, कुछ उनकी कहानी याद आई। ये कव्वाली थी हनीफ आगरेवाला कव्वाल और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में। इस कव्वाली को लिखा था कतील शिफाई ने और संगीतबद्ध किया था खुद हनीफ आगरेवाला कव्वाल ने।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र FM 102.6 MHz पर। लीजिए कार्यक्रम संगीत सरिता को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं ये गजल तलत अजीज की आवाज में। शायर एक बार फिर कतील शिफाई और संगीत खुद तलत अजीज का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफ एम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं गीत गजल कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता। और आइए इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं मिताली की आवाज में ये गीत। इस गीत को लिखा है नसीम अजमेरी ने और संगीतबद्ध किया है भूपेंद्र सिंह ने।

और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफ एम 102.6 MHz पर, शाम के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में हम मुंबई केंद्र से रिले करेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हर घर तिरंगा, आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इससे पहले गृह मंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया, ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना जिसे हमने लिया है फिल्म आवारगी से। इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत अनु मलिक का है।

0: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

शुदा ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, ये है आकाशवाणी सागर। और हम आपको बता दें, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सदाबहार गीत।

कार्यक्रम सदाबहार गीत में अभी आपने ये पहला जो नगमा सुना ये आवाज़ थी मुकेश की और फिल्म का नाम था सबक। और हम आपको बता दें इस गीत को लिखा था सावन कुमार ने और संगीतबद्ध किया था उषा खन्ना ने। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र एफ एम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत। और हम आपको बता दें न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी आप आकाशवाणी सागर का लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। और आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में काली घटा फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी ने इसके लफ्ज़ चुने हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओ, ये आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत का। और आइए इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत बरसात की रात फिल्म से। आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी की, गीत साहिर का और संगीत रोशन का।

यदि आप अपनी घड़ियां हमारे स्टूडियो टाइम से ट्यून करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:45 हुए हैं और अब वक्त है बुंदेली लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग का।

0: कार्यक्रम लोकरंग की ये पहली प्रस्तुति, ये वर्षा गीत अभी आपने सुना, आवाज थी काशीराम अहिरवार की।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर। और आइए कार्यक्रम लोक रंग को आगे बढ़ाते हैं और ये कजरी हम आपको सुनवाते हैं। आवाज है भगवान सिंह ठाकुर की।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और लीजिए कार्यक्रम लोक रंग के अंत में हम आपको सुनवाते हैं एक बार फिर ये वर्षा गीत। इसे आवाज दी है इंद्रपाल विश्वकर्मा ने।

और श्रोता इसी वर्षा गीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 2 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग, वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुद्दुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। इससे पहले गृहमंत्री पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी के मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया, ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई दुर्घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलटों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाई सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है आपकी खिदमत में कार्यक्रम विवरण। आइए श्रोताओं, सबसे पहले कार्यक्रम विवरण के तहत हम आपको बता दें हमारे केंद्र से कल दिनभर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह की सभा में सुबह 6:05 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ होगा सुबह कल 6:30 पर। इसमें हम आपको कल 75वां भाग सुनवाएंगे। गायक स्वर होगा मिताली बी सिंह का। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा सुबह 6:40 पर। सुबह सुबह कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:00। कार्यक्रम कृषि संगीत आप सुनेंगे कल सुबह 7:05 पर। श्रोताओं की पसंद के फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत में सुबह 7:20 पर। गीत गजल और कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा सुबह 7:45 पर। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत होगा कल सुबह 8:15 पर। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम बिंदिया आप सुन सकते हैं कल सुबह 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। फोन करें लोकगीत सुने ये फोन इन कार्यक्रम आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा कल सुबह 10:05 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा कल सुबह 11:00। कार्यक्रम विवाणी होगा भोपाल केंद्र से रिले कल शाम 5:02 पर। संगीत सरिता कार्यक्रम का लुत्फ लिया जा सकता है कल शाम 5:30 पर। कल शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सदाबहार गीत। लोक रंग कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल शाम 6:45 पर और शाम 7:20 पर।

कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे कल शाम 7:30 पर। संसद समीक्षा दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8:00। चित्रपट संगीत कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर। संगीत सरिता कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा कल रात 8:30 पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के पसंद के फिल्मी गीत सुनवाएंगे रात्रि 9:00। रात्रि 10:00 दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। और आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। रात्रि 8:00 भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे सुर्खियों में आकाशवाणी मध्य प्रदेश। भोपाल केंद्र से ही रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम होगा डगर विकास की, विषय होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये आकाशवाणी छतरपुर का योगदान होगा। कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आप कुछ फिल्मी गीत सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम मनचाहे गीत में श्रोता अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं रात्रि 9:00। और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM 102.6 MHz पर। हम आपको बता दें श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न होता है। हम आपको बताना चाहेंगे इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
4: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुद्धू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
7: कूल रहो।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से 4 नई हवाई सेवाओं की शुरुआत की। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में रैलियों और पौधारोपण के जरिए संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय, दतिया, रीवा और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम

0: की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत तिरंगा रैलियों, यात्राओं, संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक वंदे भारत मातरम गायन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगा लेकर स्टेडियम के लिए रवाना हुए। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, वरिष्ठ नागरिक और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने और अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रदेश में आज 4 नई सीधी हवाई सेवाओं की शुरुआत हुई। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से रीवा, भोपाल से पटना, रीवा से कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता उड़ानों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आने वाले समय में करीब 10 नए एयरपोर्ट भी विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भोपाल से शारजहा की सीधी उड़ान शुरू होने वाली है।
1: 2 महीने बाद शारजा की उड़ान यहाँ से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी। अब हमको दिल्ली मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक की आकांक्षा पूरी हो सके। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम और CM हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। मुख्य सचिव ने खराब ट्रांसफार्मर, हैंडपंप, 108 एम्बुलेंस सेवा और विद्यालयों से ड्रॉप आउट बच्चों से संबंधित शिकायतों का भी प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की सेवाओं और योजनाओं का लाभ आम जन तक आसानी से पहुंचना चाहिए। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए करीब 50 बिंदु निर्धारित किए गए हैं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़कर आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का सशक्त अभियान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश में आदिवासी समाज की संस्कृति, एकता और प्रकृति से जुड़ाव की तस्वीर देखने को मिली। ग्वालियर में आदिवासी संगठनों ने विशाल रैली निकालकर शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और संस्कृति संरक्षण का संदेश दिया। रैली में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक नृत्य किया। इंदौर में भी आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। वहीं बुरहानपुर के पीपल गांव में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा और सिंचाई की जिम्मेदारी भी ग्रामीणों ने ली। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झाबुआ, धार, खरगोन सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार जिले के बदनावर में आज हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस करीब 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार की खिड़की का कांच तोड़कर अंदर से शवों को बाहर निकाला। धार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर गुजरात लौट रहे श्रद्धालुओं की इको वैन को गलत दिशा से आ रहे कंटेनर ट्रक

0: ने टक्कर मार दी।
1: बदनावर में एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई। प्रथम जानकारी जो प्राप्त हुई उसके अनुसार एक परिवार दाहोद का रहने वाला था जो उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करके लौट रहा था, उसी दौरान रॉन्ग साइड से आने वाले कंटेनर के द्वारा उसको सामने से टक्कर मारी गई। इसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई, एक घायल है, हॉस्पिटलाइज है, उसकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। और प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली उसमें कंटेनर का जो ड्राइवर था उसके द्वारा एल्कोहलिक होना पाया गया है। इसमें उसकी एमएलसी कराई जाएगी और उसमें गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसतन 17.2 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20% कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 और पश्चिमी हिस्से में 18% बारिश की कमी दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्र छात्राओं की भी ऑनलाइन हाजिरी के लिए आदेश जारी किए हैं। नर्मदापुरम जिले में नागद्वारी की यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और मेला समिति ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और यातायात की व्यवस्था की है। आगरमालवा में श्रावण माह के द्वितीय सोमवार पर कल 51,000 कलश यात्रा निकाली जाएगी। और नीमच में नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा वीर पार्क रोड स्थित दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से 4 नई हवाई सेवाओं की शुरुआत की। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में रैलियों और पौधारोपण के जरिए संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, दतिया, रीवा और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण में नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर लीजिए। अब सुनिएगा खेती गृहस्थी पर आधारित कार्यक्रम।

0: ग्राम सभा से जुड़ा हमारे तमाम किसान श्रोता भैया बिन्नहरों को खूब ही खूब स्वागत कर रहे हैं आज की ग्राम सभा में। भैया रो अपनी ग्राम सभा में अपन खेती किसानी पशुपालन बागवानी की चर्चा तो लेके आते ही हैं, संगे संगे जो दिन दिवस खास रहते हैं, जो महापुरुषों की जन्म जयंती या पुण्यतिथि रहते हैं, तो उनके व्यक्तित्व पे भी अपन चर्चा कर रहे थे, संगे ही संगे आपके मनोरंजन को भी ध्यान रखो जाते हैं। भैया रो आज की अपनी ग्राम सभा में अपन एक वर्षा गीत सुने नत्थू सिंह और संगी साथियों को गाओ भाव, एक लोक भजन काशीराम चौरसिया को गाओ भाव। भैया रो जैसी कि हमने बताई अपने एक कार्यक्रम में अपन जानकारी आप सभी भैयारों को लेके आते हैं, जानकारी वार्ता भेंट वार्ताओं के रूप में रहते, तो आज अपन एक भेंट वार्ता में सुने बसकारी के मौसम में अपने पशुधन की कैसी का देख रेख राखी जाए ई विषय की जानकारी और जानकारी आप सभी जनों को ग्राम सभा में दें डॉक्टर नीलेश शाह उप संचालक पशुपालन विभाग सागर और इनसे बतकाव कर हैं अपने रज्जू भैया। भैया रो ग्राम सभा में मंडी भाव और मौसम की जानकारी तो रहना ही है, तो आज की ग्राम सभा की अपन शुरुआत करते हैं अपनी आपस की चर्चा से। भैया रो आज काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी वर्षगांठ कहानी, काकोरी क्रांति भैया हरो 9 अगस्त 1925 को शुरू भई। काकोरी ट्रेन एक्शन ने देश की आज़ादी में एक नई क्रांति को जन्म दो, जी में भैया हरो अंग्रेज सरकार के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक नई क्रांति शुरू भई। आज ये घटना की वर्षगांठ कहानी सो हम सभी जने काकोरी ट्रेन एक्शन में जो अपने अमर शहीद रहे हैं उनको सत सत नमन करत हैं। भैया रो एक और ऐतिहासिक घटना आज के दिन से जुड़ी है, सन 1942 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भई। पराधीनता के खिलाफ छेड़े गए ये आंदोलन में पूरे देशवासियों ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। भैया रो देश की आज़ादी के लाने अपनो सबई कछु अर्पण करवे बारे सबई अमर सही देखो आज अपन ये दिवस पे सादर नमन करते हैं। किसान भैया रो अब आ रहे हैं अपन अपनी किसानी की चर्चा में। ग्राम सभा में हर रोज आपको तमाम विषयों की खेती किसानी पशुपालन बागवानी को भत्काओ जो है वो मिलने कहाओ। भैया रो बरसात शुरू हो गई और आज तो खास तौर पे अपने सागर जिले में जो है पहली बार ऐसो लगू है कि एक झला तगड़ो सो गिरु है, तो ऐसे में हम बरसात में अपने इन पशुओं दुधारू पशुओं की कैसी का देख रेख राख सकत हैं, उनको कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे उनको बचाव करने का हो, ये विषय की चर्चा अपन कर रहे हैं। भैया रो हम किसान भैया हैं, किसानी के संगे संगे पशुपालन में हर ऋतु में अलग अलग तरह की बीमारियां देखत कहानी और इन बीमारियों को देखत भय हमें सचेत भी रहने पड़त है। भैया रो समय पे अपने पशुधन की अच्छी देख रेख करने के कई फायदे हैं, जैसे हम समय पे अगर अपने इन पशुओं को टीकाकरण करा लेवें तो इनको कई रोगों से बचा सकते हैं। किसान भैया हरो रोग बीमारी होवे की स्थिति में पशु में दूध उत्पादन क्षमता तो घटता ही है, संगे संगे उकी आगे वाली नस्ल भी खासी प्रभावित हो जात कहानी, तो अपन को माने सचेत रहने हैं, तो सचेत रहे भी सबसे पहले तो बरसात शुरू हुए की पहल जो है अपन को तमाम रोग बीमारियों से बचाव के लाने इनको टीकाकरण कराने। किसान भैया रो बसकारी में खास तौर पे गलघोंटू लंगड़ा बुखार मुँह पका खुरपका जैसी बीमारियां जो है ज़्यादा अपने इन पशुधन में देखी गई हैं, जा तो अपन सभी जने जानत हैं, बहुत हद तक तो हमारे किसान भैया ने समय रहते टीकाकरण करा लेते हैं, मगर ऐसी स्थिति में कि अगर मान लो हम टीकाकरण नहीं करा पाए और हमारा पशुधन जो है इन बीमारियों से ग्रसित हो गए तो उनके लक्षण देखवो बहुत जरूरी है ताकि हम बीमारी की पहचान कर सकें और लगे हाथ पशु चिकित्सक को दिखा के हम अपने पशुधन को सुरक्षित रख सकें। भैया रो गलघोंटू एक जीवाणु से होवे वाली बीमारी कहानी, ये मैं अपने पशु को तेज बुखार आते गले में सूजन होते और सांस लेवे में पशुओं को खासी दिक्कत आने लगत, माने उनको हाँपी तरह की चलन लगत है। ये बीमारी से बचाव को सबसे कारगर तरीका है जैसी कि हमने शुरू ही में कई टीकाकरण करावो, मानो अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिख रहे हैं अपने पशु में तो अपने पशु चिकित्सक से अपन को तुरंत परामर्श लेने, तुरंत अपने पशु को दिखाने और उनको उपचार लेने। भैया रो समय से कराओगा उपचार निश्चित रूप से हमारे पशु को गलघोंटू से बचा सकते हैं। किसान भैया रो ए सीजन में खुरपका और मुंहपका की बीमारी भी एक आम बीमारी है, जो ज़्यादातर यही समय देखी जात है। जा भी भैया रो एक विषाणु जनित बीमारी है। इमें अपने पशुओं के खुरों में और मुंह में जो है फपोला टाइप के आ जाते हैं और एक कारण से अपनो पशु जो है दाना और पानी के प्रति रुचि कम दिखाते हैं, यानी खान पानों को दो ही प्रभावित रीत है, ना तो वो सही तरीके से चारा पानी ले पाता है और ना पानी पीवे में उसकी रुचि रीत है। ये बीमारी में समय रहत भाई इलाज बहुत जरूरी है। स्थिति बिगड़ने पे अपने पशु की मृत्यु तक ये बीमारी से हो सकत है। सो सबसे पहले तो अपन को अबे भी समय नहीं निकलू है, बरसात शुरू हुई है, ये बीमारी के प्रति पशु को बचावे टीकाकरण करा लेने और कोई भी प्रकार के लक्षण दिखवे पे हमें अपने पशु चिकित्सक से तत्काल संपर्क करने अच्छो उपचार कराने कहा। संगे संगे भैया रो बसकारी में अपने पशुओं में खुरों में गलन या सड़न जैसी बीमारी भी आम रहत है और उको प्रमुख कारण यही है कि अगर हमने अपनी पशुशाला में अपने पशु की लाने अच्छी व्यवस्था न रखी, खास तौर पे साफ सफाई की, तो यह दिक्कत आ सकत है। चर्चा अपन इस विषय पे आगे भी जारी रखें अपनी ग्राम सभा में। मनो पहल सुनत हैं जो एक संदेश।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना,
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
0: ग्राम सभा में अपन चर्चा कर रहे हैं किसान भैया रो बसकारी के मौसम में अपने पशुधन में होवे वाली बीमारी, उनके बचाव और अपनी पशुशाला की कैसी का देख रेख रख रखाव रखने कहा। भैया रो हम आपको बता रहे थे कि बसकारी के सीजन में अपने पशुओं में खुरों में गलन या सड़न जैसी बीमारी भी आम रहते है। उको सबसे बड़ो कारण जो रहते है कि अगर अपना पशु जो है लंबे समय तक ऐसी जगह ऐसी गौशाला में पांव जमाए रहो, पांव राखे रहो जहां पानी ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जो है उनके खुरों में जो है सड़न या गलन जैसी स्थिति बन जाते। तो सबसे पहले तो अपन को ध्यान रखने अपने पशु को बरसात में सूखे स्थान पर बांधने कहा हो। संगे संगे गौशाला की नियमित सफाई बसकारी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ आपको ऐसो लग रहा है कि पानी लगातार गिर रहा है, तो पानी को बहाव जो है तत्काल बंद करने कहा। पशुशाला सूखी रहे, नमी कम से कम रहे, ऐसे प्रबंध अपन को अपनी पशुशाला में रखने हैं ताकि अपन ये समस्या से भी अपने पशुधन को भैया रो बचा सकें। किसान भैया रो इन बीमारियों के बचाव को सबसे अच्छा तरीका को तो टीकाकरण कहा हुई। संगे संगे हम अगर अच्छी देख रेख अपने पशुधन की इस सीजन में रखें तो निश्चित रूप से अपने इन दुधारू पशुओं को ना केवल स्वस्थ रखें, अच्छो दूध उत्पादन भी ले सकते हैं और सुरक्षित भी रख सकते हैं। किसान भैया रो अब अपन अपनी ग्राम सभा में पहुंच रहे हैं मनोरंजन की तरफ। एक बहुत ही प्यारो सो वर्षा गीत नत्थू सिंह और संगी साथियों को गाओ भाव अपन सुनते हैं।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल खिल जाए। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: भैयारो, ग्राम सभा में एक बार फिर आप सभी जनों को खूब खूब स्वागत है। आज अपन चर्चा कर रहे हैं बस कार्य में अपने पशुधन की कैसी का देखरेख रखी जाए। भैयारो, तमाम देखरेख में खान पान भी अपने पशुधन को एरित में कछु अलग ही प्रकार की व्यवस्थाएं रखने पड़त है। अलग प्रकार की अपन को कछु चीज़ों को ध्यान रखने पड़त है। भैयारो, बस कार्य में हरे चारे की बहुत ज़्यादा उपलब्धता रहत है। यदि हरो चारा हम अपने पशुओं को अधिक मात्रा में खिला दें तो उनके भी बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे उनके पेट खराब होने की समस्या भी आम है। तो हम किसान भैयारों को हरे चारे को सूखे भूसा में मिला के ही पशुओं को खिलाओ चाहिए। भैयारो, वर्षा ऋतु में पशुओं के लाने सूखे भूसा की कमी न हो, ये बात की भी अपन को ध्यान रखने, और वर्षा शुरू होने की पहले बसकारी की पहले ही पर्याप्त मात्रा में हम किसान भैयारे सूखे भूसा को पर्याप्त प्रबंध करके रखते हैं, भंडारण करके रखते हैं। भैयारो, अपने पशुओं को अत्यधिक मात्रा में हरो चारो नहीं खिलाने, ये बात को अपन को खास ध्यान रखना हो। खासतौर पर सीधो हरो चारो खुआबे से उनको बचाने। अगर ऐसी कोई समस्या अपने पशु में दिख रही है, पेट संबंधी दिक्कत बसकारी में दिख रही है, तो पशु चिकित्सक से अपन को तत्काल जो है मशवरा सलाह लेके और अपने पशुधन की देखरेख करने का आई। भैयारो, इस सीजन में मक्खी और मच्छरों की भी दिक्कत अपने गौशालाओं के आसपास देखने में मिली है। जहां अपनी सारे राहत हैं वहां

0: महत्वपूर्ण जानकारी।
1: भैया हरो, समय समय पे हम अपने स्टूडियो में विशेषज्ञों को बुला के आप औरों को नई नई और उपयोगी जानकारी दुआउत रहते हैं। तो आज यही क्रम में हमने आमंत्रित करो है डॉक्टर नीलेश शाह जी केला ने, जो उप संचालक पशुपालन विभाग सागर हैं, और आपसे हम चर्चा कर रहे हैं बरसात में पशुओं की देखभाल के बारे में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है, और जा बताएं कि हमारे पशुपालक भैया बिना आ रहे हैं, बरसात में पशुओं की देखभाल कैसे करें?
2: जी बिल्कुल, तो कुछ प्रारंभिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए बारिश होने के पूर्व या बारिश जब स्टार्ट ही मतलब चालू ही हुई है जब के लिए। तो सर्वप्रथम तो कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जिनका टीकाकरण बारिश के पूर्व करवा लेना चाहिए। दो बीमारियां हैं, एक होती है घटरूंदा या गलघोंटू, जिसको इंग्लिश में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं, जिसमें गले में सूजन हो जाती है, पशुओं को निमोनिया हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और पशु की मृत्यु भी हो सकती है
1: जी।
2: दूसरी बीमारी है एकटंगिया या चुरका, इंग्लिश में जिसे ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं, इसमें पशु लंगड़ा के चलता है, तेज बुखार आता है, मांसपेशियों में सूजन आ जाती है और इसमें भी पशु की मृत्यु हो सकती है। तो हमें बारिश पूर्व इस बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों बीमारियों का पशुओं को टीकाकरण कराएं, और ये हर साल हमें कराना रहता है। और इसमें हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 6 महीने से ऊपर जो भी पशु हैं उनमें इन दोनों बीमारियों का टीकाकरण होना चाहिए। आप चाहें तो अलग अलग टीका द्रव्य भी उपलब्ध होते हैं और संयुक्त टीका भी इसका उपलब्ध होता है, दोनों बीमारियां साथ में कवर हो जाती हैं। और अगर और अच्छा चाहते हैं तो एक बीमारी होती है मुखरी, जिसको फूड एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, तो इसका टीका भी इन दोनों बीमारियों के टीके के साथ लगता है। तो इससे हमें ये फायदा रहता है कि 3 बीमारियों का एक साथ टीका हम लगवा के पशुओं को 3 बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं। तो पहली बात तो हो गई पशुओं का टीकाकरण, हमें बारिश पूर्व कौन कौन सी बीमारियों का कराना है। दूसरा, जैसे कि बारिश के मौसम में पशु का जो शेड रहता है, थोड़ा हमें उसका भी व्यवस्थित तरीके से रख रखाव करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो छत है शेड की, वहाँ से पानी लीकेज ना हो रहा हो और प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा प्रॉपर उसमें आ जा रही हो, ताकि वहाँ पर वेंटिलेशन जितना अच्छा रहेगा उतने पशु स्वस्थ रहेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि पानी का भराव ना हो शेड में, क्योंकि कई बार बारिश होती है तो पानी का भराव हो जाता है, जिसके कारण से दूसरे जो इंसेक्ट हैं, जैसे कि दूसरे इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं या और दूसरे वाले इंसेक्ट, और जो कई बीमारियों के वाहक भी होते हैं वो पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शेड में कहीं भी पानी का भराव ना हो
1: जी।
2: एक और महत्वपूर्ण बात कि पशुओं का जहाँ दाना रखा जाता है उस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर ज़्यादा नमी ना हो, क्योंकि अगर नमी होगी तो पशु आहार में या पशु दाने में फफूंद लग सकती है, फंगस आ सकती है, जो कि पशुओं के लिए नुकसानदायक होती है। तो हमें सूखा हुआ उसको आहार उपलब्ध कराना है। और एक और बात कि बारिश के मौसम में हरे चारे की बहुत अधिक उपलब्धता रहती है, और खासकर जो पशु चरने जाते हैं तो कई बार वो अत्यधिक हरा चारा का सेवन कर लेते हैं, जिससे कि उनको अफरा की प्रॉब्लम होने लगती है या ब्लॉट जिसको बोलते हैं उसकी समस्या होने लगती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पशु हरा चारा बहुत अधिक क्वांटिटी में ना खाए, और हरे चारे के साथ साथ भूसा और दाना भी दें। ऐसा ना करें कि हरा चारा बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो केवल हरा चारा दें। इससे होता क्या है कि पशु में दूसरी पाचन संबंधी समस्या होने लगती है, तो हरे चारे के साथ साथ भूसा और दाना भी आवश्यक रूप से दें
1: जी। डॉक्टर साहब, देखो जाते हैं कि बरसात में पशुओं के लाने परजीवियों की समस्या भी बहुत बढ़ जाते हैं, और इसे उनको दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित होते हैं। तो परजीवियों के नियंत्रण के लाने पशुपालक भैया बिना रहे का करें, ये बारे में भी कछु जानकारी देवे।
2: जी बिल्कुल, बारिश के समय में जैसे कि पशुओं में आंतरिक परजीवी हैं या बाह्य परजीवी हैं, दोनों की संभावना बढ़ जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि एक मेडिसिन आती है आइवरमेक्टिन, जो कि आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों पर असर करती है। तो आइवरमेक्टिन हम पशुओं को नियमित अंतराल से दें, 3 से 4 महीने के अंतर से, जिससे कि क्या होगा, पशुओं में आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी का नियंत्रण

0: नियंत्रण हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर शेड में मच्छर मक्खी या किल्ली जिसको टिक्स बोलते हैं ये हो रही हैं तो कुछ इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, साइपरमेथ्रिन है, परमेथ्रिन है, जिसका अगर हम छिड़काव करेंगे तो जो परजीवी हैं इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और शेड में हम अगर नीम के पत्ते का धुआं करते हैं या और अन्य कोई धुआं करते हैं तो उससे भी मच्छर मक्खियों को नियंत्रित किया जा सकता है
1: जी। और बरसात में पशुओं में कई प्रकार के संक्रामक रोग भी देखने में मिलते हैं, तो अगर जैसा कोई पशु कोनो संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाते तो फिर पशुपालक भैया बिना रखो का करो चाहिए?
0: अब इसमें तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने टीकाकरण करा रखा है पशुओं का तो कम से कम उन बीमारियों से तो बचाव हो ही सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका टीका उपलब्ध नहीं है या सामान्य जो इन्फेक्शन है जैसे कि मनुष्यों में वायरल जिसको हम बोलते हैं, इसी तरीके से पशुओं में भी दूसरे इन्फेक्शन होते हैं और जो मौसमी होते हैं, तो इसके लिए तो हमें विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि जिस प्रवृत्ति का इन्फेक्शन है उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा डॉक्टर से ही परामर्श लेना पड़ेगी। बाकी ये है कि पशुओं को नियमित खान पान अगर उनका व्यवस्थित है, उसको आप हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं और हरे चारे के साथ साथ मिनरल मिक्सचर है और फीड सप्लीमेंट जैसे कि कैल्शियम हो गया ये आप देंगे तो इससे पशु की इम्यूनिटी ठीक होगी और इम्यूनिटी अच्छी होने से पशुओं को हम विभिन्न रोगों से बचाव कर पाएंगे। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक संक्रमण हो गया है तो उसके लिए तो हमें फिर पशु चिकित्सक के परामर्श से ही पशुओं का उपचार कराना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब, बरसात में कई प्रकार के जहरीले कीड़ा भी देख भी मिलते हैं, तो पशुओं को इनसे बचाव के भी कछु तरीका बताएं जिससे इनके लाने नुकसान ना हुए।
0: जी बिल्कुल, इसका वही मैंने कहा है कि हमें थोड़ा सा शेड का व्यवस्थित तरीके से रख रखाव ऐसा करना चाहिए कि जो इस तरीके के जहरीले कीड़े हैं वो पशुओं के शेड में प्रवेश ना कर पाए
1: जी।
0: और थोड़ा सा उसमें हमें विशेष ध्यान ही देना पड़ेगा कि आसपास साफ सफाई रहे, गंदगी ना रहे, छुपने वाले स्थान ना रहे कि ऐसे कचड़ा पड़ा हुआ है या कुछ ऐसी सामग्री पड़ी है जिसमें ये जहरीले कीड़े छुप जाते हैं। तो अगर आप शेड को साफ सफाई रखते हैं, बाहर भी ऐसा ना हो कि कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, साफ सफाई रखेंगे तो जहरीले कीड़े प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी पशु को काट ही खाया है तो उसमें तो आपको किसी विशेषज्ञ के परामर्श से ही उपचार लेना पड़ेगा
1: जी। डॉक्टर साहब, बरसात में कीचड़ और बाढ़ की समस्या भी एक सामान्य समस्या है, तो इनसे पशुओं को बचावे के लाने पशुपालक भैयारों को का व्यवस्था करो चाहिए?
0: जैसा कि आपने पूछा, बाढ़ की स्थिति में हम पशुओं को कैसे बचा सकते हैं या उन उस संबंध में हम क्या सावधानी रख सकते हैं, तो हमें थोड़ा इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कि जहाँ पर बाढ़ आती है या पानी का मतलब पानी का लेवल एकदम से बढ़ता है तो ऐसे स्थानों पर हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पशुओं को बांध के ना रखें। होता क्या है कि जब भी कभी बाढ़ आती है तो मनुष्य तो अपने आप इधर सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन पशु अगर बंधा हुआ है तो वो फिर सुरक्षित स्थान पर जाने में असमर्थ रहेगा और वहाँ अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो फिर पानी में डूबने से पशु की मृत्यु हो सकती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिन क्षेत्रों में पानी का लेवल बढ़ता है या बाढ़ बार बार आती है तो बारिश के समय पशुओं को बांध के ना रखें। दूसरी बात, बाढ़ के समय एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पानी रहता है वो चारों तरफ का दूषित पानी रहता है, तो ऐसे समय में पशुओं को दूषित पानी पीने से रोकें क्योंकि दूषित पानी पीने से पशुओं को दूसरे संक्रमण होने की संभावना रहती है। तो इस परिस्थिति में हम पशुओं को हैंडपम्प का है या बोरिंग का है या कुएं का पानी है जो कि दूषित नहीं होता है वो दे सकते हैं, बाकी जो बहता हुआ पानी है जो कि गंदा पानी है वो हमें वो वाला पानी पशुओं को उपलब्ध नहीं कराना है। इसके साथ साथ जहाँ बाढ़ आ रही है या बहुत अधिक बारिश हो रही है तो कुछ दिनों तक वहाँ का जो हरा चारा रहता है उसमें भी विभिन्न गंदगी इकट्ठी हो जाती है, विभिन्न प्रकार के संक्रमण होने की संभावना रहती है, तो कुछ दिनों के लिए पशुओं को बाहर का हरा चारा खाने से रोकें। जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तो पशुओं को भूसा है या साफ सुथरा हरा चारा है या दाना है वो हम उपलब्ध करा सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, कई बार जानवर सिंचित चारा क्षेत्रों में चरवे से विषाक्त चारे के शिकार हो जाते हैं, कैसे लंबी गर्मी के बाद मानसून की शुरुआत के कारण चारा में

0: अचानक वृद्धि होते और इसे जहरीले साइनाइड की समस्या सामने आउत है, तो इसे बचावे के लाने पशुपालक भैया रहे का करें, खासतौर से ज्वार की फसल में जो देखो जाता
1: है पॉइजनिंग होती है
0: जी।
1: कि अर्ली स्टेज की जो ज्वार रहती है उसमें अगर अधिक मात्रा में पशु उसका चारा खा ले तो पॉइजनिंग होने की संभावना रहती है। तो हमें तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ चारा लगा है ऐसा, तो उसकी फेंसिंग रहे या बाड़ा रहे कि पशु वहाँ पर ना पहुँच पाए। और दूसरा, वो जब मैच्योर हो रहा है चारा उसके बाद ही वो उपलब्ध कराया जाए। और अगर पशु ने खा ही लिया है तो उसकी पॉइजनिंग के लिए फिर बहुत स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, तो उसके लिए तो फिर हमें कोई विशेषज्ञ पशु चिकित्सक से परामर्श लेके वो उसकी पॉइजनिंग का हमको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा
0: जी। और इस बचबे को जो उपाय भी हो सकता है डॉक्टर साहब कि अपन घर पे ही पशु को बांध के चराएं और संगे संगे निगरानी भी रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है कि अगर आप स्टॉल फीडिंग करा रहे हैं या बांध के करा फीडिंग करा रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है, और खासकर बारिश के समय में, क्योंकि बाहर आपने जैसा बताया कि कई प्रकार के विषाक्त चारा रहते हैं, या विषाक्त चारा नहीं भी है तो हरा चारा अत्यधिक मात्रा में रहता है और पशु उसको खा लेता है अधिक मात्रा में, तो उसको दूसरी पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कि अफरा है, ब्लॉट है, या और दूसरी इनडाइजेशन की समस्या है वो हो जाती है। तो अगर आप बांध कर खिला पा रहे हैं तो वो एक आदर्श स्थिति रहती है।
0: डॉक्टर साहब जाओ और बताएं कि पशुओं में आहार प्रबंधन की अपन बात करें तो बरसात के दिनों में कौन से समय पशु को आहार दो चाहिए और पानी दो चाहिए?
1: देखिए, आहार तो हमारे यहाँ जो सामान्य तौर पर प्रैक्टिस है कि दिन में 2 से 3 बार ही आहार, 2 ही बार दिया जाता है
0: जी।
1: वो तो जो बहुत अधिक दूध देते हैं पशु उनके लिए 3 बार है, तो सुबह शाम पशुओं को आहार हमें देना है। इसमें आप मान के चलिए कम से कम 5 से 6 किलो तो भूसा देना आवश्यक रहता है पशु को, मतलब चाहे कोई भी पशु हो, दूध देने वाला हो या ना भी दूध दे रहा है, कम से कम 5 से 6 किलो हमें भूसा देना है, 25 से 30 किलो हरा चारा देना है, और जो दाना देते हैं जिसको हम पशु आहार बोलते हैं, आप मान के चलिए 1.5 से 2 किलो पशु आहार तो पशु के रखरखाव के लिए लगता है
0: जी।
1: और उसके बाद अगर दूध दे रहा है पशु तो 0.5 किलो दाना लगभग 1 लीटर दूध के लिए पर्याप्त होता है। उदाहरण दूं, अगर कोई गाय या भैंस 6 लीटर दूध दे रही है तो 3 किलो दाना तो उसका दूध के लिए होगा, 1.5 से 2 किलो दाना रखरखाव के लिए होगा, तो लगभग 4.5 से 5 किलो दाना देना है, 25 से 30 किलो हरा चारा देंगे, और इसके अलावा 5 से 6 किलो भूसा देंगे, ये 2 बार में देना है। और अगर आप पशु आहार में अगर आप सानी बना के दे पा रहे हैं तो वो और भी अच्छा है। और 1-2 बातों का और विशेष ध्यान रखना है कि 25 से 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर हम पर डे दें उनको, पशुओं को, ताकि उनकी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। और साथ में नमक भी पशुओं को आवश्यक होता है, तो जो दाना तैयार करते हैं तो उसमें नमक का भी समावेश करें, ताकि इनको जो मिनरल्स हैं उसकी पूर्ति पशुओं को हो सके।
0: तो बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल के लाने पशुओं को सूखे और हवादार स्थान पर रखें, उन्हें स्वच्छ पानी और संतुलित भोजन देवें, और परजीवी और बीमारियों से बचावे के लाने टीकाकरण और डीवर्मिंग करवाएं। तो डॉक्टर साहब आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे पशुपालक भैया बिनारों के लाने बरसात में पशुओं की देखभाल के बारे में इतनी उम्दा जानकारी दी, एक लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भैयारो, आज की अपनी ग्राम सभा में अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने पशु दुधारू पशुओं की बसकारी में देखरेख से जुड़ी भाई सुन दई। कार्यक्रम में भैयारो एक बार फिर पहुंच रहे हैं अपन मनोरंजन की तरफ और सुन रहे हैं एक बहुत ही प्यारो सो देवी गीत काशी राम चौरसिया को गाओ भाओ।

भैया जो बहुत ही प्यारो सो देवी गीत अपन ने अपने कार्यक्रम में सुन लो, काशी राम चौरसिया को गाओ भाव। आज की अपनी ग्राम सभा में अपन ने चर्चा करी बसकारी के सीजन में अपने पशुधन की कैसी का देखरेख रखने हैं ये विषय की, और संगे ही संगे अपन ने एक बहुत उपयोगी भेंट वार्ता में भी तमाम जानकारी विस्तार से सुन रही। निश्चित रूप से आप किसान भैया रहे ये सीजन में अपने इन पशुओं को अच्छी तरह से देख रेख रखो, कैसों का रख रखाव रखने, इन बातों को ध्यान रखो। भैया रो अब अगर बात करें किसानी की, तो खरीफ सीजन में सब्जियों की खेती करने वाले हमारे किसान भैयारों के लाने अपने जो कृषि के वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह जाए कि जो समय भैयारों बहुत उपयुक्त है, बसकारी में जो किसान भैया रहे सब्जी लगाओ चाहते हैं, तो इस समय कद्दू, टमाटर, हरी मिर्च, भटा, अगेती, फूल गोभी, भिंडी, करेला, लौकी, इन सब सब्जियों की बुआई या पौध तैयार करने को कार्य जो है वो शुरू कर जा सकते है। भैया रो संगे ही संगे

0: ज़्यादा अवधि के लाने उन्नत किस्मों को चयन करने, वैज्ञानिक तौर तरीकों की अपन को अमल में ले आने और संगे संगे विशेषज्ञों की सलाह लेके अगर अपन इस सीजन की साग सब्जियों की बोनी करें तो निश्चित रूप से अच्छो लाभ हमें प्राप्त हो सकत है। भैया रो अब कार्यक्रम में समय हो गया है जानकारी को। जानकारी में सबसे पहले आपको बता रहे हैं मौसम को हाल। आज को अधिकतम तापमान रहो 26.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहो। न्यूनतम तापमान रहो 22.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहो। नमी की अगर बात करें तो 98% नमी जो है वह दर्ज करी गई। भैया रो नाज मंडी में कल यानी 8 तारीख दिन शनिवार के प्रमुख नाजों के भाव हम आपको बता रहे हैं। गेहूं कल नाज मंडी में 2400 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहो। सोयाबीन 4500 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहो। मसूर 4500 रुपये से 8900 रुपये प्रति क्विंटल रही। चना कल नाज मंडी में 4600 रुपये से 6100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहो। सरसों 6100 से 7400 रुपये प्रति क्विंटल, बटरी 2900 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग 6200 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल। और भैया रो अब आज की ग्राम सभा हो गई तई संपन्न। सभी जनों को जय राम जी की।
1: ग्राम सभा, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बजने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: आगामी 15 अगस्त को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ हुआ और 17 अगस्त तक इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के तहत करोड़ों भारतवासी हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता दर्शाने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को गर्व और उल्लास से फहराएंगे। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान और भी खास है क्योंकि वह हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। हर घर तिरंगा 2026 अभियान के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
4: नमस्कार
3: अशोक जी। सरकार ने 2022 में हर घर तिरंगा के तहत जो हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर या अपने कार्यालय पर फहराने का जो अधिकार दिया है, उसे आप कितना महत्वपूर्ण समावेशी पहल मानते हैं और भावनात्मक रूप में ये कैसे सभी भारतवासियों को जोड़ता है?
4: जैसे आपने कहा कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को चलाया था और लोगों से आह्वान भी किया था, और इस बार भी अगर मैं कहूं तो 26 जुलाई 2026 को जो प्रसारित मन की बात के 136वें एपिसोड में भी प्रधानमंत्री ने फिर से भारतवासियों को, भारतवंशी जो विदेश में रहते हैं उन सबको स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को फिर से इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया था। और उन्होंने कहा था कि ये तिरंगा हमारे संविधान के आदर्शों को संजोए हुए है और ये देश को एकजुट करता है। तो इस आह्वान का अर्थ यही था कि लोगों को याद कराना कि जब इस बार 9 अगस्त आज से और 17 अगस्त तक ये जो हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस वर्ष अपने घरों पर तिरंगा फहराने और उत्सव को भव्य बनाने की अपील भी की थी कि लोगों से तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर करके और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलने का आग्रह प्रधानमंत्री हर साल करते हैं। तो इस बार की कुछ विशेषताएं जिनकी ओर आपने भी ध्यान दिला वो ये हैं कि ये अभियान राष्ट्रव्यापी जो है 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा और इसको जैसे आपने भी कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ भी इसको जोड़कर इस बार मनाया जाएगा। तो गीत के बोल और धुन हमारी तस्वीर पर खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, ये एक विशेष फीचर इस बार है। कुल मिलाकर जो 9 दिन ये चलेगा और उसकी जो सूत्रधार होते हैं वो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री जो होती है वो इसका अभियान करती है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू इस बार जोड़ा गया है।
3: इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी तिरंगा के आसपास प्लान की गई है, यात्राज, रैलीज, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस और क्विज भी है। सो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अभियान का जब शुभारंभ किया तो उन्होंने नागरिकों से इन गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने का भी आह्वान दिया। सो आपको लगता है इससे एक जागरूकता फैलेगी सब नागरिकों में, जो अतीत का हमारा गौरव है, वर्तमान की जो कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता है और भविष्य के सपनों का जो एक प्रतीक बना है तिरंगा, उसके बारे में ज्यादा जागरूकता फैलेगी?
4: कि देश के हर जिले और ब्लॉक में स्तर पर स्थानीय सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें युवाओं, जेंजी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का एक तरह से मौका मिलेगा। और इस बार इस बात का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि झंडा फहराने के दौरान और अभियान खत्म होने के बाद तक झंडे को उतारते समय जो है हमको कई नियमों का पालन करना होगा। और इसीलिए जब हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहते हैं तो इसका मुख्य देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के जो अवसर पर प्रत्येक नागरिक जो है वो इसमें उसका जुड़ाव हो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल इस बार की गई है कि उसका नाम रखा गया है सूर्य पथ तिरंगा। यानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक अनोखी एक पहल शुरू की जा रही है। दुनिया के 54 देशों में मौजूद जो भारतीय दूतावास या हाई कमीशन हैं या कॉन्सुलेट हैं, वो उगते सूरज की दिशा के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर एक के बाद एक तिरंगा फहराएंगे। यानी जो हमारा पूर्व में सबसे फिजी देश है, वहां पर जो हमारा एम्बेसी है, वो झंडा फहराने की शुरुआत करेगी। और जो जो सूर्य आगे बढ़ेगा तो सैन फ्रांसिस्को में जो अमेरिका का बिल्कुल पश्चिमी शोर है, वहां पर सूर्य अस्त के समय तक ये झंडा फहराया जाएगा। तो ये एक हमारा जो डायस्पोरा है उनको साथ जोड़ने की भी बात है, और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो दुनिया भर के देशों को भी एक संदेश देना की कोशिश होगी कि जो हमारे देश में स्वतंत्रता का दिवस है उसको हम कितने ढंग से मनाते हैं, और उसका एक हिस्सा हमारा बन गया हर घर तिरंगा। हमारे जो लोग जैसे संस्कृति मंत्रालय है उसका जो पोर्टल है उस पर पहली बार एक तकनीकी टूल को जोड़ा गया है। देश के नागरिक राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सही धुन में गाने के लिए उनको ऑनलाइन ट्यूटोरियल दिए गए हैं और वोकल गाइडेंस दिया गया है कि आपको राष्ट्रगीत सचमुच में ठीक ढंग से कैसे गाना चाहिए। तो इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर अब दिल्ली, कलकत्ता और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों में मौन जुलूस निकाले जाते हैं, क्योंकि इसको विभाजन की त्रासदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी स्क्रीन की जाती हैं, क्योंकि अब ये केवल दो ही इसके महत्व नहीं है, यानी हर घर तिरंगा हो और वंदे मातरम हो, साथ में जो विभाजन की विभीषिका थी
0: जी,
4: उसको भी लोगों तक पहुंचाकर कैसे जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ और उसमें से कैसी विभीषिका हुई, उसको भी इस बार से कुछ सालों से ये लोगों के साथ नई पौध के साथ नई जनरेशन के साथ उसको जोड़ने की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम साथ में लिया गया है। तो ये लोगों की सक्रिय भागीदारी करना, उनके साथ उनको ये पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ हम लोग क्यों करते हैं। हमारी नई पीढ़ी जो है उसको ये जानकारी रहनी चाहिए कि कितनी कठिनाइयों के बाद भारत ने स्वतंत्रता हासिल की थी, कितने लोगों ने बलिदान दिया था, और कैसे विभाजन के दौरान एक बड़ी भारी विभीषिका हुई जिसमें लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी।
3: पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे भी मनाया जा रहा है 14 अगस्त को, ताकि प्रेरणा मिले कि हम किस संघर्ष और बलिदान से आजादी हमने प्राप्त की है उसका मूल्य हम समझें। तो आपको लगता है इससे प्रेरणा मिलेगी सब नागरिकों को, खासकर युवाओं को, कि राष्ट्र निर्माण में यथा योग्य जितना भी कर सकें योगदान करें और अलगाववाद से बचें?
4: बिल्कुल, देखिए पहले के कई दशकों तक ना तो कभी तिरंगा का महत्व समझाया गया था हमारी पीढ़ी को स्वतंत्रता के बाद,

0: और ना ही कोई जो विभाजन की विभीषिका है उसके बारे में बताया गया था। नई जनरेशन को मालूम ही नहीं था कि कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और वो किस किस तरह के बलिदान थे, उसमें भगत सिंह की बात आती है, लेकिन ये जो विभीषिका हुई पार्टीशन की इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। अब कुछ वर्षों से इसके बारे, इसलिए उसकी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, उसकी फीचर फिल्म बन रही हैं और लगातार एक अभियान के तहत इन सारी चीजों को नई पौध को, नई जनरेशन को अगर हम बताते रहेंगे तो उनको भी और वो भी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम और ये आयोजन जो अभियान है ये सचमुच में अब एक जन आंदोलन बन चुका है। इसमें प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट, रिलीजियस, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको इसके साथ में भागीदारी करनी चाहिए और तभी ये जो हमारा अभियान है ये और ज्यादा तेजी से लोगों की समझ में आएगा।
1: बिल्कुल। सो अशोक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जन भागीदारी ऑलरेडी ये बन चुका है, लेकिन और भी ज्यादा से ज्यादा इसमें लोगों को आगे आना चाहिए। आपको लगता है कि इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी भी आती है कि जो हमें आजादी हमें मिली है इतनी मुश्किल से, उसको हमें संभाल के रखना है और हमें अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाना है। और जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसा आपने कहा स्वतंत्रता सेनानी या जो आंदोलनकारी रहे जिनके संघर्ष से हमें आजादी मिली, उनके अलावा जो वर्तमान सशस्त्र बल है जो रक्षा करते हैं हमारी, उनके प्रति भी एक आदर भाव सम्मान जागता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद बलिदान हुए हैं वो युद्ध में, लड़ाइयों में हमारे जो वीर सैनिक जवान, उन्होंने जो शहादत दी है उसको भी याद करने का यही अवसर होता है। और इसीलिए ये जो हर घर तिरंगा है ये केवल आजादी के परवानों की याद नहीं दिलाता, बल्कि उसके बाद आजादी को बनाए रखने में इन वीर सेनानियों जो इसमें बलिदान होता है, जो शहीद होते हैं और लगातार आतंकवाद से लड़ते हुए भी शहीद होते हैं, तो उनके प्रति भी श्रद्धांजलि का एक प्रतीक बनता है। और इसीलिए हर घर तिरंगा के साथ साथ जो इसके साथ वंदे मातरम को जोड़ा गया है, क्योंकि वंदे मातरम भी स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत प्रोत्साहित करता था और एक जोश भरता था, और उसके साथ राष्ट्रीय गान के साथ जैसे उसको अब जोड़ दिया गया है, तो इससे हमारे सेनानियों को भी एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो जो पहरेदारी कर रहे हैं वो देश को एक सुरक्षित रखने के लिए, और हम लोग भी अपने घरों में रात को इसीलिए सो पाते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये हमारे जवानों के प्रति भी एक श्रद्धांजलि का बहुत बड़ा अवसर है।
1: सो अशोक जी, एक सामूहिक पहचान है हम सभी की, प्रत्येक भारतवासी के लिए तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रध्वज दोनों एक कहें कि ड्यूअल सेलिब्रेशन है। और अगर हम देखें कोई भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है या खेल आयोजित होते हैं तो हरेक देश जो उनका ध्वज है और उनका राष्ट्रीय गीत है वो बहुत महत्व रखता है। सो उस संदर्भ में भी एक अपनी पहचान बनाने के लिए और पूरा जो हमारा विविध देश है, इतना बड़ा देश है, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है?
0: बिल्कुल, देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब हम बात करते हैं तो उसमें वो जो एक भारत है तो उसमें एकता बहुत आवश्यक है। तो जितनी भी देश में विविधता है उनके रहते हुए भी अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये जो एक मंत्र है और ये भारत के हर क्षेत्र को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे दक्षिण राज्य हो, इन सबको एक माला में पिरोए रखता है। और इसी तरह भाषा और जाति और धर्म, इन सब को मिलाकर रखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए देशभक्ति की भावना जगाने का लिए जो प्रतीक है वो राष्ट्रीय ध्वज ही है, तो उसके प्रति सम्मान को अगर हम और गहरा करेंगे, उसके साथ हम राष्ट्र गीत के साथ राष्ट्र गान को भी हम बढ़ावा देंगे, तो कोई कारण नहीं है कि ये जो अभियान है ये पूरे देश और समाज को एक सूत्र में पिरोने में और अधिक योगदान करेगा।
1: अशोक जी, पहले तो बहुत ही फॉर्मल और ऑफिशियल ही लहराया जाता था हमारा ध्वज, लेकिन अब जिस तरह से सब नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हुआ है, जैसा आपने भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जो ध्वज है उसकी गरिमा और उसको लहराने के कुछ नियम, अगर आप संक्षेप में जो प्रमुख गाइडलाइंस है वो बता सके।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अपने घरों, निजी प्रतिष्ठानों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराएंगे, और इसको फहराते समय जो एक ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, यानी फ्लैग कोड जो है उसमें भी बदलाव किया गया है, यानी अब यदि झंडा खुले आसमान में हो या किसी घर पर हो तो उसे दिन और रात 24 घंटे

0: पाया जा सकता है। पहले ऐसे माना जाता था कि दिन में फहराकर उसको जो है रात को उतार लिया जाए, तो ये अभी बदलाव किया गया है कि नागरिक जो है वो आधिकारिक जो वेबसाइट पर डिजिटल रूप से भी अपना झंडा पिन कर सकते हैं, तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर सकते हैं और उससे उनको भागीदारी का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, वो भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें इसमें जोड़ी गई है और मैं समझता हूँ कि जो ये अभियान है ये नागरिकों के दिलों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को और ज्यादा गहरा करेगा और जागरूकता बढ़ाएगा, विशेष तौर से नई पीढ़ी के मन में, क्योंकि उनको जब तक हम लगातार अपने देश की विविधता को भुलाकर सभी में राष्ट्रीय गौरव एक साझा प्रतीक के रूप में एकजुट करेंगे नहीं, तो कोई कारण नहीं है कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो इससे वंचित रहे। इसलिए उनको जोड़ के रखने के लिए ये आयोजन और ये अभियान बहुत ही आवश्यक है और उसी तरफ देश अब चल भी रहा है।
1: अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर घर तिरंगा अभियान 2026 के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। प्रस्तुति है आकाशवाणी छतरपुर की। विषय है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।

0: डगर विकास की कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को उनके सपनों तक पहुँचाया जा रहा है। श्रोताओं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में कैसे हमारे युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, इस योजना में क्या बेहतर रूप से काम किए जा रहे हैं, इस संबंध में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 के क्रियान्वयन और प्रशिक्षण के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं सैड मैप के जिला समन्वयक श्री एम के श्रीवास।
1: डीडीयू बाई के एक महत्वाकांक्षी स्वरोजगार उन्मूलन योजना है कौशल विकास की दिशा में। इसमें ग्रामीण और शहरी युवाओं को कौशल दक्ष बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें 18 से 35 वर्ष के आयु को युवाओं को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से मुख्यतः शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जिसमें योग्यता शिक्षा के आधार पर उनके कौशल को अलग अलग तरह से दक्ष प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही उन्हें NSDC के माध्यम से उनको सर्टिफाइड भी किया जाता है और इसके लिए शासन अलग अलग तरह से ट्रेड के अनुसार उनको आर्थिक सहायता भी देती है और दक्ष युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी करती है। विभिन्न स्वरोजगार योजना है जिनमें स्वरोजगार के लिए प्रकरण बनाकर उनको शासन की वित्तीय सहायता भी दिलाते हैं तथा कुछ इंटर्नशिप स्कीम है उसके माध्यम से भी उसमें लिंक करने का प्रयास करते हैं और विभिन्न तरह के कौशल के माध्यम से लोगों के हुनर को सृजन करके उनके हुनर को परिष्कृत करके आज के वर्तमान परिवेश में दक्ष करने का प्रयास किया जाता है।
2: सर, इस योजना में जो हितग्राही होते हैं प्रशिक्षण उपरांत उनको जो रोजगार से जोड़ते हैं स्वरोजगार से, उसके लिए क्या पात्रता होती है ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए? क्या कुछ उनके पास अर्हता होनी चाहिए या कोई डिप्लोमा सर्टिफाइड होना चाहिए?
1: इसमें डिप्लोमा सर्टिफाई की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रामीण युवाओं जो खासतौर से गरीब तबके के जो लोग हैं उस श्रेणी में आना चाहिए, खासतौर से BPL के लोगों को। BPL नहीं है तो खाद्यान्न पर्ची की पात्र हितग्राहियों को, कुल मिला के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए स्कीम है और इसमें शिक्षा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। शिक्षा व्यक्ति के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार शिक्षा है और व्यक्ति की शिक्षा के अनुसार अलग अलग प्रकार के ट्रेडें हैं। साक्षर हैं तब भी, 5वीं पास हैं तब भी, 10वीं पास हैं तब भी, 12वीं पास हैं तब भी आप इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। नगर पालिका और जनपद पंचायतों के माध्यम से अपने आवेदन पंजीयन करा सकते हैं वहाँ से और इसमें अनेक लोगों ने लाभ लिया है, अपने हुनर प्राप्त किए हैं।
2: सर, हम ये भी जानना चाहेंगे इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
1: इसका प्रमुख उद्देश्य है युवाओं को वर्तमान परिवेश के अनुसार हुनर में दक्ष करना, ताकि बच्चे अपने कौशल के बारे में आत्मनिर्भर बने और रोजगार स्वरोजगार के लिए दक्ष होकर रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त करें।
2: हमारे युवा भाई बहनों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, वो इस योजना का लाभ लें, क्या कहेंगे?
1: योजना के लिए मैं भाई बहनों से कहना चाहूंगा, यदि आपको जीवन में कुछ करना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में एक हुनर को अपना दोस्त साथी बनाएं। हुनर ही व्यक्ति का सबसे सच्चा मित्र होता है और हुनर को परिष्कृत करने के लिए योजना बहुत महत्वपूर्ण है और दक्ष है, जो आपको हुनर से रोजगार और स्वरोजगार दे सकती है। तो इस योजना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और एक हुनर कम से कम अपन को धारण करके उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
0: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 ग्रामीण युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से गांव-गांव तक भारत सरकार पहुंच रही है और युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही इस योजना में और भी महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़ा जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 और इस योजना के क्रियान्वयन में भारत सरकार के और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है और प्लेसमेंट किस तरह से होता है, इस योजना के संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं आप शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शासकीय ITI छतरपुर के प्राचार्य श्री RS जादौन।
3: ITI जनरली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के ट्रेड हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे खुद के संस्थान में 8 ट्रेड हैं और पूरे जिले में 8 ट्रेड ऐसे चल रहे हैं जो कि जनरली हमारे यहाँ भी चल रहे हैं। एक एक्स्ट्रा ट्रेड चंदला में चल रहा है, REC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। चूंकि यहाँ पे पूरे छतरपुर जिले में 5 गवर्नमेंट ITI हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ट्रेड हैं और कहीं 6 ट्रेड हैं, कहीं 7 ट्रेड हैं, वर्तमान में 2 जगह एक एक ट्रेड भी है। और जो कंपनी में एक ऑपरेटर होता है जो कि इंजीनियर के नीचे होता है, तो उसके लिए क्या होता है, कंपनी जो भी मशीनरी ऑपरेशन हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ और विभिन्न प्रकार के, जैसे भी आज का प्रेजेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन आती हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए विभिन्न लोगों की जरूरत होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कंप्यूटर सेक्टर है, डिफरेंट टाइप के सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सब में एक मैन फोर्स की जरूरत होती है जो कि स्किल्ड हो। जनरली 3 टाइप के लोग पाए जाते हैं, एक अनस्किल्ड होते हैं, एक सेमी स्किल्ड होते हैं और एक स्किल्ड होते हैं। हम लोग अनस्किल्ड को सेमी स्किल्ड बनाने का कार्य करते हैं और उसके बाद जब बच्चा ट्रेंड होके और OJT कर लेता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग कर लेता है, तो उसको स्किल्ड पर्सन मानने लगते हैं। अगर हम बात करें विभिन्न ट्रेडों की, तो यहाँ पे हमारे यहाँ कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो ट्रेड है हमारे यहाँ, उसमें हम पाइथन लैंग्वेज हुआ और AI से रिलेटेड टूल्स हुए और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी देते हैं, जिसमें उनको विभिन्न प्रकार की कंपनियों में उनका प्लेसमेंट होता है। और जहाँ पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो टूल इक्विपमेंट हैं उनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, मशीनरी जैसे लेथ मशीन हुई, हाइड्रोलिक हुई, न्यूमेटिक हुई, इन मशीन की जानकारी दी जाती है। हम कोशिश करते हैं कि CNC DNC मशीन की भी जानकारी उनको दी जाए। अगर सब अच्छा रहा इस साल तो हमारा ये भी विचार है कि बच्चे को कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर जैसे AutoCAD जैसे सॉफ्टवेयर, इनकी भी जानकारी हम उस ट्रेड में देना चाहेंगे। उसके बाद सर, जो हमारे यहाँ पे एक ट्रेड है वेल्डर, जहाँ हम विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग के बारे में बताते हैं। तो वेल्डिंग में जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग हुई, आर्क वेल्डिंग हुई, टिक वेल्डिंग हुई, मिग वेल्डिंग हुई, ऐसे बहुत सारे स्टेंस वेल्डिंग हुई, इन सारी वेल्डिंग्स के बारे में हम उनको बताते हैं बच्चों को, और जो मैकेनिकल रिलेटेड टूल इक्विपमेंट है उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देते हैं।
0: अब हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि ग्रामीण युवाओं में कौशल को बढ़ावा देना ये माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण इच्छा रही है, उस पर काम भी हो रहा है युवाओं के लिए, खासकर ग्रामीण युवाओं के लिए, ताकि उन्हें आगे उनका काम मिल पाए और स्वरोजगार से वो जुड़ पाए।
3: हमने अपने यहाँ पे एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को ओपन कर रखी हुई है। उसमें क्या है कि बच्चों को स्वरोजगार रोजगार दोनों के बारे में बताया जाता है। जरूरी नहीं कि वो बच्चा हमारे यहाँ का हो, वो कहीं का हो, पूरे जिले में कहीं का बच्चा आए, तो हम उसको स्वरोजगार की भी जानकारी देते हैं कि प्रेजेंट में यहाँ पे हमारे क्षेत्र में ये चीज अवेलेबल है, आप इसमें इतना कर सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ आते हैं, जितने भी ट्रेड हैं, वो ग्रामीण के लिए भी बराबर से खुले हुए हैं, सारे बच्चे एक जैसे हैं, सारे बच्चों की एजुकेशन लगभग एक सी रहती है। ऐसी योजनाएं बना के गवर्नमेंट बच्चों लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। जो युवा पीढ़ी आ रही है वो भविष्य में मतलब एक भारत निर्माण, भारत के एक विकसित निर्माण के लिए कार्यरत हो। 2047 का एक लक्ष्य रखा गया है कि विकसित भारत बने, तो वो ऐसे ही बनेगा जिसमें बच्चा स्वरोजगार और रोजगार दोनों से कंटिन्यू जुड़ता जाएगा योजनाओं के थ्रू।
0: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.2 हमारे ग्रामीण और शहरी युवाओं को एक बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। इस योजना और योजना से जुड़े हुए प्लेसमेंट में रोजगार कार्यालयों की क्या भूमिका है, इस संबंध में हमें बताते हुए आप हैं छतरपुर के जिला रोजगार अधिकारी श्री SK Jain।
4: शासन के द्वारा जो भी रोजगारी योजनाएं हैं या स्वरोजगारी योजनाएं हैं, इनको एकीकृत एक छत के नीचे लाने, बच्चे को एक ही टाइम पर सभी अवसर सभी जानकारी मिल सके, इसके लिए एक युवा संगम कार्यक्रम हम प्रत्येक माह आयोजित करते हैं। छतरपुर जिले के लिए वो निर्धारित है, चतुर्थ बुधवार को हम लोग करते हैं। उसमें हम इसको रोजगार स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेला और युवा संगम इसको कहते हैं। तो इसमें रोजगार मेले में जो कंपनीज आती हैं, जो डायरेक्टर मतलब प्लेसमेंट करती हैं बच्चों का, जो डायरेक्टर ऑन जॉब रोल रखती हैं, तो वो कंपनीज हम बाहर से बुलाते हैं। उसमें देश की प्रदेश की विभिन्न कंपनी रहती हैं, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट जो रहती है उसके आधार पर हम जिले में प्रचार प्रसार कराते हैं कि इस तरह की कंपनी आ रही है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बच्चों को पता चलता है। इसके अलावा दूसरा जो रहता है इसका एक एस्पेक्ट, जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं आईटीआई के बच्चे, तो वो भी आईटीआई की तरफ से अप्रेंटिस की कंपनीज बुलाई जाती हैं। तो अप्रेंटिसशिप मेला भी इसमें कंबाइंड रहता है, उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए भी कंपनीज आती हैं। तो इस तरह से कंपनीज आती हैं और स्वरोजगार योजनाएं जो भी चल रही होती हैं उसके स्वरोजगार के हम विभागों को से कोऑर्डिनेट करते हैं, लीड बैंक अधिकारी से भी कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जिन्होंने भी अपने ऋण योजनाओं के लिए आवेदन किया है या आवेदन करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं और किस तरह से मार्केट में मतलब वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं, तो एक होलिस्टिक अप्रोच से हम लोग मतलब वर्क करते हैं कि इतना पढ़ने के बाद या कुशलता के बाद उसको उसके अनुरूप कार्य मिल सके। मतलब वो चाहे आपका रोजगार हो, चाहे वो मतलब अप्रेंटिसशिप हो, चाहे स्वरोजगार हो, हमारा बेसिक उद्देश्य उसके लाइवलीहुड को उसको प्रदान करना और उसके पुनर्वास में और उनके जीवन स्तर को निर्वाह स्तर को ऊपर उठाना है। ये हमारे मध्य प्रदेश शासन की और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं।
0: जी जी, हम अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में कई युवाओं को रोजगार से जुड़ा है, ग्रामीण जो सर्वे हुए हैं वहाँ भी खूब उनको किट्स भी मिली हुई हैं और प्रशिक्षण और साथ ही साथ उनको कुछ स्टाइपेंड भी मिला हुआ है। रोजगार कार्यालय और क्या भूमिका निभाता है, जैसे प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कौशल से जो स्किल्ड जो बच्चे होते हैं कौशल विकास योजना के, तो उन्हें कैसे रोजगार मिलता है या किन किन कंपनियों में मूल रूप से प्रयास रहता है कि ताकि वो रोजगार से जुड़ पाए?
4: देखिए, जो रोजगार की कंपनियां हैं उसमें हम स्किल्ड बच्चों के लिए फोकस करते हैं, इसके साथ साथ हम अनस्किल्ड बच्चों पर भी फोकस करते हैं। दूसरा हमारा फोकस रहता है क्षेत्र का, कुछ जैसे बच्चे बाहर नहीं जा सकते तो हम कोशिश करते हैं कि आसपास की कंपनीज बुलाएं। तीसरा फोकस हमारा रहता है डिफरेंट सेक्टर्स का, किस सेक्टर में बच्चा जाना चाहता है। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी उनको अच्छा लगता है, कुछ कमीशन बेस्ड कंपनीज हैं उनमें जाना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं। तो हम सभी से अप्रोच करते हैं और कोशिश करते हैं कि लगभग हर एक फील्ड की एक एक कंपनी कम से कम आए, जिससे बच्चों को वैरायटी कंपनीज मिल सके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी मतलब ये भी कोशिश करते हैं कि अगर अनस्किल्ड ही है बच्चा तो भी मतलब उसको बिल्कुल अपने लाइवलीहुड के लिए मतलब अधिकार है कि वो मतलब अगर उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग हम पुश कर सकें। जैसे सर ने बताया है कि 7 दिन की ट्रेनिंग कुछ RPL होती है, जैसे उनके पास स्किल है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इस तरह से हम मतलब उस कुशलता को वो पहचानते हैं और उनको इंटरव्यूअर जो आते हैं कंपनी के उनके सामने मतलब हम प्रस्तुत करते हैं बच्चों को। इस तरह से हम मतलब लगभग

0: वो उसमें करते हैं, जिससे बच्चे को कहीं ना कहीं उसमें लाभ मिल सके।
1: श्रोताओ, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में मुफ्त प्रशिक्षण और सुविधाएं ग्रामीण युवाओं को मिल रही हैं, साथ ही उन्हें भोजन के साथ साथ स्टाइपेंड भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप सभी इस महत्वपूर्ण योजना से जुड़ जाइए और भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। इसी के साथ डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र अहिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति, अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए योगदान आकाशवाणी छतरपुर का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की, योगदान था आकाशवाणी छतरपुर का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर। हम आपको बता दें, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए, अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्मी गीतों से सराबोर कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत की ये पहली पेशकश अभी आपने सुनी। जुबिन नौटियाल और उनके साथियों की आवाजों में फिल्म का नाम था जंगली। इस गीत को हम आपको बता दें, लिखा था समीर अन्विता दत्त और संगीत था समीर उद्दीन का। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM 102.6 MHz पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और आइए इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं गीत संगीत और आवाज़ प्रतीक खोहत की है और फिल्म का नाम है कारवां।

श्रोताओ, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर एफ एम 102.6 MHz पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं लव यात्री फिल्म में आशीष कौर और जुबिन नौटियाल की आवाजें, साथ में बादशाह की आवाज भी है। गीत और संगीत है तनिष्क बागची का।

लीजिए श्रोता, इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं खानदानी शफाखाना फिल्म से। इसमें आवाज है तूची रैना और उनके साथियों की। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीतबद्ध किया है रोचक कोहली ने।

0: और श्रोता, इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.6 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: न्यूज़ से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1446 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
2: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: हर घर तिरंगा, आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
2: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
5: To launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
2: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदीव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
7: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
2: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
8: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
2: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा

0: व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह वर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह है आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर। रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए, अब आपकी खिदमत में पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम मनचाहे गीत की ये पहली प्रस्तुति अभी आपने सुनी। चांदनी फिल्म से ये गीत था, अनुपमा देशपांडे और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था और शिवहरी ने इसका संगीत तैयार किया था और अनुरोधकर्ता आप सभी लोग थे। ये हमें पत्र मिला है कंवर कॉलोनी बड़वाह से, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, साथ ही कुछ व्हाट्सएप भी हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बालिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश कश्यप, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश वर्मा, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार देव तामुरिया, डॉगी बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और इनके पोते हैं मास्टर अल कबीर।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक, समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
0: ये आपके अपनी रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं कार्यक्रम मनचाहेगी। तो आइए आपका अगला मनचाहा गीत इन सभी लोगों की फरमाइश पर है। ये व्हाट्सएप है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदूरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदूरकर बेबी, शौर्या, श्रेयस, अंकिता, अभी, अनिकेत चौहान, केवले गांव पुणे महाराष्ट्र से अंकिता कांवले, विजय कांवले, सौदापुर कर बेबी शौर्या, श्रेयस कांवले, आदर्श नगर मालोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, निवान शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा। और साथ ही हमें ये पत्र मिला है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, आप सभी ने सुनना चाहा है हकीकत फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल हैं और मदन मोहन का ये संगीत है।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। और आइए, आपका अगला मनचाहा गीत बाजीगर फिल्म से है, विनोद राठौर की आवाज में है, अनु मलिक ने इसका संगीत तैयार किया है, रानी मलिक ने इस गीत को लिखा है और अनुरोध करता आप सभी लोग हैं। ये हमें पत्र मिला है लक्ष्मीपुरा चौपड़ा के सामने सागर मध्य प्रदेश से, श्रीमती केशव श्रीवात्री, हेमंत, योगेश, कैलाश, श्रीमती निशा, सुनीता, विनीता, अभय, आभा, अनिमेश, आयुष और पूरा इनका शिवात्री परिवार, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। और ये पत्र ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू पूजा, रोशनी अजय और वामिका गंडराड़े, और साथ ही ग्राम छैगांव व देवी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे और साथ में भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और काना वाघे।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर के इंद्र से एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं इस पर कार्यक्रम मन चाहेगी। तो और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी आप हमारे आकाशवाणी सागर के लाइव प्रसारण सुन रहे हैं अपने मोबाइल सेट पर। और लीजिए, इस कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज। गीत राजा मेहंदी अली खां का, संगीत मदन मोहन का, और अनुरोध करता आप सभी लोग हैं, पसंद करने वाले आप सभी लोग। ये पत्र हमें नेपाल

पहले सागर मध्य प्रदेश से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन राणा, शिवा शिवांशु, प्रेम नारायण, रमेश कठौदिया, सुजीत सिरोठिया, पंडित रमाकांत दुबे, प्रमोद सैनी, जीवन लाल, और ये व्हाट्सएप भी है, मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा महाराष्ट्र से सुधाकर राजे यादव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव देशमुख, कुमार संचित कुमार, प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षिता देशमुख, और मजनू का टीला से ये हमें व्हाट्सएप मिला है, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा माही, पुलंद शहर ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी उत्तर प्रदेश से हमें ये व्हाट्सएप दिया है, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, और इनके साथ में हैं अबान अब्बासी।

श्रोता हो, आपने अपने रेडियो सेट के स्केल पर 102.6 मेगाहर्ट्ज पर चुना है अपना मनपसंद रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर, और जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। और आइए चलते चलते अब हम आ गए हैं इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर। हमसाया फिल्म का ये गीत है आशा भोंसले और उनके साथियों की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लफ्ज दिए हैं और ओपी नैयर ने इसकी तर्ज बनाई है, और अनुरोध करता आप सभी लोग हैं। ये पत्र में मिला है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, और व्हाट्सएप है नगर गोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्ति कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी, शास्त्री नगर बीड़ शहर महाराष्ट्र से किशन सकपाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल, माल टेकड़ी अमरावती महाराष्ट्र से प्रशांत ढेकड़े, वर्षा ढेकरे, श्रद्धा ढेकरे, गुमला झारखंड से शगुफ्ता अंजुम, एस एम जावेद, सोंगा मगरलूर छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, रघुवीर नगर दिल्ली से तिलावर खां, अनी हसीना बानो, एलिजा नायाब, और साथ में लड्डू।

और श्रोता इसी के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आपको बता दें आज का ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का सफर आपने तय किया अपने रेडियो मित्र मासूम आलम के साथ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.6 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित।

सन 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आर डी बर्मन का था। ये फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आइए सुनते हैं गोमती के किनारे, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाप ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्ग।

लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस। अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना।

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना।

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

सावन कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

थिएटर आर्टिस्ट के रूप में एक कलाकार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। ऐसे ही एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरिभाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए।

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आएं। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि ये वैम्पिश नंबर है। रेखा ने एक ना सुनी और शूटिंग के दिन अपनी हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से पूरी तरह तैयार अपने अंदाज की ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ हाजिर हो गई। ये सब देखकर मैं कुछ न कह सका, फरियाल को मनाया और श्रोताओं ये गाना फिर रेखा के हिस्से आया।

सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वो बेवफा, साजन की सहेली, लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम बेवफा। इस गीत को सावन कुमार ने लिखा और संगीत महेश किशोर का है।

सन 1992 में बेवफा से वफा, खलनाई का, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाक की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था।

0: आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। महक रही है जमीन चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है। उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे जमाने ने शायद बहुत सताया है।

उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है।

उदास आसमां है, दिल मेरा कितना अकेला है, परिंदा शाम के पुल पे बहुत खामोश बैठा है, तुम्हारे शहर के सारे दरीचे तो सो गए, लेकिन हवा से पूछना दहलीज पे ये कौन जलता है।

0: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: बेदर्दी बाल मा तुझको मेरा मन याद कर।
0: हम अभी हाजिर हुए

उन्हें कभी मत बताना मैं उनकी आंखों में हूं। वो लोग फूल समझकर मुझे मसलते हैं, उदास आंखों पे आंसू नहीं निकलते हैं, ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं।

किसी की चांदनी बन कोठे कोठे उतरी है, याद किसी की धूप हुई है, जीना जीना उतरी है।

0: आज के छाया गीत में थे सैक्सोफोन पर आधारित कुछ गाने। इन सभी गानों में मनोहारी सिंह ने सैक्सोफोन बजाया। फिल्मों के नाम आपको बता दें।
1: दुनियायों से के जमानायों से का।
0: फिल्म कश्मीर की कली, एसएच बिहारी, ओपी नैयर।
2: आगे भी जाने न तू।
0: फिल्म वक्त, साहिर लुधियानवी, रवि।
2: वो भूली दास्ता।
0: फिल्म संजोग, राजेंद्र कृष्ण, मदन मोहन।
2: आवाज देके हमें तू बुला।
0: फिल्म प्रोफेसर, हसर जयपुरी, शंकर जयकिशन।
2: बेदर्दी बाल मैं तुझको मेरा मन याद करता है।
0: फिल्म आरजू, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।

0: के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खेलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़ से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: घर घर

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the games with the Prime Minister. In a social media post,